0: रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338. 4697343338. myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
1: Desi cravings simple nahi hoti. Unke levels hote hai. Level 1. Mix veg pakora. Light, crispy, perfect shuruaat. Level 2. Masala omelette aur dahi bhalla. Thora nostalgia, thora comfort. Level 3. Amritsari kulcha platter ya pindi chana. Full Punjabi mode on, fully loaded. Aur jab bhook ho next level, slow cooked keema matar. Rich, bold, no compromises.
2: Isiliye Tandoori Flame lekar aaya hai. New on the flame and new weekend menu. Visit Tandoori Flame in Garland at Shiloh and PGBT. Tandoori Flame, now serving new favorites. Craving ka level badhao. Flavor hum sambhal lenge.
3: Hey! तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
4: लिया.
3: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
4: नहीं आया.
3: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है. इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशन एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर. No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jamani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
5: Visit www.sanadainc.com today.
6: भूख लगी, जोरों की भूख लगी.
7: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
8: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू. ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी. ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
9: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी.
10: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
11: इट्स लॉसन.
10: किससे बात करूँ, सारी जानकारी कौन देगा?
11: इट्स लॉसन.
10: डैडी, व्हाट इज द लॉ?
12: इट्स लॉसन ट्रैवल्स फॉर ऑल योर ट्रैवल नीड्स. गिव देम अ कॉल टुडे. 214-631-2458. द ट्रैवल एक्सपर्ट्स. लॉसन.

सुन रहे हो 104.9 FM फनीशर रेडियो। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। आप ये शाम एब्सोल्युटली अपने दिल से कहते होंगे थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। मैं कहूँ ना कहूँ, मेरा शो हो या ना हो, बट वी फील थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। दैट्स द एहसास ऑफ माई शो, जहाँ पर मैं कहती हूँ आई ड्रॉप द वीकेंड अ बिट अर्ली, अ टैड बिट अर्ली, क्योंकि वीकेंड हमारा तभी शुरू हो जाता है जब हम कहते हैं थैंक गॉड इस फ्राइडे। और किसी ने कहा है, जिसको देखो वो दुखी है, यार तो खुशी जा किसके पास रही है, डोंट से आई एम दुखी, खुशी आप ही के पास आए, यही होना चाहिए। और आज तो खुशी वहाँ है जहाँ ये ट्रक जा रहा है, कॉकटेल 2 का ट्रक, राइट नाउ हेडेड टू पटेल ब्रदर्स इन फ्रिस्को, इन दैट कॉम्प्लेक्स ऑन प्रेस्टन रोड। पहुँच जाइए आप, मिल सकता है आपको टिकट्स टू Ticket to Bollywood, yes, Cocktail 2.

0: माई और तू, आई लव दैट माई और तू, वल्ला दैट सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म कॉकटेल टू रनिंग इन थिएटर्स नियर यू. थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों ट्यून इन करने के लिए 104.9 FM फनेजा रेडियो पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. एंड थैंक यू जो आप जुड़े हुए हैं इस शाम, जो खास शाम है, बिकॉज यू आर खास. यही तो बात है कि खास के साथ खास इज डबल खास. खास खास नो, वो खांसी वाला खास नहीं. बट आपको बता दूं, गल हिंदी हिंदी बोल शुरू हो रहा है.
1: गल हिंदी हिंदी बोल,
0: जमूरी क्या बोलेगा, बोलेगा तो हिंदी. ओके, उर्दू इज अलाउड क्योंकि बहुत ही नज़दीक है, बट ये क्या मतलब है, ये अंग्रेजी कहाँ से घुसी चली जा रही है हमारी हिंदी में. एंड सोच रही है कि चुपचाप बहरूपिया बन के बैठ जाएगी, इंग्लिश हो जाएगी तो हम उसे एंट्री दे देंगे हिंदी में. ना ना ना ना, मैं नहीं दे रही एंट्री. फ़ोन उठाई, नंबर दबाई, 9722355555 है स्टूडियो का नंबर. हम चुन चुन के वो अंग्रेजी शब्दों को बाहर निकाल रहे हैं. नॉट एट ऑल, नॉट अलाउड. ओके, 9722355555 है स्टूडियो का नंबर.

0: तेरी मेरी कहानी गब्बर इज बैक विद दिस वन एंड 104.9 FM फन एशिया रेडियो. जी हाँ, गर्ल हिंदी हिंदी बोल शुरू हो चुका है. देर आर कॉल्स जो मैंने मिस कर दिया, फ़ोन उठाइए, नंबर दबाइए. 9722355555 है स्टूडियो का नंबर. पता है ये वाला जो पार्ट मेरा शो का है इज़ ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटैक्स, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म्स इन द US. दे ऑफर इनोवेटिव फिनेंशियल सर्विसेज विद अनटैप्ड पोटेंशियल फॉर बोथ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस. वो ट्रस्टेड है, एफिशिएंट है एंड गेट रेडी फॉर द फ्यूचर. दे डू हेल्प यू टोटली गेट रेडी. फ़ोन उठाइए, नंबर दबाइए, उन्हें कॉल कीजिए 4699429888. आप विजिट कर सकते हैं agfintax.com. और यहाँ पर ओके, लेट मी गेट दिस कॉलर ऑन एयर. गुड इवनिंग फाइनेंशियल रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर.
1: हेलो.
0: हेलो, हाय.
1: हाय,
0: आप कल हिंदी हिंदी में जुड़ना चाहते हैं?
1: जी, क्यों नहीं.
0: वेरी नाइस. सो नाम क्या है?
1: हुसैन.
0: हुसैन साहब, क्या वक्त शुरू किया जाए आपका?
1: जी.
0: ऑसम, तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. हाँ ना जी, इसी में बात करेंगे कि शब्द डाल के एक सेंटेंस भी बनाएंगे.
1: आपको क्या सुनना है मुझसे?
0: जितना आप सेंटेंस बोल सके वो सुनना है. सिर्फ आप बोल रहे हो हाँ ना जी, तो दैट्स व्हाई आई वाज थिंकिंग व्हाट इज गोइंग ऑन.
1: अच्छा, आप सवाल कर रही हूँ मुझसे?
0: तो मैं सवाल ही कर रही हूँ आपसे, कहाँ जा रहे हैं आप?
1: हम जा रहे हैं मॉस्क.
0: आई सी, मॉस्क तो हिंदी है. मतलब आप मॉस्क जा रहे हैं, मॉस्क को हिंदी आई हो, रामा कृष्ण अय्यर. आई एम सो सॉरी. मतलब आप मॉस्क को क्या बोलते हैं हिंदी में, उर्दू में?
1: मस्जिद.
0: राइट. व्हाट? ओके, आज आप जाइए वहां पर, वो बोलेंगे कि यार मेरे कोई तुमने मस्जिद कोई मस्जिद नहीं बोला यार. ऑलराइट, थैंक यू सो मच.
1: मैं दुआ करूंगा नेक्स्ट टाइम के लिए.
0: हाँ, दुआ कीजिए. अब आज जाके आज मॉस्क में दुआ कीजिए, मॉस्क मस्जिद हो और नेक्स्ट टाइम आप कुछ ना कुछ गल हिंदी हिंदी में कमाल कर जाए. थैंक यू सो मच हुसैन साहब, शुक्रिया, बाय बाय. ओह माय गॉड, ऐसा बड़ा बड़े, मतलब सीरियसली, ऑलराइट.

सुपर दिस परीत सॉन्ग फ्रॉम धड़क टू धड़क धड़क धड़क धड़क टू दिल में यू नो धड़क जो होती है हार्ट बीट इट इज द धड़क एंड धड़क तो है लेकिन छेलुरा को किसी ने पूछा कि उनकी माई ने बोला झेलू राम को कहती हैं बेटा बाजू वाली घर में ना एक लड़की की जुबां बाहर निकल गई है आंखें बड़ी बड़ी हो गई हैं और हाथ भी टेढ़ा हो गया है प्लीज़ जा जा बेटा देख वहाँ पर वो ठीक है ना लग रहा है कुछ बीमारी हो गई है या कुछ दौरा वौरा पड़ गया है समथिंग हैज़ हैपन्ड। झेलू राम कहते हैं माँ वो एक्चुअली सेल्फी ले रही है। What? Oh my God! No, this was like too much of exaggeration. ऐसा थोड़ी होता है. I mean, selfie is selfie, but really, आँख बाहर, मुँह बाहर. Oh my God! दौरा type. This is like not fair. झेलू राम. Not fair. Not fair at all.

0: आमिर खान एक्चुअली ये बहुत सारी फिल्में बनाते हैं, बहुत सोच के बनाते हैं. चाहे आजकल आमिर खान रोल्स में बहुत नज़र नहीं आते, आई थिंक उनका ना जो हार्ट है कहीं शिफ्ट हो गया है. मेकिंग फिल्म्स हैज़ बिन नाउ द थिंग, एंड लोगों का हार्ट ऐसे शिफ्ट होता है. आई एम ऑल्सो एग्जाम्पल, हार्ट शिफ्ट हो जाता है टू डू समथिंग. आई एम श्योर लॉट ऑफ यू फील दैट आफ्टर अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम. And, you know, Arijit Singh, his heart shifted from being a playback singer to now making his own, to actually make a difference in this world around people and making some very strong movies which connect to people, giving back to the society. And this is the Maslow theory of लॉ है जो वन आफ्टर द अदर. जब आप एकदम टॉप मोस्ट में पहुंच जाते हो, व्हेन यू आर मोर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बाद एम्पथी ज़्यादा आ जाती है लोगों के लिए कुछ करने के लिए, राइट? पहले तो हमारे बेसिक नीड्स होते हैं. तो आमिर खान प्रोडक्शन इज़ मेकिंग अ डॉक्यूमेंट्री ऑन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, डायरेक्टेड बाय स्वाति चक्रवर्ती भाटकल. वो डायरेक्टर्स भी वैसे ही चूज़ करते हैं, यू नो, एंड ही पुट्स हिज मनी देयर. एंड दिस फिल्म विल ट्रेस हर जर्नी फ्रॉम एन उड़ीसा विलेज टू राष्ट्रपति भवन एंड एग्जामिन इट्स वाइडेस्ट सिग्निफिकेंस. आमिर खान प्रोडक्शन ने इसे अनाउंस कर दिया है डॉक्यूमेंट्री ऑन हर लाइफ, एंड दिस documentary will define chapters of Murmu's life, including the personal tragedies, challenges and setbacks she overcame before entering public life and eventually ascending to the presidency. Wo explore karegi unki years of public service, offering a closer look at the resilience and determination that shaped her leadership.
1: शुभ दिन आ पहुंचा है, एक ऐसा अवसर जहां 60 वर्षों की परंपरा, बेमिसाल कारीगरी और पीढ़ियों के विश्वास का संगम आ रहा है आपके शहर फ्रिस्को में. PMJ Jewels.
2: Be a part of this grand opening celebration from 20th June Saturday onwards and get exclusive offers, exciting celebrations and opportunities to win beautiful jewelry pieces. PMJ Jewels. Tradition crafted, style defined.
3: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
4: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
3: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन, द फ्लेवर लाउंज.
4: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट.
5: कफिंग और स्नीजिंग एट होम, योर एयर डट्स may be to blame, and clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
6: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
7: Documents ya parcel bhejni hai?
8: हाँ.
7: घर रिलोकेट करनी है?
8: हाँ.
7: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
8: हाँ भाई हाँ.
7: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
9: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट sflworldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
10: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
11: Excuse me. It's called being loyal.
10: It's called being predictable.
11: Okay then, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
10: And what's so special at Neon Cactus?
11: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
10: Not bad.
11: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
10: Okay, this I didn't expect from you.
11: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
8: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
12: Calculating route, rerouting.
8: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है.
12: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
8: क्यों?
12: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के स्मार्ट लोग जानते हैं. डेली groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
8: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो.
5: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट.
12: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.
13: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
14: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
15: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
16: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
15: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
17: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.
0: स्वागत नहीं करोगे मेरा, मैं हूँ आपकी होस्ट नवनीता पांच से आठ स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑन थैंक गॉड इज फ्राइडे. फ्राइडे के फ्राइडे ये शो आपका वो शो जो आपको ये बता देता है कि ये गाइस द वीकेंड हैज ड्रॉप्ड एंड इट जस्ट ड्रॉप्स अ लिटिल बिट अर्ली व्हेन नवनीता कम्स ऑन द शो. वैसे आज मेरे झेलू राम ने थोड़ा सा प्रार्थना किया, कहा हे प्रभु मुझे 10-15 करोड़ देकर भी परख लो यार. यार बोल रहे भगवान जी को, बट एनीवेज परख लो यार, मैं भी तो जानूं कि पैसे आने के बाद मेरा असली रंग क्या है. लोग कहते हैं ना असली रंग तब पता चलेगा, और जब पैसे आते हैं ना तब लोगों का असली रंग पता चलता है. सो ही इज थिंकिंग कि यार पैसे देवो तो तब तो मैं रंग परखूं कि मेरा असली रंग है क्या. आई नो, गुड जॉब झेलू राम, यार बोला ठीक किया. God is yours only, यार.

0: सो लवली, यही तो प्यार है, जब सब कुछ उसका मेरा हो जाए, मेरा उसका हो जाए, एंड दैट्स द लव। चलिए लेती हूँ मैं अपने अगले कॉलर को ऑन गल हिंदी हिंदी बोल। वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका गल हिंदी हिंदी पर और फनीजा पर। हाय,
1: हेलो,
0: व्हाट्स योर नेम?
1: अजय।
0: अजय, आप खेलना चाहते हैं गल हिंदी?
1: यस
0: यस, और वो हिंदी में है। यस, अंग्रेजी में है, बट अभी चलेगा, बट वक्त अभी मैं शुरू कर रही हूँ। शुड आई स्टार्ट योर टाइम नाउ?
1: श्योर, प्लीज।
0: ऑसम, देखिए अजय ने अभी तक एक भी हिंदी नहीं बोली है, बट अब वो बोलने वाले हैं। देखिए कैसे अपना रंग बदलते हैं, मुखौटा बदलते हैं। वंडरफुल अजय, योर टाइम हैज स्टार्टेड नाउ। हाउ आर यू डूइंग टुडे?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: एकदम फर्स्ट क्लास यार। अजय, आपने तो पूरा का पूरा मुखौटा ही बदल लिया, पहचान भी नहीं आ रहे ये टाइम स्टार्ट के पहले वाले अजय और ये वाले अजय पर।
1: जी, मुझे कुछ लोग प्यार से गिरगिट बोलते हैं।
0: ओ माय गॉड, रियली? इतना प्यार, ये कौन है, आपके फ्रेंड्स?
1: कुछ लोग ऐसे हैं, हमारे कुछ दोस्त हैं, वो जब जब जब मैं अपना तथा कथित आप जैसे बता रही है ना, मुखौटा बदलते हैं, तो फिर मैं गिरगिट कहलाता हूँ।
0: तो हर जगह आप ऐसे मुखौटा बदल लेते हैं, एकदम यू कम आउट एज समबडी टोटली डिफरेंट एंड देन सडनली डर ऐसे घूमते हैं जिम कैरी की तरह।
1: नहीं, अब आप मुझे ये नाम दे रही हैं, तो मैं उसी उपनाम को और एक आगे बढ़ा के बता रहा हूँ।
0: हाँ, जो गिरगिट है उस उपनाम का भी अगला नाम, विच इज गिरगिट, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग?
1: जी, गिरगिट बोल सकते हैं।
0: अच्छा, वेरी नाइस।
1: आजकल वैसे सबको ही गिरगिट होते हैं, नहीं क्या?
0: हाँ, वेरी नाइस। आप भी
1: जिंदगी
0: जो
1: में
0: इतना सारा जीत चुके हैं, 10-10 बार जीत चुके, 2 बार हारे सिर्फ, फिर भी आप आ जाते हैं
1: नहीं,
0: मुखौटा बदल बदल के, करेक्ट?
1: नहीं, मैं ऐसा कुछ, मैं तो आपसे पहली बार मुखातिब हो रहा हूँ।
0: अच्छा, ओके, मैं आई विल टेक इट मिस्टर गिरगिट, बट व्हाट आई, कहाँ से आप कहाँ जा रहे हैं?
1: जी, मैं अपने काम के जगह से, कर्मस्थली से
0: सो व्हाट डू यू
1: घर की
0: डू?
1: तरफ जा रहा हूँ।
0: व्हाट डू यू डू अजय?

0: जी मैं चलचित्र निर्देशक हूँ।
1: रियली वाओ दैट्स अमेजिंग। तो हिंदी में बनाते हैं, इंग्लिश में बनाते हैं या अंग्रेजी में?
0: जी मैं हिंदी में बनाता हूँ, अभी सीख रहा हूँ।
1: ओह वेरी गुड, दैट्स अमेजिंग। दैट यू डू एज अ फुल टाइम थिंग?
0: पहले कुछ अपना और काम करता था, लेकिन बस अपने दिल की सुन रहा हूँ आजकल, तो चलचित्र बनाने में सीख रहा हूँ और थोड़ा बनाता हूँ।
1: आई लाइक इट, वेरी वेरी नाइस। आप जब चलचित्र बना रहे हैं और दिल की सुन रहे हैं तो ऊपर वाला आपके आपके साथ है, मेहरबान है, बिकॉज दैट्स वॉट हैपन्स राइट। हम बस दिल की नहीं सुनते, दुनिया की सुनते रहते हैं ना।
0: हाँ, अब दिल में प्रभु रहते हैं तो दिल के सुने तो प्रभु भी सुन लेंगे।
1: हाँ सुपर ऑसम, देयर यू
0: आप अपने दिल
1: गो।
0: की सुनती है?
1: हाँ
0: अच्छा,
1: मैं
0: सुनिए
1: मोस्टली,
0: सुनिए,
1: हाँ
0: आप अपने दिल की सुनती है कि नहीं? आप सिर्फ बात करती है, एक तरह से दूसरी तरफ बात सुनना नहीं चाहती, ये तो गलत बात है।
1: अब सुन रही हूँ मैं आपकी बात। मैं
0: आप
1: सोच
0: ये
1: रही
0: बताइए कि दिल की आप सुनती हैं कि नहीं। अब
1: बहुत
0: आपको मैं आपकी हिंदी में देखता हूँ, आप बात करिए थोड़ी देर। वैसे आप बताइए, आप दिल की सुनती हैं कि नहीं?
1: बहुत बहुत, मैं सिर्फ दिल की सुनती हूँ,
0: बिल्कुल,
1: दिल के अलावा सुनती ही नहीं हूँ। आपकी जैसे सुन रही हूँ, मेरे लिसनर्स की सुनती हूँ, बट दिल की ही सुनती हूँ।
0: तभी है ना, आपकी दिल से दिल की आवाज जो निकलती है वो आपके सभी जितने भी आपके जो श्रोतागण है उन सबके दिलों तक पहुंचती है अच्छे से।
1: ठाएं, राइट, दिल की बात दिल तक पहुंचे, दिल लगती है ठाएं। दैट्स वेरी नाइस, सो स्वीट
0: अब
1: ऑफ यू।
0: ठाएं बोले, धाएं बोले, या
1: जाए
0: कैसे बोले
1: जाए
0: आप।
1: बोले, बट या थैंक यू सो मच। यस, मैं ये शो भी
0: जी
1: ऐसे ही दिल
0: आपका
1: से
0: भी बहुत
1: करती हूँ।
0: शुक्रिया। आप आपके जी बिल्कुल, आप तभी मैं बोल रहा हूँ आपकी बात पहुँचती है, और आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आप करती हैं और बहुत अच्छा करती हैं। और आशा ये कि आपके जो सुनने वाले हम लोग तो हैं और आपको बहुत प्रशंसा करते हैं, और आपके जो आपके ऊपर जो जो आपके जो क्या
1: ऑफिस में
0: बोलूँ मैं
1: मैनेजमेंट,
0: उसको,
1: ये सारी शब्द खोज
0: जी
1: रहे
0: हाँ
1: हैं
0: जी,
1: आप।
0: आपके ऊपर जो जिनका स्थान है उनको, उन सबका भी आपके ऊपर कृपा रहे, बस यही
1: वाह
0: इच्छा है।
1: सुपर, माइंड ब्लोइंग। बस ये वजह नहीं है, लेकिन आप इतनी अच्छी हिंदी बोले हैं, इसकी वजह से पंच तारा रेस्टोरेंट से आपको मिलता है छोले कुलचे या फिर छोला भटूरा। हाउ डज इट साउंड?
0: इट साउंड्स गुड।
1: Awesome! Congratulations, Mr. Ajay, and thank you for all those lovely, very, very kind words, and that really made my evening. Shukriya, मेरे लिए जैसे मैं कहती हूँ ना, thank God it's Friday, the weekend has dropped. With these, my weekend has dropped. Thank you.
0: Thank you for everything you do.
1: All
0: It's
1: right.
0: really good.
1: थैंक यू। तो फिर मैं आपको आपकी इन्फॉर्मेशन लेती हूँ ऑफ एयर, आप कहीं मत जाइएगा। एंड देर आर फ्यू थिंग्स दैट नीड्स टू बी डन, जो आप एलन और फ्रिस को दोनों में से कहीं पर भी जाके आलू कुलचे या छोला भटूरा आपका गिफ्ट है फॉर दिस इवनिंग।
0: थैंक यू।
1: ऑल राइट, होल्ड ऑन, आई विल प्ले दिस
0: श्योर।
1: दिस लवली सॉन्ग फॉर माई लिसनर्स, उनके लिए मैं ये प्ले कर रही हूँ। इन्जॉय द सॉन्ग। सॉरी गा।

0: Lovely, lovely, beautiful music, beautiful song, राजशेखर, यस विशाल मिश्रा की आवाज़ और वो सैयारा का अगला गाना जो आने वाला है. दिस वन इज़ फ्रॉम द फिल्म धुरंधर, अरिजीत और धुरंधर, रणवीर सिंह, सारा और शाश्वत सचदेव, अरिजीत सिंह का मिला हुआ ये गाना ऑन दिस ब्यूटिफुल फिल्म. यस, द लाइन ऑफ सॉन्ग इज सैयारा. इफ़ यू हैव एनी अदर थाट एंड सॉन्ग, ज़रूर फ़ोन उठाएगा, नंबर दबाएगा. लेकिन पता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप कभी इन्वॉल्व हो जाएँ कोई कार या ट्रक एक्सीडेंट में या फिर स्लिप एंड फॉल इंसिडेंट में, टेंशन हो जाती है, हादसा हो जाता है. एक्सीडेंट इज़ एन एक्सीडेंट, इट कैन हैपन एनी टाइम. पर ज़रूर याद रखेगा, अपने स्पीड डायल में रखेगा, ओमार ख्वाजा या टॉनी है, ही फाइट योर केस एंड हेल्प यू गेट द कॉम्पेंसेशन दैट यू डिज़र्व. एंड आई मीन इट, यू नो, आई हैव माई सेल्फ एक्सपीरियंस्ड एंड आई रियली, एक ही दिमाग में नाम आता है, वो है ओमार ख्वाजा. डीलिंग विद इंश्योरेंस कंपनीज कैन बी स्ट्रेसफुल एंड यू नीड एन अटर्नी दैट विल मेक श्योर यू आर कॉम्पेंसेटेड. यू डोंट पे अंटिल यू विन, एंड दैट इज उनका दावा. फ्री कंसल्टेशन के लिए फोन उठाइए, नंबर दबाइए 4693005046 या फिर विजिट कीजिए अटर्नी omar.com. ले रही हूँ मैं अपने अगले कॉलर को, लिसनर को, ऑन फनीशा रेडियो फॉर गर्ल हिंदी हिंदी बोल. गुड इवनिंग फनीशा रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर. हाय,
1: हेलो.
0: वंडरफुल, आप पहली पहली बार फनीशा को कॉल कर रहे हैं.
1: जी.
0: ऑसम, नाम बताइए.
1: मेरा नाम रोहन है.
0: रोहन, आप गर्ल हिंदी हिंदी में जुड़ना चाहते हैं.
1: जी.
0: ऑसम, तो आपका वक्त शुरू किया जाए.
1: जी
0: ऑसम, खाली आप जी जी जी जी जी में ही बात करेंगे कि जी के अलावा भी?
1: जी के आगे भी बात करूंगा.
0: करेंगे ना, चलिए आपका वक्त शुरू होता है रोहन जी. वंडरफुल. सो फिर कहाँ जा रही है सवारी आपकी?
1: जी मैं अभी निकला हूँ दुकान में सब्जियाँ लेने.
0: अच्छा, सो ग्रोसरी आपको ड्यूटी दिया गया घर से, क्या बन रहा है?
1: जी.
0: देखिए कितना जी बोलते हो आप एक पूरे के पूरे आज की कॉन्वर्सेशन में. मेरे लिसनर्स के लिए चैलेंज है, आपके जी को काउंट करें. ओके, ऑलराइट, सो वी ऑल काउंटिंग योर जीज.
1: मैं धर्म पत्नी के साथ हूँ.
0: हाँ,
1: जो आपने अभी पूछा, तो मैं मेरी धर्म पत्नी के साथ आया हूँ.
0: तो दोनों मिलके आप लोग ग्रोसरी शॉपिंग कर रहे हैं, फिर खाना कौन बनाएगा?
1: सही बोल रहे हैं आप, खाना मेरी धर्म पत्नी बनाती है.
0: हाँ, बनाती है. क्यों, आप नहीं हेल्प करते?
1: जी मैं भी करता हूँ.
0: तो फिर
1: मैं बनाता हूँ सब्जियाँ.
0: अच्छा, वेरी नाइस. सो व्हिच इज योर फेवरेट सब्जी यू मेक?
1: मेरी जो पसंदीदा सब्जी है वो है आलू.
0: तो आप आलू बनाते हैं?
1: जी
0: खाली आलू बनाते, क्या और भी कुछ? लोग उल्लू भी
1: आलू
0: बनाते
1: भी
0: हैं?
1: बनाता हूँ और मटर. जी नहीं, मैं आलू मटर अच्छे से बनाता हूँ.
0: अच्छा, वेरी नाइस, सुपर. किसी ने मुझे बोला मैं बनाता हूँ, मैं चाय बनाता हूँ और मैं मैगी बनाता हूँ, बट आप आलू मटर बनाते, सुपर डुपर. तो फिर और तो आप दोनों मिलके अभी खाना के लिए ले रहे हैं कि ऑलरेडी डिनर इज कुक्ड?
1: जी हम घर पे जाके खाना बनाएंगे.
0: ओह माय गॉड,
1: अभी हम दुकान से जा रहे हैं.
0: बहुत टफ है जिंदगी अमेरिका की, आई एम टेलिंग यू. सुबह शाम दिन रात हम काम कर करके बस. देखो, ऑफिस गए, ऑफिस से आए, अभी ग्रोसरी ले रहे हैं, अब ड्राइव भी हम ही कर रहे हैं, हम ही घर जाएंगे, हम ही खाना बनाएंगे और हम ही खाएंगे. अरे हम कुछ तो खा ले, दैट्स ट्रू. तो फिर
1: आपसे ही प्रोत्साहित होके करते रहते हैं लोग, आपको सुनते हैं और आपसे प्रोत्साहित होते हैं.
0: क्यों, आप कह रहे हैं मैं क्या प्रोत्साहित की? चलिए,
1: मैंने जी आपका ये जो समय है, मैं आपका बहुत बार सुनता हूँ और मैं जब भी आपको सुनता हूँ तो मैं प्रोत्साहित होता हूँ आपकी बातों से, तो काफी काफी अच्छा है वो.
0: मतलब आपके घर में खाना बन रहा है मेरी बातों की वजह से, करेक्ट? इतने प्रोत्साहित है, वही आप बोले, आप स्टार्ट ही वैसे किए हैं, इसीलिए आपसे प्रोत्साहित हूँ। तो ओके, आई लाइक इट। आलू मटर भी बनाना सीख गए आप तो, बहुत उन्नति कर लिए मेरी शो सुन सुन के।
1: धन्यवाद, शुक्रिया।
0: Awesome, you were amazing. But आपके लिए एक गाना भेंट है, मेरे पास जो गिव अवे था वो ले गए हैं मेरे से अजय साहब, बट नो वरीज, आपको एक गाना भेंट कर दिया जाए,
1: जी शुक्रिया,
0: है
1: शुक्रिया
0: ना? वी हैव हैड अ गुड टाइम ऑन द रेडियो।
1: जी, धन्यवाद,
0: देखिए
1: शुक्रिया।
0: जी, अभी हम लोग, मैं पूछने वाली हूँ अपने लिसनर से कितनी बार जी कहा है इन्होंने। ऑलराइट, सो टेल मी व्हाट सॉन्ग कैन आई प्ले फॉर यू?
1: एनी सॉन्ग फ्रॉम अरिजीत सिंह, आई गेस लाल इश्क।
0: लाल इश्क, ओ माय गॉड, ओके, बीवी के साथ खाना बनाते हैं, लाल इश्क तो आप ही का गाना है मैन। दिस इज फॉर यू एंड फॉर योर धर्म पत्नी। क्विकली प्लेइंग इट बिकॉज मेरे जाने का वक्त हो रहा है। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, एंजॉय,
1: थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय।
0: यू टू, हैव अ ग्रेट वीकेंड।

0: सो सो सो सॉरी, आपका ये गाना थोड़े में ही रुक गया है बिकॉज मुझे उसने दिखा दिया कि वक्त हो गया है जाने का मेरा. बट थैंक यू सो मच, दैट वॉज ब्रिलियंट. आप कितने अच्छे से हिंदी बोले हैं. और जाने का वक्त हो गया है मेरा आज की शाम. थैंक यू सो मच, शुक्रिया जुड़ने के लिए. एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर. ये जो सवारी है हमारी डिजिटल ट्रक की, जो कॉकटेल 2 की टिकट्स दे रही है, आप लोगों को बहुत इन्वॉल्व कर रही है, मस्ती कर रही है. दे आर नाउ मूविंग टू भारत भवन इन मकीनी. तो उधर पहुंच जाइए अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे टीम से, फनीजा की टीम से. कॉकटेल 2 द मूवी दैट हैज़ रिलीज, अ लॉट हैपनिंग अराउंड इट. बहुत ही कमाल की फिल्म है. इट यू विल लव इट. आफ्टर ऑल इट विल फील गुड. ऑल थ्री आर लुकिंग अमेजिंग. और इसी थॉट के साथ आज आई एम लीविंग यू हियर. And hope you have a lovely, lovely weekend. Good night, sleep tight, get up happy, fresh and bright. Wishing you a powerful morning, a colorful noon, a joyful evening, and a peaceful night. And I know it's going to be a fantabulous day for you. Started with a cup of positivity. फिर देखिए दिन कैसा जाता है, कैसा जाएगा. Of course, total positive.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
4: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
3: Renew?
4: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
3: What better way to celebrate than with something timeless?
4: Visit Tanishq, Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
5: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो.
6: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
7: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगा, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
8: वेट, इतना सब और प्राइस?
7: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
9: मैं हीरो.
10: यार बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस.
11: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
10: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
11: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
10: ये क्या होता?
11: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
12: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
13: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन.
14: बेटा, 95% आए?
15: हाँ मम्मी.
14: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
16: मेरा?
14: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
16: वो
17: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. AG Fintax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
18: Documents ya parcel bhejni hai?
16: हाँ.
18: घर रिलोकेट करनी है?
16: हाँ.
18: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
16: हाँ भाई हाँ.
18: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
19: Documents shipping, boxes shipping, complete door-to-door relocation, auto transport. Sif India nahi, USA aur duniya bhar mein. Trusted shipping aur moving services. SFL Worldwide, har move ka perfect solution. Visit sflworldwide.com or call 1-800-691-2335.
6: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com. equity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
9: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth at mytimeequity.com for professional advice.
15: The Texas Super Kings are here and the action is absolutely heating up. Don't miss a single thrilling moment. Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium. We have got electrifying matches on Thursday, June 18th, Saturday, June 20th, Sunday, June 21st. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.
16: Hi, this is Konkona Sen Sharma and you're listening to me on Fun Asia Radio.

नमस्कार एंड वेलकम बैक टू 104.9 एफएम फनीशिया रेडियो। क्या बात है यार, एक बार फिर से फ्राइडे की मंगल पीला लेकर मैं आरजे स्वाति आप सभी की खिदमत में हो गई हूँ हाजिर। 8:09 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी पर एंड आज है क्या फ्राइडे, यानी कि आपको एंजॉय करना है फ्राइडे वाइब विद नो फिल्टर, यानी कि नो फिल्टर फ्राइडे ओनली विद योर ड्राइव टाइम साथ ही आरजे स्वाति। कहाँ से आई कहाँ को जाएगी, फिलहाल मैं कहीं नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे आपको एक सुहाने सफर पर अपने साथ साथ लेकर चलना है डैलस, जो कि है बहुत ही खुशनुमा। और आपको तो पता है कि आज आपको क्या करना है, फन की फ्रिक्वेंसी करनी है, रखनी है, राइट, क्योंकि एंजॉय करना है फ्राइडे वाइब।

यार ये मुझे समझ में नहीं आता कि डैलस के वेदर का बिना इसकी अपनी ही प्लेलिस्ट चलती रहती है। डैलस कभी अचानक बारिश हो जाती है, कभी बिजली चमकने लगती है, कभी गरज बरज के साथ इतने सारे छींटे पड़ने लगते हैं, कभी इतनी भीषण गर्मी लगती है कि हम ये कहते हैं कोई एसी चला दो यार, तो कभी ना ठंड आ जाती है, यानी कि जो जैकेट हमने अंदर डाले हुए हैं उसे ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकालते हैं, कोस कोस कर पहनते हैं। यहाँ डैलस में ये मौसम का कोई भरोसा नहीं है, बट एक चीज़ का भरोसा ज़रूर है कि फ्राइडे वाइब जब होगा ना तो अच्छे गाने चलेंगे, मज़ा बड़ा आएगा। एंड आपका साथ देने के लिए मैं आरजे स्वाति बनी रहूँगी आपके साथ, यानी कि जब किसी चीज़ का भरोसा नहीं है तो आप भरोसा कर सकते हैं 104.9 FM Fun Asia Radio पर, क्योंकि जब आप रखते हैं फन की फ्रिक्वेंसी राइट तो एंजॉय करते हैं खूबसूरत फ्राइडे वाइब।

ऑलराइटी ऑलराइटी डैलस, तो आपको तो पता है ना कि मैं जिस भरोसे की बात कर रही थी वो भरोसा मेरा आप पर से टूटना नहीं चाहिए, यानी कि जब हूँ मैं स्टूडियो में हाजिर तो लूँगी आपकी रिक्वेस्ट। 9722355555 है स्टूडियो का नंबर। मौसम बे इंतहा खूबसूरत है एंड वाइब भी उससे ज़्यादा खूबसूरत है, तो अगर आप भी अपने आप को बेफिक्रे फील कर रहे हैं क्योंकि वीकेंड है बॉस, एंड आपको बेफिक्रा फील करना ही चाहिए, क्योंकि जब आप बेफिक्रा फील करते हैं और टेंशन और जो भी स्ट्रेस है उसको धुएं में उड़ा देते हैं ना, तो फिर जिंदगी खुशनुमा फील होने लगती है। एंड यू नो व्हाट, यही तो हमारा मकसद होता है ना डैलस, कि भाई आपका टेंशन हो जाना चाहिए छू मंतर जब भी आप ट्यूनिंग करें फनीशा रेडियो 104.9 FM पर।

0: part of our show is brought to you by AG Fintechs, of the fastest, one of the fastest growing tax firm in US, and they offer innovative financial services with untapped potential for both individuals and businesses. And they are trusted, efficient, and get you ready for the future. So, aaj hi call kijiye 469-942-9888 or agfintechs.com पर भी आप विजिट कर सकते हैं. तो डैलस, आपको मैं बता रही थी कि भाई आजकल दीपिका और रणवीर सिंह थोड़े से गायब गायब से हैं, लेकिन पता है आपको बहुत जल्द इनके बारे में एक और न्यूज़ आने वाली है. उस न्यूज़ के बारे में मैं आपको न्यूज़ दूंगी, तब तक आप एंजॉय कीजिए हमारा ये नेक्स्ट सॉन्ग.
1: कर लो, बस तभी से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो जाता है. अदिति, मेरे शेर, मेरे चीते, तुझे कुछ साल अकेला क्या छोड़ा, तूने इतना बड़ा झोल कर दिया. बदतमीजी एक बीमारी है, ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे वक्त के साथ बुढ़ापे में बदल जाती है. मैं कहता हूं जब तक बुढ़ापा नहीं आता, थोड़ी बदतमीजी ही कर लेते.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेस्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइजरवे, स्वीट 205, फ्रिस्को।
3: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
4: कुछ भी नहीं. Oura Debt Relief will do it for us.
3: क्या मतलब?
4: Oura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
3: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
4: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
3: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
5: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
6: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
2: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
7: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
8: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
9: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
8: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
10: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
11: इन प्लेनो,
10: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870, पहले गाड़ी ठीक कराओ फिर कॉन्फिडेंटली बोलो।
7: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
12: डैलस, आर यू रेडी? जागो टाइम्स ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, jagotimes.com. For more details and advertisement, contact Raja Zahid Akhtar Khanzada, 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
13: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
14: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
13: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
14: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
13: सच में? सब संभालेंगे?
14: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
2: कॉल हरि बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.
15: दूध उबालोगे? दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।
16: और अगर 104.9 FM फनीशा रेडियो पर ट्यून करोगे तो आपको मजे की हवा लगेगी। वेलकम बैक 104.9 FM फनीशा रेडियो सुन रहे हैं आप, मुझे यानी आरजे स्वाति को, फ्राइडे वाइब एंजॉय कर रहे हैं डैलस, जैसा कि मैं आपसे कहती हूँ कि चलिए कुछ अच्छा सुनते हैं। 8:34 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी पर, और आपको बताना चाहती हूँ कि मैं जो न्यूज़ देने वाली थी रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के बारे में, कि भाई उनकी जो लाइफ है ना उसमें दुगनी खुशी ऐड होने वाली है, यानी दुआ की तो बात हो ही रही है, एंड दुआ की दुआ लग भी रही है, लेकिन उसके साथ साथ साथ एक और गुड न्यूज है उनके घर पे आने वाली। साथ ही साथ दोनों प्रोफेशनल लाइफ में भी एक्टिव हैं, जबकि मैं दीपिका का काफी बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ कि कौन सा नया प्रोजेक्ट है और कब वापस से हमें देने वाली है एंटरटेनमेंट का तड़का। बट यू नो व्हाट, जब कभी कोई चीज इंतजार करवाती है ना डैलस, तो फिर दुगनी खुशी के साथ वापस भी आती है। तो कभी कभी इंतजार का फल काफी मीठा होता है। आइए जानते हैं क्या हमसे कोई कहना चाहता है। हेलो नमस्कार, वेलकम ऑन एयर।
11: क्या क्या कहना चाहता है? 8:34 हुई है।
16: हाँ तो बोला
11: 40 मिनट कैसे हो गई?
16: नहीं नहीं, हमने 8:34 कहा, 40 नहीं कहा, सॉरी।
11: I'm sorry, मैं समझी 40।
16: कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने आपको माफ किया सर।
11: क्या okay. बात है भाई, सर नहीं है, मैम हूँ।
16: अच्छा मैम हो, अच्छा नहीं, मुझे मुझे इसके लिए अब आप मुझे वापस से माफी, देखिए हमारी माफी माफी क्रॉस हो गई, ठीक है, क्योंकि हम हमें जो हेडफोन पे है ना, वैसे भी मुझे थोड़ा कम सुनाई देता है। और
11: अच्छा,
16: अभी खुद
11: आप ही से हिंदी हिंदी बोल आप थे?
16: नहीं, वो नवनीता थी।
11: हाँ नवनीता से मैं देखो तो बात हुई, मगर उसका आवाज ही मेरा नहीं आया।
16: अच्छा अच्छा अच्छा,
11: कोई बात सुनाया ना लतीफा तो मैं समझ गई।
16: अच्छा
11: यही है,
16: जी जी जी जी, चलिए आप शो एंजॉय कीजिए मैम, और थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग एंड ट्यूनिंग इन, थैंक यू सो मच।
15: और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

भी आपकी गाड़ी जा रही हो इस तरफ मोड़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा फ्लेवरफुल खाना. एंड दिस इज वेयर बोल्ड इंडियन स्ट्रीट फूड मीट्स मॉडर्न फ्लेयर. सो वेदर इट्स अ ब्रंच, लंच, डिनर, डेट नाइट और फूडी मीटअप, पेज थ्री ब्रिंग्स द परफेक्ट मिक्स ऑफ फ्लेवर्स, एनर्जी एंड वाइब्रेंट वाइब्स. देखिए वाइब की बात आती है तो स्वाति को साथ में रखिएगा. विजिट पेज थ्री ईटरी एट हब 121 एंड एक्सप्लोर मोर एट page3eatery.com. कौन सा वेबसाइट है? page3eatery.com.

डैलस, अगर आपको भी एक नंबर मुझसे मिले तो जरूर ले लेना, या फिर अगर आपको मैं दे पाऊं एक वेबसाइट तो जरूर नोट कर लेना, क्योंकि अगर आप भी है खाने के शौकीन तो आपको बताती हूँ, फ्रॉम सिजलिंग कबाब्स एंड फ्लेवरफुल चाट टू फ्यूजन बाइट्स एंड रिफ्रेशिंग मॉकटेल्स, इफ यू स्टिल हैवेंट एक्सपीरियंस्ड पेज 3 ईटरी एट हब 121 देन यू आर सीरियसली मिसिंग आउट। अगर आज आपके पास कोई कोई भी सजेशंस नहीं है तो मेरी ये सजेशन ले लीजिए और कहीं

यार ये क्या खूबसूरत गाना है. यू नो व्हाट, ये जो फिल्म का सेट बना था इन अ टाउन, मैं आपको बताती हूँ कहाँ पर. इसके बारे में मुझे काफी काफी इन्फॉर्मेशन थी. द फिल्म इज सेट इन अ टाउन कॉल्ड चंदेरी, वेयर मेन हैव स्टार्टेड डिसअपियरिंग मिस्टीरियसली. आपको तो पता है ना फिल्म स्त्री में क्या हुआ था, अचानक अचानक मर्द गायब होने लग गए थे. सोचो अगर पूरी दुनिया में से ऐसा हो तो दुनिया कैसे चलेगी डैलस. किसी को समझ में आ रहा है कि अगर इस दुनिया से, जैसे इस मूवी स्त्री में अचानक से मर्द गायब होने लगते थे, अगर हमारे डैलस से या इस दुनिया से सारे लड़के गायब हो जाए तो दुनिया कैसे चलेगी. चलिए ये सवाल मैंने आपसे पूछ लिया. 972-235-5555 बताइए कैसे चलेगी. और आपको, अच्छा जब मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं अमिताभ बच्चन की तरह पूछ रही हूँ, बताइए कैसे चलेगी.

0: डैलस डैलस डैलस डैलस, एक गर्मा गर्म खबर है आपके लिए। जी हाँ, अगर आप भी फ्री टिकट जीतना चाहते हैं मूवी जो आ रही है कॉकटेल 2, उसकी अगर आप फ्री टिकट जीतना चाहते हैं तो हमारी फन एशिया की पूरी टीम एक बड़ा सा ट्रक लेकर पूरे शहर में घूम रहे हैं, और वो आपको फ्री टिकट ज़रूर दिला सकते हैं। और वो इस वक्त हैं भारत भवन और PMG ज्वेलर्स के कॉम्प्लेक्स में। यदि आप भी इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर जाइए और ज़रूर चेकआउट कीजिए, क्या पता आप भी पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको भी फ्री टिकट जीतने का मौका मिल सकता है। ये जो भारत भवन और PMG ज्वेलर्स की मैंने बात की, ये लोकेटेड है इन द इंटरसेक्शन ऑफ मेन एंड क्वाइट। तो अभी जाइए और अभी ये सुनहरा मौका पा लीजिए, क्योंकि हमारी फनीशा की पूरी टीम बकायदा प्रमोशन कर रही है इस फिल्म की, क्योंकि इसके जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो फनीशा फिल्म्स ही है। तो आपको ज़रूर चेकआउट करना चाहिए। आपको तो पता है फिल्म कॉकटेल कितनी कितनी हिट हुई थी, एंड वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर कॉकटेल 2। एंड आपको पता है कॉकटेल 2 में कौन है? जी हाँ, शाहिद कपूर और कृति सेनन एंड रश्मिका मंदाना। एंड हियर इज द सॉन्ग बंधु 2.0।
1: क्यों? What?
2: ट्रोल हो जाएंगे हम लोग, ट्रोल।
1: But why it's iconic?
2: फिल्म में हमारे सारे गाने ओरिजिनल हैं, काहे को पंगा लेने का? छोड़ दे, आजकल जनता ना बहुत डेंजरस हो गई।
1: But imagine how the song would look if Ali, Kunal and Diya did it. Our version. That's what I'm saying, now you're getting me.
2: You guys want to audition? Yeah? ट्रोल हो जाएंगे, मत करो।

0: Yes. We killed it.
1: आगे क्या ट्रोल हो जाएंगे?
2: Yeah.
1: Not at all.
0: डीनू डाल दे, ट्रोल हुए तो हो जाएगी.

जेलस डेफिनेटली ये गलत होगा जब आप ये जान जाएंगे कि हमारी फन एशिया की टीम लोकेटेड है इंटरसेक्शन ऑफ मेन एंड क्वाइट एंड फन एशिया फिल्म्स की तरफ से डिस्ट्रीब्यूटेड है ये फिल्म कॉकटेल 2। जी हाँ, अपकमिंग फिल्म है और अगर आपको इसका गिव अवे जीतना है यानी कि मूवी की फ्री टिकट, तो अभी चले जाइए भारत भवन और PMG ज्वेलर्स के कॉम्प्लेक्स में और पार्टिसिपेट कीजिए और पा लीजिए ये सुनहरा मौका जहाँ पर आप जीत सकते हैं इस मूवी की फ्री टिकट। जी हाँ, मुफ्त मुफ्त मुफ्त इन द इंटरसेक्शन ऑफ मेन एंड कॉइट लोकेटेड है भारत भवन एंड PMG ज्वेलर्स का कॉम्प्लेक्स जहां पर हमारी टीम आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। कॉकटेल 2, शाहिद कपूर, कृति सेनन एंड रश्मिका मंदाना।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
3: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
2: Renew?
3: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
2: What better way to celebrate than with something timeless?
3: Visit Tanishq, Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
4: Desi cravings simple nahi hoti. Unke levels hote hai. Level 1, mixed veg pakora. Light, crispy, perfect shuruaat. Level 2, masala omelette aur dahi bhalla. Thora nostalgia, thora comfort. Level 3, Amritsari kulcha platter ya pindi chana. Full Punjabi mode on, fully loaded. Aur jab bhookh ho next level, slow cooked keema mutton. Rich, bold, no compromises.
5: Isiliye Tandoori Flame lekar aaya hai, new on the flame and new weekend menu. Visit Tandoori Flame in Garland at Shiloh and PGBT. Tandoori Flame, now serving new favorites. Craving ka level badhao, flavor hum sambhal lenge.
6: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
7: Dude, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
8: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
7: कैसे?
8: पेज 3 ईटरी?
7: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
8: डूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
7: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स and great company, yani ki main.
9: Page 3 Eatery. Eat, sip, gossip, repeat.
10: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
11: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
12: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
13: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
12: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।

0: वॉच मोर लॉग ऑन टू www.
1: डैलस, आपने सुना था ये गाना जो चल रहा था दारू देसी, ये कॉकटेल से लिया गया था. एंड इस वक्त कॉकटेल 2 की टीम के प्रमोशन, मतलब हमारी कॉकटेल 2 मूवी की प्रमोशंस के लिए हमारी फनीशा की पूरी टीम इस वक्त पूरे डैलस की तफरी कर रही है. एंड राइट नाउ अगर आपको उनका पिन पॉइंट लोकेशन चाहिए तो आपको बता देती हूँ, भारत भवन एंड PMG कॉम्प्लेक्स के आसपास ही वो लोग हैं. आप जा सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप ये सुनहरा मौका जीत सकते हैं जहाँ पर आपको मिलेगा एक गिव अवे जीतने का मौका, जिसमें फ्री टिकट है कॉकटेल 2 मूवी की.

0: मोहब्बत की है। That's right.
1: आइकॉनिक फिल्म, जी हाँ यार, विशाल भारद्वाज का म्यूजिक है, शाहिद कपूर ने जो कमाल किया है ना, फिल्म का नाम है कमीने। यू नो, हम कभी कभी हम सब हो जाते हैं ये, लेकिन फिल्म में जो इन्होंने रोल किया है ना, कमीने का, आए हाय। एंड शाहिद कपूर से फिर से एक बात याद आई, आफ्टर द सुपरहिट सक्सेस ऑफ 2012 कॉकटेल, द ड्रामा रोमांस एंड द फ्रेंडशिप आर बैक विद अ फ्रेश twist. Get ready for Cocktail 2 releasing in theaters on June 19th, starring Shahid Kapoor, Kriti Sanon and Rashmika Mandanna. A new story, new emotions and a brand new cocktail of love, friendship and heartbreak awaits you. Don't miss Cocktail 2 in the theaters June 19th, yani aaj ki date. फ्री टिकट जीतने का मौका मिल रहा है। हमारी फन एशिया की टीम लोकेटेड है भारत भवन और पीएमजी कॉम्प्लेक्स के आसपास। आप जाइए और पार्टिसिपेट कीजिए एंड जीत लीजिए ये सुनहरा मौका। और फिल्म रिलीज हो चुकी है यार, बस टिकट मिलते ही आज कहीं और का प्लान कैंसिल और ओनली एंड ओनली आपको जाना है फिल्म देखने के लिए कॉकटेल 2।

0: शुभ दिन आ पहुंचा है। एक ऐसा अवसर जहां 60 वर्षों की परंपरा, बेमिसाल कारीगरी और पीढ़ियों के विश्वास का संगम आ रहा है आपके शहर फ्रिस्को में। PMJ Jewels.
1: Be a part of this grand opening celebration from 20th June Saturday onwards and get exclusive offers, exciting celebrations and opportunities to win beautiful jewelry pieces. PMJ Jewels, tradition crafted, style defined.
2: Hey, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
3: लिया।
2: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
3: नहीं आया।
2: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-772. That's 972-863-772.
4: Visit www.senadainc.com today.
5: Papa, Father's Day पे क्या गिफ्ट चाहिए?
6: बेटा है तू मेरा, तुम लोग साथ बैठ जाओ, यही काफी है।
7: और वही तो सबसे बड़ा गिफ्ट है। All that your father needs is good food, great company and unforgettable moments. This Father's Day weekend from June 19th to 21st, take your dad to the Flavor Lounge Frisco. Indulge in refined flavors, elegant dining and moments that truly matter. Plus, every father gets one free cocktail or mocktail. The Flavor Lounge on Preston Road near Malabar Golden Diamond Complex. Call 469-712-3591 and reserve your table today.
8: It's true, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwarji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwarji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
9: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
10: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
11: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
12: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
11: Kya matlab?
12: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
11: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
12: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
11: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
13: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
14: Hi, this is Akshay Kumar and you're listening to Funasia Radio.
15: हेलो, नमस्कार एंड वेलकम बैक डैलस। आपके साथ मैं जुड़ चुकी हूँ आरजे स्वाति। आपका हार्दिक अभिनंदन करना चाहती हूँ और आपको एक खूबसूरत सा गिव अवे जीतने का मौका देना चाहती हूँ। हियर इज योर चांस टू विन दाल मखनी ढाबा स्टाइल चिकन करी एट द फ्लेवर लाउंज रेस्टोरेंट लोकेटेड ऑन प्रेस्टन रोड इन फ्रिस्को। ये गिव अवे ओनली वैलिड है फॉर डाइन इन। अगर आप डाइन इन कर रहे हैं तो ही वैलिड है। फॉर ऑल द लिसनर्स, प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव नॉट वन दिस गिव अवे ऑन एनी अदर शो एट फन एशिया इन द लास्ट वन मंथ। अगर आपने जीता है तो ये वॉइड हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आपने लास्ट वन मंथ में नहीं जीता होगा तो हियर इज योर क्वेश्चन। ये जो फिल्म का गाना चल रहा है इसमें एक टर्म मेंशन हो रहा है, वो है ड्रामा क्वीन। अपने आप को नहीं बोल रही हूं मैं, आपको बताना है कि वो ड्रामा क्वीन किसके रेफरेंस में बोला जा रहा है, यानी कि किसको रेफर करके बोला जा रहा है। 972-235-5555 है स्टूडियो का नंबर। हियर इज योर चांस टू विन दाल मखनी ढाबा स्टाइल चिकन करी एट द फ्लेवर लाउंज डाइन इन ओनली लोकेटेड इन प्रेस्टन रोड फ्रिस्को। ये है आपका क्वेश्चन, ड्रामा क्वीन किसके हवाले से रेफर किया, मतलब किसको रेफर किया जा रहा है। हेरोइन का नाम बताइए।

ऑल राइट डैलस गुलाबो, इतर गिराने के पहले जरा संभल जाओ, क्योंकि अगर आप भी कुछ चीजी या देसी ट्विस्ट क्रेव कर रहे हो ना, तो फन पिज्जा किचन, जहां पर फ्लेवर मीट्स वायर। फॉर ऑल माय वेजी लवर्स, ट्राई अचारी पनीर पिज्जा पैक्ड विद टेंगी अचार पंच और सॉफ्ट पनीर मेल्टिंग इन स्पाइसी मैजिक। एंड फॉर द मीट लवर्स, तंदूरी चिकन पिज्जा इज प्योर स्मोकी परफेक्शन के साथ तंदूर से सीधे आपके टेस्ट बड तक स्ट्रेट आता है। सो वेदर यू लाइक इट बोल्ड और ब्यूटिफुली बैलेंस्ड, देयर इज अ स्लाइस वेटिंग फॉर यू एट फन पिज्जा किचन। देखिए, मैं जैसे ही अपना शो खत्म करती हूँ, यहाँ से तुरंत मेरी गाड़ी जो है वो फन पिज्जा किचन जाती है और वहाँ से कोई ना कोई हर बार डिफरेंट मेन्यू में जो मुझे पसंद आता है वो मैं लेती हूँ, घर जाती हूँ और आराम से 10 बजे जाके कौन खाना बनाएगा यार, बस जो लेके जाओ फन पिज्जा किचन से, एंजॉय करो, है ना, तंदूर से सीधे आपके टेस्ट बड तक। तो आप भी चले जाइए फन पिज्जा किचन, वहां से आपको जो पसंद आए, मेन्यू में बहुत कुछ है, चीज पिज्जा, पनीर पिज्जा, यू नो गार्लिक स्पाइस अचारी पनीर, बहुत कुछ है, चेकआउट कीजिए, चले जाइए, फन पिज्जा इज वेटिंग फॉर यू। फॉर डिटेल्स यू कैन विजिट funpizzakitchen.com एंड आपके पास है $10 का गिफ्ट कार्ड जीतने का मौका। ये जो गाना बजाने जा रही हूँ, बताइएगा किस फिल्म से है। 972-235-5555, $10 का गिफ्ट कार्ड फन पिज्जा किचन की तरफ से।

हवेली पे तो आओगे ही आओगे, लेकिन जो आपके फोन आ रहे हैं उनके लिए बता दूं कि फोन मैं आपके अटेंड नहीं कर पा रही क्योंकि हमें हमारे विनर मिल चुके हैं. थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग एंड कॉलिंग. अभी भी मेरे पास इतने सारे कॉल्स ब्लिंक हो रहे हैं, आई एम सॉरी मैं सारे कॉल्स नहीं उठा पाती, लेकिन आपको बता दूं कि विनर जो है वो तुरंत कॉल करते हैं. यूं मैंने बोला और यूं कॉल आया, तभी आप जीत पाएंगे. एनीवेज, अगर आप भी गोल्ड के शौकीन हैं तो आपको स्पेशल मोमेंट को और स्पेशल बनाने का मौका देती हूँ. लुकिंग टू एड अ लिटिल स्पार्कल टू योर स्पेशल मोमेंट्स, देन हेड टू मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स लोकेटेड ऑन प्रेस्टन रोड इन फ्रिस्को, योर डेस्टिनेशन फॉर स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी दैट्स एलिगेंट, टाइमलेस एंड क्राफ्टेड टू शाइन. तो जरूर चले जाइए, डाउनलोड कीजिए द मलाबार गोल्ड एंड डायमंड मोबाइल ऐप एंड लेटेस्ट कलेक्शन एंड अपडेट्स को चेक आउट कीजिए. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स डॉट कॉम है उनका वेबसाइट, आज ही चेकआउट कीजिए. इसके अलावा डैलस, अगर हम कभी नहीं चाहेंगे कि आपके साथ कोई भी अनहोनी हो, लेकिन अगर आप किसी भी ट्रक या कार एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो गए हैं या स्लिप और फॉल इंसिडेंट हो गया है आपके साथ, तो अटर्नी उमर ख्वाजा आपके लिए आपका केस लड़ते हैं और आपको कॉम्पेंसेशन भी दिलवाते हैं जो कि आप डिजर्व करते हैं. तो अगर आपको तो पता है कि अगर आप इंश्योरेंस कंपनी के साथ डील करते हैं तो कितना स्ट्रेस हो सकता है, तो अगर इन सब के बीच में कोई आपको हेल्प कर रहा है तो आपको उनका नाम, नंबर और उनका वेबसाइट जरूर याद रखना चाहिए. जी हाँ, फ्री कंसल्टेशन के लिए आप कॉल कीजिए 4693005046 या फिर विजिट कीजिए attorneyomar.com. जी हाँ, attorneyomar.com. टेकिंग यू टू द ट्रैक विच इज एक्चुअली लाइंड अप फॉर यू ऑल हु इज देसी. एंड आज कोई तो देसी गर्ल जा रही होगी पार्टी शार्टी करने, तो फिर उनको इस वाइब की बहुत जरूरत है.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोल की भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
3: ओह हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
6: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
5: नहीं।
6: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
5: नहीं।
6: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
5: वो भी नहीं।
6: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
4: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी।
7: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का।
8: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
4: विजिट psychicramnath.com, कॉल 469-347-4401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
9: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली एंड रिसर्च में वेरी।
10: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
11: इट्स लॉसन।
10: किससे बात करूँ, सारी जानकारी कौन देगा?
11: इट्स लॉसन।
10: डैडी, व्हाट इज द लॉ?
12: इट्स लॉसन ट्रैवल्स फॉर ऑल योर ट्रैवल नीड्स। गिव देम अ कॉल टुडे, 214-631-2458। द ट्रैवल एक्सपर्ट्स, लॉसन ट्रैवल।
13: डैलस, आर यू रेडी? जागो टाइम्स ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू। लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट, कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा, 682-551-6500। द जागो टाइम्स कमीशन, जागो भी जगाओ भी। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया।
14: This is Uday Chopra and you are listening to Fun Asia Radio.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Funasia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
4: The Texas Super Kings are here, and the action is absolutely heating up. Don't miss a single thrilling moment. Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium. We have got electrifying matches on Thursday, June 18th, Saturday, June 20th, Sunday, June 21st. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.
5: Hi, this is Stephanie Khan. You are listening to Fun Asia Radio.

0: tracks on your airwaves.
1: Turn it up.
0: Brought to you by Club Phonasia.
2: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये है।

0: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस।
1: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
2: Hi, this is Kunal Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.

0: रुको जरा, सबर करो।
1: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है। स्टे ट्यून टू फनेशिया।
2: बटुक साहब ने एक छोटी सी पार्टी रखी है
3: ऐसी जगह।
4: अरे झुमका भी मैं भूल गई, जाने जा तेरे लिए।
5: थोड़ी देर नीचे चलते ना, बटुक अंकल बुरा मान जाएंगे। चलिए ना।
4: अरे

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए, बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
3: Hi, I'm Rajkumar Rao, and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

104.9 FM. Fun Asian.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फनिश।

0: Lights, Mike, Bollywood, Fun-Asia.
1: तुमने दुबई के चक्कर में हमसे बिया किया, हमसे कतई प्यार नहीं था। हुँ?

0: बेटा 95% आए?
1: हाँ मम्मी।
0: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
2: मेरा?
0: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
2: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी।
4: हाय, दिस इज शर्वरी, यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो।

म्यूजिक MG, तुझे बीच सड़क में रोक के दूंगा मौके देखने के मेरे शो के। इट्स ओके, तेरे पीछे पड़ा हूँ लाखों लड़के।

0: 104.9 FM Funny Show. Funny Show. Not just a radio. Not just a radio. It's a mindset of entertainment. Come on.
1: मैं बहुत अच्छा गा लेता हूँ.
2: अच्छा. सुना? सुना?
1: हाँ. वो मेरी प्रैक्टिस नहीं अभी.
2: अगली बार प्रैक्टिस करके आना और किसी और के लिए मत गाना.

0: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
1: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
0: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
1: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपर हिट।
2: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.
3: बोरिंग दिनचर्या में
4: घोलिए नए रंग फन एशिया रेडियो के संग।

0: साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए, बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
3: Hi, this is Priyanka Chopra and you're listening to FunAsia Radio.

0: जरा सबर करो।
1: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है। स्टे ट्यून टू फनेशिया।
2: लो भी मुंडिया, जेड़ी टीम जीतूगी उन्हें मेरे वालों पैसे ते बोल्ट ते हार नाला नू मेरे वालों बहुत सारा प्यार।

0: भी बजाएगा ना भिड़ो।
1: अपुन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फनी शो पे।
2: Authentic, original, and better than our right.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं फन एशिया पर ही आते हैं।
2: This is Deepak P. Sanger. This is

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: 89 FM Fun Asia Radio, Fun Asia Radio, non-stop entertainment.
1: हमारे साथ मेवाड़ चलेंगी पद्मावती, हमारी पत्नी बनकर।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: शुभ दिन आ पहुंचा है। एक ऐसा अवसर जहां 60 वर्षों की परंपरा, बेमिसाल कारीगरी और पीढ़ियों के विश्वास का संगम आ रहा है आपके शहर फ्रिस्को में। PMJ Jewels.
1: Be a part of this grand opening celebration from 20th June Saturday onwards and get exclusive offers, exciting celebrations and opportunities to win beautiful jewelry pieces. PMJ Jewels. Tradition crafted, style defined.
2: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
3: कुछ भी नहीं। Ura Debt Relief will do it for us.
2: क्या मतलब?
3: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
2: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही manage कर लेंगे।
3: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
2: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
4: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
5: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी। और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेम्पल इन फ्रिस्को।
6: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
5: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग। ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो। श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी।
7: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame, and clogged dry vents can even cause fires. Duct time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Funny Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with duct time.
8: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
9: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
10: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन।
11: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे।
12: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
9: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर
13: इन के योग है।
14: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
15: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
16: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
15: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
17: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
18: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
17: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
18: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
17: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
18: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
17: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
19: Hi, this is Stephanie Khan. You are listening to Fun Asia Radio.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट। डैलस में रेडियो का डैड फनीशा 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
6: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
8: कौन सा?
7: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
8: अरे सारे तो सेम है।
7: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो ये वाला।
8: ओ हाँ, ये तो अलग है।
9: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो हैं। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
10: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
9: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
11: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
12: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
9: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
12: वेट, इतना सब और प्राइस?
9: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
13: मैं।
14: सुनो, कल बहुत काम है, पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली, कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
15: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
14: कहाँ?
16: फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डी वाइब, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
9: फूडिस्तान इन ऑबरी, एवरीथिंग देसी, वन प्लेस, One vibe.
17: Beta, 95% आए?
18: हाँ मम्मी।
17: Good. अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
8: मेरा?
17: हाँ। प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
8: वो
9: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। AG FinTax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
19: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता, जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
20: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
9: विजिट psychicramnath.com, कॉल 4693474401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
21: Astrology readings for guidance only and results may vary.
22: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balvihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.

सुप्रभात दोस्तों, सुस्वागत हम माफी के कार्यक्रम म्यूजिक मंत्र में, जिसमें मैं हूँ आपके संग संगीता, आपको और मेरा साथ रहेगा सुबह के 10 बजे तक, और हमारे साथ रहेंगे मीठे तराने और खूबसूरत संगीत। उम्मीद करती हूँ कि आपका वीकेंड सुखद जा रहा है, बढ़िया जा रहा है, और अब आप जुड़े हैं मेरे साथ ऑन दिस म्यूजिकल जर्नी, जहाँ मैं ले चलूंगी आपको दुनिया के बहुत ही अलग अलग जगहों पर, और बातें करेंगे दी इम्पैक्ट ऑफ दीज वंडरफुल प्लेसेस एंड देयर स्टाइल ऑफ म्यूजिक टू बॉलीवुड म्यूजिक, यानी कि बॉलीवुड सॉन्ग्स विद एन इंटरनेशनल वाइब। With that said, आपके जहन में कोई गाने हैं जिनमें आपके ख्याल में भाई कोई इंटरनेशनल वाइब है, कोई स्टाइल है फ्रॉम अनदर कंट्री, अनदर कल्चर, अनदर टाइप ऑफ म्यूजिक स्टाइल, और उसे डाला गया है किसी बॉलीवुड के गाने में, तो बताइएगा 9722355555 पे। शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की विथ एन अमेजिंग फॉर्म ऑफ म्यूजिक, वेरी वेल ब्लेंडेड इन टू बॉलीवुड, एंड दैट इज कॉल्ड Hip-hop that originated in New York City in the early 70s, which emerged from the African-American and Latino inner-city communities as a creative outlet during a time of economic hardship and urban decay. Aur wahin se shuruaat hui thi at a back-to-school party, and at this event, there was a Jamaican-born immigrant named DJ Kool Herc who innovated the genre. And उन्होंने ये इस तरह किया, उन्होंने use किए 2 turntables to isolate and extend the rhythmic instrumental breaks of funk and soul records to keep people dancing. और फिर incorporate किया Bollywood ने, and brought us some fantastic tracks to dance to. शुरुआत करते हैं विथ काला चश्मा। वन मोर टाइम, इफ यू हैव अ सॉन्ग इन माइंड दैट यू थिंक वाज काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस्ड बाय अ डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिक फ्रॉम अनदर कंट्री, अनदर कल्चर, गिव मी अ कॉल एंड लेट मी नो। 972-235-5555 इज द नंबर टू द स्टूडियो हियर।

इस गाने को आप ध्यान से सुनेंगे या ध्यान से भी ना सुनेंगे तो इट इज ऑब्वियस एक्चुअली दैट इस गाने में है हैवी म्यूजिक एंड मॉडर्न अर्बन ट्रैप प्रोडक्शन विथ ट्रेडिशनल भांगड़ा हिप हॉप फ्यूजन्स एंड दैट इज व्हाट बॉलीवुड इज सो वेल नोन फॉर. इट ब्रिंग्स इन द फ्लेवर एंड एड्स अ फ्लेवर फ्रॉम अनदर कल्चर और बूम इट बिकम्स अ सुपर डुपर फन सॉन्ग that we are enjoying on Music Mantra right now. Abba, High Heels Te Nache is also based on this genre.

urban hip hop beat and rap versus that was what this song was made up of. और जैसे कि हर म्यूजिक जॉनर में यू नो एक बार कोई इन्वेंशन होता है, कुछ डिस्कवरी होती है, तो आगे बढ़ते हुए उनमें इम्प्रोविजेशन आती है, कुछ और नई नई चीज़ें भी आती हैं. जैसे कि हमने कहा कि 1970s में बनाया गया या यू नो इट वाज रियली इट वाज फाउंड इन द 1970s, दैट मींस द हिप हॉप एरा गॉट इट्स बर्थ एट दैट टाइम. और फिर 1980s और 1990s के बीच में एक अलग तरीके का कुछ आगे इन्होंने इंक्लूड किया इन द हिप हॉप सीन, एंड दैट इज दे गॉट कॉम्प्लेक्स सैम्पलिंग फ्रॉम डिफरेंट आर्टिस्ट बेस्ड ऑन लिरिकल इनोवेशन. और फिर 90s में दे हैड द पोएटिक स्टोरी टेलिंग एज अ पार्ट ऑफ हिप हॉप. एंड देन द मॉडर्न ट्रैप एरा, यानी कि आजकल जो बज रहा है, नाउ दैट ऑल्सो फोकसेस ऑन द रोलिंग हाई हैट्स एंड हैवी बेस लाइन्स एंड मेलोडिक डिलीवरी from different artists. With that said, Bollywood mein jab aayenge to isko incorporate kiya in the film Bluff Master with the song Right Here Right Now.

0: और जहां पे बॉलीवुड और हिप हॉप का जो नाता है, वेल उसमें ये कह सकते हैं कि दिस इज एक्चुअली ए माइलस्टोन ट्रैक, क्योंकि आपने सुना कि अभिषेक बच्चन ने परफॉर्म किया, वेल एंड ही डिड अ फैंटास्टिक जॉब परफॉर्मिंग दिस स्मूथ लूप ड्रिवन हिप हॉप ट्रैक. एंड यू नो दिस इज एज आई सेड अर्लियर वन ऑफ दोज फर्स्ट फ्यू टाइम्स वेयर वी हर्ड द एक्टर डिलीवर यू नो से वर्ड्स लिरिक्स इन ए सिंग सॉन्ग और हिप हॉप स्टाइल. वेल आगे बढ़ते हुए आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर आप अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में कभी आ गए इन्वॉल्विंग अ कार और अ ट्रक एक्सीडेंट और मे बी अ स्लिप एंड फॉल इंसिडेंट, आपने नाम याद रखना है अटर्नी उमर ख्वाजा का, और इनका फोन नंबर भी याद रखेगा, तो वेल मेक अ नोट ऑफ इट एंड कीप इट ऑन योर फोन so you can have it anytime you want it. That number is 469-300-5046. So what are we going to do with this? Well, attorney Umar Khwaja ke baare mein bataungi aapko ki they fight your case and they help you get the compensation that you deserve. Aur is jab kabhi accident hota hai to aapko pata hai ki you have to definitely connect with insurance companies, and I can tell you it is a very very stressful process. So you definitely need the attorney on your side, someone who will make sure that you are compensated. Not only that, I want to also add ki when you are with attorney Umar Khwaja, you don't pay until you win. One more time, that number is 469-300-5046, or you could visit attorneyomar.com.
1: 104.9 FM Fun Asia Radio. Fun Asia Radio. Non-stop entertainment.
0: Another wonderful song from Bollywood that incorporates hip-hop at its best.
2: Akshay and Snoop D-O-double-G. Oh yeah, sing is king, this is the thing. Do you know what I mean? Follow me, listen to me for a second, check it. Sing is the king, check the record.

0: real cool like.
1: हिप हॉप एंड बॉलीवुड एट इट्स बेस्ट एंड दिस नेक्स्ट ट्रैक में तो भाई वो और भी जबरदस्त है, हरियाणवी फ्लेवर्ड रैप वर्सेस बाय रफ्तार और हार्ड कोर अर्बन हिप हॉप रिदम ओवर ट्रेडिशनल डायलेक्ट्स. दिस इज फॉर द सॉन्ग धाकड़. आई होप यू आर एंजॉयिंग द शो. एनी सॉन्ग ऑन योर माइंड दैट यू थिंक हैज अ फ्लेवर ऑफ एन इंटरनेशनल काइंड ऑफ म्यूजिक लेट मी नो, विल बी हैप्पी टू प्ले इट फॉर यू टुडे. धाकड़.

0: And now from that track, taking you to this song from the film Gully Boy, which was originally an underground hit by Divine and Nazy, and then इस ट्रैक को इन्होंने फिर रिकॉर्ड किया एंड रणवीर सिंह के साथ रिकॉर्ड किया फॉर द ऑफिशियल साउंड ट्रैक. और सुनेंगे आप और आपको याद होगी या आपके ध्यान में आ जाएगा और आप अग्री करेंगे. दिस इज एन अमेजिंगली ऑथेंटिक ट्रिब्यूट टू ओल्ड स्कूल स्ट्रीट रैप और उसके साथ बूम पैप कैडेंसेस मेरे गली में.
1: Gully boy, yeah, I'm MC Shit.

एंड वार्म वेलकम बैक टू म्यूजिक मंत्र दोस्तों, जिसमें मैं हूं आपके संग संगीता, आपका मेरा साथ रहेगा 10 बजे तक, और हमारे साथ है मीठे तराने और खूबसूरत संगीत. ऑल ऑफ दीज बॉलीवुड सॉन्ग्स हैव एन इंटरनेशनल वाइब टू देम, इंटरनेशनल म्यूजिक स्टाइल, styles of music that were taken from other countries, other cultures and incorporated in Bollywood songs. Aur kya hua uske baad? Well, nashe se chad gaye ye sab geet. While we listen to this song, I want to tell you ki is segment mein kuch EDM wale gaane hain. What is EDM? Poochti hoon main aapse. 972-235-5555 pe bataenge aap mujhe. Looking forward to hearing from you. What?

0: नशे सी चढ़ गई कुड़ी नशे सी चढ़ गई।
1: ऑलराइट, ईडीएम ईडीएम के बारे में बताऊं अगर आपको, तो पहले तो आपसे पूछती हूँ, आई एम स्टिल वेटिंग टू हियर फ्रॉम यू कि ईडीएम स्टैंड्स फॉर व्हाट, बट ये आपको बताती चलूं कि इट्स रूट्स गो बैक टू 1970s न्यूयॉर्क सिटी एंड जर्मनी, और फिर जो मॉडर्न ईडीएम कल्चर है, वेल दैट इमर्ज इन द अमेरिकन मिडवेस्ट ड्यूरिंग द अर्ली 1980s. व्हाट डज ईडीएम स्टैंड फॉर, लेट मी नो एट 972-235-5555. तो बॉलीवुड में कुछ ऐसे गाने हैं जिनमें बहुत ही आई गेस इन्फ्लुएंस है और यूसेज है ऑफ ईडीएम. आई विल लिसन टू कपल ऑफ दोज ट्रैक्स.

वेलकम बैक टू म्यूजिक मंत्र दोस्तों, जिसमें मैं हूं आपके संग संगीता। सुन रहे हैं हम आज ऐसे गाने, बॉलीवुड सॉन्ग्स यानी कि विद इंटरनेशनल वाइब्स। एंड अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक हैज इन्फ्लुएंस्ड द फॉलोइंग सॉन्ग्स, आपके जवाब में आप क्या बताएंगे मुझे? वेल, आपने बताना है वो मुझे एट 9722355555। इफ द सॉन्ग्स आर उड़ी तेरी आंखों में, द अदर वन इज झूमे जो पठान, सेनोरीटा एंड मारिया मारिया। लेट मी नो व्हाट यू थिंक, व्हाट इज द इन्फ्लुएंस दैट इज कॉमन इन दीज सॉन्ग्स। शुरुआत करते पठान वाले गाने से। शुभ्रा, दिस वन फॉर यू।

And you are right if you said it is Latin music influenced track, this one, as well as Uri Teri Aankhon Mein, Senorita Maria Maria. And we're going to enjoy some of these pieces in the next few minutes. और ये बताना चाहूंगी कि लैटिन म्यूजिक का बहुत ही इन्फ्लुएंस रहा है बॉलीवुड में, स्पेशली थ्रू साल्सा, थ्रू रुम्बा, थ्रू चाचा, थ्रू टैंगो, फ्लामेंको. फ्लामेंको वाले गाने कौन से बताएंगे मुझे, विद सांबा, रेगेटोन एंड लैटिन पॉप. द की डिफरेंस अमंग ऑल ऑफ दीज, यानी कि वॉट मेक्स लैटिन म्यूजिक डिफरेंट इज दैट रिदम कम्स फर्स्ट एंड लैटिन म्यूजिक इज बिल्ट अराउंड इन्फेक्शियस डांस रिदम्स. जैसे ही सुनते हैं रिदम को, दिल करता है कि बस मूव करें, डांस करें. एंड लैटिन म्यूजिक में और भी जो हैं बातें वो करेंगे आपके साथ आफ्टर दिस नेक्स्ट ट्रैक दैट आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू यू. इट्स अ डिफरेंट वन, इट्स सुपर डिस्टिंक्ट इन इट्स ओन क्लास आई फील, बट यू कैन फील द फ्लामेंको इन इट. Any other flamenco-based songs coming to your mind, let me know.

इस गीत को सुनेंगे तो आप सुनेंगे कुछ इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स एंड वोकल्स विद स्पैनिश गिटार परकशन रिदम्स एंड फ्लमेंको फ्लेयर. इन फैक्ट मैं इस गाने को अभी देख ही रही हूँ एंड इट टुक मी इनटू दैट स्मॉल ब्यूटिफुल कोजी सेटिंग वाली जगह जहाँ पर मैंने फ्लमेंको देखा था. इट्स जस्ट अ ब्यूटिफुल स्टाइल ऑफ डांस एंड रियली द म्यूजिक विद द गिटार बीइंग अ वेरी वेरी unique and essential element of flamenco. तो हम बात कर रहे थे कि about flamenco that instead of the beat 1, 2, 3, 4 you actually hear accents between the beats and that is what creates a very lively, a very energetic groove. और Spanish influence मतलब Latin music में percussion is very, very, very important. Percussion is king. It relies on instruments such as the congas, the bongos, the timbales, the maracas, and the claves. And that is actually what gives it its festive energy. I have a request. Kaha ki Spanish influence keh rahe hain, toh ye gana bhi fit aata hai. So here it is for all of you. The song Mon Amor.

0: जैसे आप नोटिस कर रहे हैं, वेल इन लैटिन म्यूजिक रिदम कम्स फर्स्ट एंड कॉमन स्टाइल्स इंक्लूड साल्सा, साम्बा, रुम्बा, चा चा चा, माम्बा, बचाटा, रेगेटोन, और जो बीट है इट ऑफन फॉल्स वेयर यू डोंट एक्सपेक्ट इट एंड दैट गिव्स राइज टू सम फुट टैपिंग म्यूजिक. और प्रकाशन बहुत ही जरूरी एलिमेंट है इन स्पैनिश म्यूजिक एंड दोज प्रकाशन इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड कॉन्गस, बोंगस एंड टिम्बालेस, मरकस एंड क्लावेस. एंड लैटिन म्यूजिक देन एज यू वुड अग्री इवोक्स सेलिब्रेशन, रोमांस, पैशन, डांसिंग एंड कार्निवल एटमोस्फियर. द मोस्ट पॉपुलर स्पैनिश इन्फ्लुएंस वाला गाना बॉलीवुड में है ये सेनोरिटा.
1: He removido cielo y tierra y no te encontré. Y llegas hoy tan de repente y da sentido a toda mi vida con tu querer.
2: Name samcha, name jana. Jo bhi tumne mujhse kaha hai señorita, magar phir bhi na jaane kyun

0: शुभ दिन आ पहुंचा है। एक ऐसा अवसर जहां 60 वर्षों की परंपरा, बेमिसाल कारीगरी और पीढ़ियों के विश्वास का संगम आ रहा है आपके शहर फ्रिस्को में। PMJ Jewels.
1: Be a part of this grand opening celebration from 20th June Saturday onwards and get exclusive offers, exciting celebrations and opportunities to win beautiful jewelry pieces. PMJ Jewels, tradition crafted, style defined.
2: Did you know LASIK is just one of 6 ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
3: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
2: Visionary Eye. See clearly. Live boldly.
4: Filmon ka maza action, drama aur romance mein hai. Aur khane ka maza har flavor ke zabardast performance mein.
5: Kabhi chatpata sa twist, kabhi teekha sa kick, kabhi meetha sa sukoon.
4: Jahan har flavor kare full on. Entertain the Flavor Lounge.
5: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट.
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
7: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
8: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी. जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
10: Planning a graduation party, birthday celebration, family gathering or private event? Make your special moments even more memorable at Fun Pizza Kitchen Colony. Rent private party space for 3 hours at just $200 with customized menu options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
11: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply.
12: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.

एंड वेलकम बैक टू द फाइनल सेगमेंट फॉर दिस मॉर्निंग म्यूजिक मंत्र, जिसमें मैं हूं आपके संग संगीता। ले आई हूं आपके लिए बॉलीवुड सॉन्ग विद इंटरनेशनल वाइब फ्रॉम ATM, एंड नाउ दिस इज द फाइनल सेगमेंट। आज के इस कार्यक्रम में वी हैव एक्सप्लोर्ड बॉलीवुड सॉन्ग्स विद इन्फ्लुएंसेस ऑफ डिफरेंट जॉनर्स, यानी कि वी टॉक्ड अबाउट हिप हॉप, वी टॉक्ड अबाउट EDM, we talked about Bollywood songs with Latin and Spanish influences, aur ab bari aayi hai what type of music ki incorporated in Bollywood songs. Is gaane ko sunkar mujhe batayenge at 972-235-5555. I look forward to hearing from you. Bataiye, what kind of musical influence is in this track?

So what kind of influence does that song have? Well, Middle Eastern music is what it is, which has a very distinctive sound. And बहुत सारे जो लोग हमें सुनते हैं जल्द से जल्द तुरंत पहचान जाते हैं उस मिडल ईस्टर्न म्यूजिक को. एंड मिडल ईस्टर्न म्यूजिक अनलाइक वेस्टर्न म्यूजिक यूजेस मेजर एंड माइनर स्केल्स, यानी कि यूजेस द मकामत. एंड दीज स्केल्स इंक्लूड नोट्स दैट फॉल बिटवीन द कीज ऑफ अ पियानो. और यही वो है जो बनाता है द मिस्टीरियस द हॉन्टिंग साउंड. इसके अलावा सिंगर्स फ्रीक्वेंटली स्लाइड बिटवीन नोट्स, दे यूज ट्रिल्स एंड एम्बेलिशमेंट्स एंड दे स्ट्रेच सिलेबल्स ड्रामेटिकली टू क्रिएट एक्सप्रेसिव इंटेंस इमोशनल स्टाइल. एंड दैट बिकम्स काइंड ऑफ सिमिलर टू हाउ इट्स डन इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक. उसके अलावा मेनी मिडल ईस्टर्न सॉन्ग्स यूज डिस्टिंक्टिव परकशन पैटर्न्स और इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, जैसे कि दरबुका, जैसे कि फ्रेम ड्रम. एंड देर आर सम अदर ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर यूज इन मिडल ईस्टर्न म्यूजिक, इंक्लूडिंग द आउद विच इज लाइक द कजिन ऑफ द गिटार, अ प्लक्ड जिथर, उसके अलावा ए ब्रीदी रीड फ्लूट. And all of these instruments come together to make that significantly regional sound in Middle Eastern music. Emotional intensity is the goal of Middle Eastern music. It wants to emphasize on longing, on passion, on nostalgia, and on celebration. That is what it is now in this segment, Bollywood songs with Middle Eastern influence. Actually, I think I have a better song at this point.

अगर आप गाना देख रहे थे तो यू कैन सी द ड्रम्स, द दरबू का बहुत ही अहम हिस्सा है मिडल ईस्टर्न म्यूजिक का. एंड विद दैट वांट टू टेक यू टू वर्ड्स, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. वेल, द वन थिंग दैट दे आर वेरी प्राउड ऑफ इज दैट द डॉक्टर्स एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर स्पेंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ टाइम विथ यू. यानी कि ये आपके साथ एज अ पेशेंट द डॉक्टर्स आर स्पेंडिंग 30 मिनट्स विथ यू एंड दे आर वेरी केयरफुली लिसनिंग टू एवरीथिंग यू हैव टू से बिकॉज ट्रूली अंडरस्टैंडिंग योर हेल्थ टेक्स टाइम. एंड ऑल्सो बिकॉज एट पैशन हेल्थ यू आर नॉट जस्ट अ पेशेंट, यू आर फैमिली. सो फॉर यू, फॉर योर फैमिली एंड फॉर द हेल्थ ऑफ आर कम्युनिटी, Remember the name Passion Health Primary Care. That's not all. I want to tell you that Passion Health is growing. Aur ye ab logon ko hire kar rahe hain. They are currently looking for primary care doctors, endocrinologists, pediatricians and psychiatrists for full-time

0: चलिए दैट पैशन हेल्थ इज ग्रोइंग और ये अब लोगों को हायर कर रहे हैं. दे आर करंटली लुकिंग फॉर प्राइमरी केयर डॉक्टर्स, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियंस एंड साइकेट्रिस्ट फॉर फुल टाइम एंड पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज. सो इफ यू नो समबडी हु इज पैशनेट अबाउट पेशेंट केयर एंड इज लुकिंग फॉर द जॉब, देन मेक श्योर यू आस्क देम टू सेंड देयर रिज्यूमे टू पैशन हेल्थ फिजिशियंस @gmail.com एंड you can get more information when you visit passionhealthphysicians.com or call or text 214-466-6259. Passion Health Primary Care. Your health is our passion.
1: Dallas ki dhadkan 104.9 FM Phoenicia Radio.
0: सुन रहे आप म्यूजिक मंत्र जिसमें मैं हूं आपके संग संगीता. आपका और मेरा साथ रहता है सैटरडे सुबह 8 से लेकर 10 बजे तक. अब अगले गाने को सुनते हैं. गाने की टाइटल अफगान जलेबी. दो द टाइटल हैज अफगान, दिस ट्रैक एक्चुअली इज रूटेड इन द बॉर्डरलेस यानी कि बॉर्डरलेस फोक ट्रेडिशन दैट ओवरलैप्स अफगान, बलोची एंड पर्शियन कल्चर्स. And those dole beats and tribal chants are a shared heritage and all of us are enjoying it right now on Music Mantra, jisme main hu aapke sang Sangeeta.

Great music. That was A.R. Rahman, Maiya Maiya, and Middle Eastern influence in that one. दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का ये कार्यक्रम आपने उतना ही पसंद किया जितना मुझे अच्छा लगा आप तक ले आने के लिए. बिफोर आई लीव द स्टूडियो दो, वांट टू ब्रिंग यू वन मोर ट्रैक दैट इज करंटली ट्रेंडिंग, वेरी वेरी पॉपुलर सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म कॉकटेल 2. And I want to tell you that this song has been influenced by the Italian canzone Napoletana type of song. It is characterized by the acoustic guitar-driven rhythms, bright mandolin-like textures, and the sunny major key harmonies, and makes you feel like you are on a European pop vacation on the Italian beaches having a lot of fun. And this is trending, and as always, music mantra, staying on top of what is trending, things that are happening, so that you are aware and are enjoying the latest and the greatest. And this one in Italian style, it's called Mashuka. फिर ले आऊंगी एक अनोखी प्रस्तुति अगले सैटरडे ठीक 8 बजे. तब तक के लिए मुझे यानी कि संगीता बच्चानी को दीजिए इजाजत. साइनिंग ऑफ फ्रॉम द स्टूडियो फनीजर रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
3: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
2: Renew?
3: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
2: What better way to celebrate than with something timeless?
3: Visit Tanishq, Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
4: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
5: Call the SBA Loan Experts.
4: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
5: Call the SBA Loan Experts.
4: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
5: Call the SBA Loan Experts.
4: Construction ho ya renovation, business kharidna ho ya refinance karana ho. For all your business financial needs at the best interest rate and lowest down payment, call the SBA Loan Experts at 817-786-3338. That's 817-786-3338.
6: Don ko pakadna mushkil hi nahi, namumkin.
7: Lekin aapke doctor ka appointment milna, usse bhi mushkil hai. एक हफ्ता, दस दिन, अगले ट्यूसडे.
8: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख.
9: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट. आज बुखार, आज डॉक्टर. आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर. आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर. प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी.
7: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259.
10: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी. और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेंपल इन फ्रिस्को.
11: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
10: वे एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग. ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो. श्री अयोध्या भवन, वे टेस्ट मीट्स डिविनिटी.
12: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
13: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
14: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
13: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
15: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
16: इन प्लेनो. एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग. और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी. कॉल 4692983870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो.
12: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
17: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
18: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, khoobsurat libas khushiyon ko dugna kar deta hai.
9: Har khushi mein aapke saath Manyavar Mohe, traditional celebration wear for men, women and children, crafted with exquisite blended fabrics. Manyavar Mohe, located on Regent Boulevard off 635 East in Irving.

वेलकम, नमस्कार, खुशामदीद फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम पर। मैं मधुलिका आप सभी का जस्ट चिल में करती हूँ हार्दिक स्वागत। वेल, जस्ट चिल में हम करते हैं एज द नेम सजेस्ट, जस्ट चिल। देती हूँ आपका साथ सैटरडे एंड संडे। सैटरडे होता है हमारा ट्रैवल सेगमेंट एंड संडे होता है कुछ मजेदार फन और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स का सेगमेंट। सो वेल, आज की ट्रैवल सेगमेंट में कोशिश मेरी पूरी होती है कि मैं आपको ऐसी एक जगह की बात बताऊं जो या तो आपके बकेट लिस्ट में है या वो बकेट लिस्ट में आ जाए। सो समर ब्रेक चल रही है तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको कुछ आइडियाज दिए जाएं कि आप कहाँ घूम सकते हैं। तो हाउ अबाउट फ्रांस? तो आज हम फ्रांस की बातें करेंगे। सो अगर आप कहीं फ्रांस में कोई शहर में जा चुके हैं, कुछ सुनहरी यादें हैं जो करना चाहें शेयर, देन द स्टूडियो नंबर वंस अगेन इज 972-235-5555।

Well, that was taken from द मूवी बेफिक्रे. सो बेसिकली इट वॉज अ टाइटल ट्रैक. एंड यस, आज हम बात करेंगे फ्रांस की, राइट? तो फ्रांस जो है इज द वर्ल्ड मोस्ट विजिटेड कंट्री. पता है, मोर देन 90 मिलियन टूरिस्ट विजिट फ्रांस एवरी ईयर. एंड एक और मजे की बात, अगर आईफिल टावर की बताऊँ आपको, तो ये जो आईफिल टावर है ना, इट एक्चुअली ग्रोज इन समर. जो मेटल है दैट एक्सपैंड्स इन हीट, एंड सो द टावर कैन बिकम अबाउट 15 सेंटीमीटर, यानी कि 6 इंचज के करीब टॉलर ड्यूरिंग हॉट वेदर. सो जब आप समर में जाएंगे या विंटर में जाएंगे, तो 6 इंच का फर्क आ सकता है.

0: Yes.
1: Well, that was taken from a cocktail to and आ गया है एक गिव अवे आपके लिए. जी हाँ, here's your chance to win कढ़ाई पनीर या कढ़ाई चिकन फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स, जो कि एलन में है. प्लस यू कैन एंजॉय देयर स्पेशल थाली जो मंडे थ्रू फ्राइडे विद एक्साइटिंग न्यू डिशेज रोटेट होती हैं डेली फॉर लंच ऑनली. दे आर लोकेटेड ऑफ मैकडरमट ड्राइव इन एलन. यू कैन विजिट चंडीगढ़ बाइट्स डॉट कॉम फॉर मोर डिटेल्स. और अब है गिव अवे का सवाल कि क्योंकि हम फ्रांस की बात कर रहे हैं तो आप मुझे कॉल करेंगे तो नंबर इज 972-235-5555 एंड टेल मी एनी थ्री प्लेसेस दैट यू शुड विजिट वेन यू गो टू फ्रांस. सो टेल मी एनी थ्री प्लेसेस दैट यू शुड विजिट वेन यू गो टू फ्रांस एंड यू कैन विन कढ़ाई पनीर या फिर कढ़ाई चिकन फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स इन एलन.

0: जी हाँ, मैंने पूछा था आपसे एक सवाल। सवाल ये था कि आप मुझे कॉल करके बताएं कोई भी ऐसी तीन जगह जो आपको फ्रांस में जानी चाहिए, देखनी चाहिए। एंड वी डू हैव अ लिसनर ऑन एयर विद अस। हाय, यू आर लाइव ऑन एयर।
1: Hi, my name is Madhusudan.
0: हे मधुसूदन, हाउ आर यू डूइंग?
1: I'm doing well. How are you?
0: आई एम डूइंग ग्रेट, थैंक यू फॉर आस्किंग। तो बताइए कि कौन सी तीन जगह आप बताने वाले हैं?
1: First is Paris, of course, which is having Eiffel Tower.
0: वाह, क्या बात है।
1: The
0: ओके,
1: second one is Lyon, which is widely considered for gastronomic capital of France.
0: Absolutely, बिल्कुल सही जवाब।
1: And the third one is Bordeaux, which has the wine capital of which is France's wine capital.
0: Amazing, बिल्कुल सही जवाब। मधुसूदन, आप गए हैं कभी फ्रांस?
1: जी नहीं, लेकिन जाने का तो बहुत मन है।
0: बिल्कुल,
1: If you can give away tickets for that as well.
0: Oh yeah, sure, why not? Okay, cool. So congratulations, आपने जीत लिया ये गिव अवे फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स इन एलन। एंड आई टेक यू ऑफ एयर एंड टेक सम डिटेल्स फ्रॉम यू वाइल आई एम गोइंग टू प्ले अ सॉन्ग फ्रॉम द मूवी वॉर, एंड दैट्स घुंगरू। इट्स अ सॉन्ग रिक्वेस्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग मधुसूदन। आई एम टेकिंग यू ऑफ एयर।
1: All right, thank you.

Well, as I said, that was taken from the movie War. इसमें म्यूजिक था विशाल एंड शेखर का. एंड विशाल एंड शेखर आ रहे हैं आपके लिए द सुपर हिट टूर लेकर टू डैलस. जी हाँ, याद रखिएगा, जुलाई 12 ऑन संडे एट कर्टिस कर्वल सेंटर गार्लैंड होने वाला है ये सुपर हिट टूर ऑफ विशाल एंड शेखर. एंड टिकट्स आर ऑन सेल नाउ एट कैश पटेल प्रोडक्शंस .com. That's cashpatelproductions.com. And विशाल शेखर का ही अगला गाना है एंड दैट्स टेकन फ्रॉम द मूवी बेफिक्रे एंड दैट इज नशे सी चढ़ गई. हियर इट इज, एंजॉय.

0: शुभ दिन आ पहुंचा है। एक ऐसा अवसर जहां 60 वर्षों की परंपरा, बेमिसाल कारीगरी और पीढ़ियों के विश्वास का संगम आ रहा है आपके शहर फ्रिस्को में। PMJ Jewels.
1: Be a part of this grand opening celebration from 20th June Saturday onwards and get exclusive offers, exciting celebrations and opportunities to win beautiful jewelry pieces. PMJ Jewels. Tradition crafted, style defined.
2: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
3: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
2: नहीं।
3: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
2: नहीं।
3: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
2: वो भी नहीं।
3: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
4: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG FinTechs, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी।
5: AG FinTechs led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
6: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली। कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
7: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
6: कहाँ?
8: फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट D-Vibe, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली dinner.
9: Foodistan in Aubrey. Everything they see. One place, one vibe. The Texas Super Kings are here and the action is absolutely heating up. Don't miss a single thrilling moment. Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium. We have got electrifying matches on Thursday, June 18th, Saturday, June 20th, Sunday, June 21st. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.
0: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का।
10: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
11: विजिट psychicramnath.com, कॉल 469-347-4401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
12: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली एंड रिसर्च में वेरी।
13: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
14: कुछ भी नहीं। Ura Debt Relief will do it for us.
13: क्या मतलब?
14: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
13: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
14: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
13: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
15: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
16: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
17: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
16: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
17: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
16: सच में? सब संभालेंगे?
17: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
11: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
18: The Dill of Dallas. Heart to Heart, Fun Asia.

You're tuned in to 104.9 FM Funasia Radio. मैं हूँ मधुलिका, लेकर आई हूँ Just Chill, जहाँ कर रहे हैं हम, as the name suggests, Just Chill. Well, आज हम जो ट्रैवल सेगमेंट है, ले चली हूँ आपको फ्रांस. जी हाँ, तो अगर फ्रांस में भी मैं सदर्न फ्रांस की बात करूँ, सो द फेमस लेवेंडर फील्ड्स ऑफ प्रोविंस ब्लूम फॉर ओनली अबाउट 4 to 6 वीक्स ईच समर एंड यूजुअली लेट जून टू जुलाई, यानी कि यही वो टाइम है जब आप जाकर ये लेवेंडर फील्ड्स इंजॉय कर सकते हैं. आपको पता है कि जो ये फ्रेंच रिवियरा है बिकेम फेमस बिकॉज ब्रिटिश एरिस्टोक्रेट्स स्टार्टेड वेकेशनिंग देयर इन द 1800s. इस रीजन में कहते हैं कि इट गेट्स ओवर 300 सनी डेज अ ईयर इन मेनी एरियाज एंड इसीलिए ये इतना पॉपुलर भी है.

यस सर, तो सदर्न फ्रांस की बात हो रही थी, राइट? तो आपको बताऊं कि सदर्न फ्रांस हैज सम ऑफ द बेस्ट प्रिजर्व्ड रोमन मॉन्यूमेंट्स आउटसाइड ऑफ इटली. द वर्ल्ड्स परफ्यूम कैपिटल इज ग्रास, वेयर फेमस फ्रेग्रेंसेज हैव बीन मेड फॉर सेंचुरीज. तो अगर वहां जाए तो ये परफ्यूम्स की शॉपिंग करना ना भूलिएगा.

वेल दैट वॉज टेकन फ्रॉम द मूवी शानदार. एंड आज हम शो कर रहे हैं फ्रांस के बारे में. एंड फ्रांस में जनरली लोग पेरिस पेरिस पेरिस की ही बात करते हैं, लेकिन मैं अभी सदर्न फ्रांस की बात कर रही थी. अभी आपको नीस के बारे में बताऊंगी. दैट नीस अगर आप जाए ना, देन यू मस्ट वॉक द फेमस प्रोमनाद दे जोंगले. इट्स रियली कूल. एंड देन यू कैन एक्सप्लोर द ओल्ड टाउन विच इज ऑफकोर्स नोन एज द वियनीस, बेसिकली इन फ्रेंच दैट्स ओल्ड टाउन. एंड ऑफकोर्स यू कैन विजिट कैसल हिल फॉर पैनोरामिक व्यूज. तो आपको इतने सुंदर व्यूज मिलेंगे. एंड साथ ही साथ यू कैन टेक लॉट्स ऑफ पिक्चर्स. एंड देन ऑफकोर्स अगर खाने पीने का शौक है, देन ट्राई देयर ऑथेंटिक निकवाज सैलड. एंड एक और मज़े की बात है नीस की, दैट दे हैव दीज पेबल्ड बीचेस ऑफ नीस आर वेरी वेरी फेमस. एंड बहुत से विजिटर्स सरप्राइज हो जाते हैं जब वो उस बीच पर जाकर देखते हैं कि सैंड तो है ही नहीं, इट्स ऑल पेबल्स. एंड दैट्स अनदर इंटरेस्टिंग फन फैक्ट, दैट ये जो नीस के बीचेस हैं, दे आर पेबल्ड बीचेस एंड देर इज नो सैंड व्हाट्सोएवर.

बात तो ये भी कोई नहीं है कि अगर आप आज बीमार हैं और आपको 4 दिन बाद का, वो भी 5 या 10 मिनट का अपॉइंटमेंट मिले, सही है ना? ये बात सही नहीं है, राइट? सो टेक्सास प्राइमरी केयर अगर आप जाएंगे, दे आर ओपन 7 days अ वीक, 8 AM to 8 PM. यू कैन वॉक इन एनी टाइम एंड नो अपॉइंटमेंट नीडेड. जी हाँ, 13 साल से टेक्सास प्राइमरी केयर हैज़ प्राउडली केयर्ड फॉर आर कम्युनिटी, और अब वो फ्रिस्को लोकेशन में एक नए नाम से आ रहा है, एंड दैट इज़ लियोनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. लियोनॉक्सी मेडिकल जो है ब्रिंग्स प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, इन हाउस लैब टेस्टिंग करानी है, एक्सरेज कराने हैं, या सिटी स्कैंस, कार्डियक डायग्नोस्टिक्स, या इवन हिमालयन मेड स्पा सर्विसेज, दे आर ऑल अंडर वन रूफ. ओपन 7 days a वीक फ्रॉम 8 AM to 8 PM. यू कैन वॉक इन एनी टाइम, नो अपॉइंटमेंट नीडेड. एंड सो मैंने सोचा कि आपको बताती चलूँ, क्योंकि होता है ना कई बार नहीं समझ में आता कि कहाँ जाएँ, क्या करें, अब वीकेंड आ गया है या अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है. सो वेल, दैट्स द प्लेस टू गो, एज दे आर ओपन 7 days a वीक, 8 AM to 8 PM. यू कैन वॉक इन एनी टाइम.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
4: कौन सा?
3: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
4: अरे सारे तो सेम है।
3: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
4: ओ हाँ, ये तो अलग है।
5: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
6: Desi cravings simple nahi hoti, unke levels hote hai. Level 1, mixed veg pakora, light, crispy, perfect shuruaat. Level 2, masala omelette aur dahi bhalla, thora nostalgia, thora comfort. Level 3, Amritsari kulcha platter ya pindi chana, full Punjabi mode on, fully loaded. Aur jab bhook ho next level, slow cooked keema mutton, rich, bold, no compromises.
5: Isiliye Tandoori Flame lekar aaya hai, new on the flame and new weekend menu. Visit Tandoori Flame in Garland at Shiloh and PGBT. Tandoori Flame, now serving new favorites. Craving ka level badhao, flavor hum sambhal lenge.
7: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
8: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
9: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
10: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
11: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
12: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
11: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
13: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
14: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
5: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
14: इतना सब और प्राइस?
5: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन, समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
15: मैं हीरो।
16: Hi, this is Sharvari. You are listening to Fun Asia Radio.
17: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल, Fun Asia 104.9 FM.

लेकिन फ्रॉम द मूवी हीरो नंबर वन, इस गाने में भर के फ्रांस की शूटिंग है. एंड यस, दिस इज मधुलिका, लेकर आई हूँ जस्ट चिल, जहाँ कर रहे हैं हम एज द नेम सजेस्ट, जस्ट चिल. वेल, आज सैटरडे होता है हमारा ट्रैवल सेगमेंट. मैं दूंगी आपका साथ दोपहर के 12 बजे तक. आज हम बात कर रहे हैं फ्रांस की. तो अभी अभी तक तो मैं आपको नीस के बारे में बता रही थी, अब मैं आपको बताती हूँ कांस के बारे में, राइट? तो आप अगर कांस जाएं तो यू कैन स्ट्रोल ला क्रोसेट वाटर फ्रंट, इट्स रियली वेरी नाइस. आप एक्सप्लोर कर सकते हैं लग्जरी बुटीक्स, देन यू कैन विजिट द नियर बाय आइलैंड्स बाय बोट, उसमें भी बड़ा मजा आता है. एंड ऑफकोर्स यू कैन वॉक द रेड कार्पेट एरिया ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन. पता है आपको कि जब फिल्म फेस्टिवल का सीजन चल रहा होता है, देर आर लॉट्स ऑफ फैंस हु जस्ट कैंप ओवरनाइट जस्ट टू कैच अ ग्लिम्प्स ऑफ सेलिब्रिटीज. इट्स दैट पॉपुलर एंड यू एक्चुअली फील लाइक अ सेलिब्रिटी व्हेन यू गो देयर एंड यू गेट टू वॉक दैट रेड कार्पेट.

Well, that was the title track, Om Shanti Om, right? And आपको मैं बताऊं दैट दिस इज मधुलिका लेकर आई हूँ जस्ट चिल, जहाँ करते हैं हम, एज द नेम सजेस्ट, जस्ट चिल. वेल, आज के ट्रैवल सेगमेंट में हम फ्रांस की बात कर रहे हैं. सो दे आर वेरी प्राउड ऑफ देयर लैंग्वेज, राइट? वो चाहते हैं कि अगर आप आए हैं तो थोड़े बहुत वर्ड्स तो आपको आने ही चाहिए. तो कुछ सिंपल वर्ड्स अगर याद हो जाए तो क्या बुराई है, जैसे बोंजू, सावा. यू नो, सावा की अच्छी बात यह है कि सावा क्वेश्चन भी है, सावा आंसर भी है. तो सावा इज लाइक हाउ आर यू, एंड सावा इज ऑल्सो आई एम फाइन, थैंक यू. तो यू नो, कुछ इस तरह के अगर आपको वर्ड्स पता हो तो फायदा है. बिकॉज पता है, कई जगह फ्रांस में ऐसे कैफेज हैं जहाँ पर आपकी कॉफ़ी महंगी और सस्ती हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन योर एटिकेट्स. आपने अच्छे से बात की कि नहीं, वही रूड, देन आपकी वही कॉफ़ी महंगी हो जाएगी. और इफ़ यू वर कर्टियस, देन दैट कॉफ़ी कैन बी अ लिटिल चीपर. सो वैसे भी हमेशा इट्स ऑलवेज गुड टू बी कर्टियस, नहीं?

0: I like you.
1: अब तुम्हारे भेजे में बात आई, अब आगे बढ़े।
2: ठहरो ठहरो ठहरो ठहरो, अरे तू भी चुप हो जा, खामुखा बीच में बजाता रहता है। अच्छा भाभी, अगर वो नहीं शर्माई तो?
1: अरे पागल बुद्धू, वो अगर नहीं शर्माई तो कोई और शर्माएगी।
3: ऐसा क्या?
1: हाँ।

0: अब क्या हुआ भाभी?
1: ओहो, यहाँ बोलो आई लव यू,
2: आई लव यू,
1: आई लव यू,
2: आई लव यू,
1: आई लव यू,
3: आई लव यू. टेकन फ्रॉम द मूवी सत्ते पे सत्ता, दैट वॉज. अच्छा, अगर आप इन्वॉल्व हो गए हैं कोई कार या ट्रक एक्सीडेंट में, या कहीं कोई स्लिप या फॉल इंसिडेंट में, और आप परेशान हैं कि अब हम क्या करें, किससे बात करें, तो अटर्नी ओमर ख्वाजा को रखें याद, एज ही कैन फाइट योर केस, हेल्प यू गेट द कॉम्पनसेशन दैट यू डिजर्व. साथ ही साथ ही डील विद द इंश्योरेंस कंपनी एज वेल, एंड यू डू नॉट पे अंटिल यू विन. तो एक फ्री कंसल्टेशन के लिए आप अटर्नी ओमर ख्वाजा को कॉल कर सकते हैं. द नंबर इज 4693005046, और यू कैन विजिट attorneyomar.com. वेल, दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय Omar Khwaja, and the next song is a song request. Thank you so much for calling in.

Well, that was a mashuka taken from a cocktail too. And yes, आपको मैं तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट के बारे में बताऊंगी. दे आर लोकेटेड इन गार्लैंड. वीकेंड है, समर ब्रेक भी चल रही है, बनता है जाना, राइट? अगर आपको पसंद है सिजली तंदूरी प्लेटर्स, रिच करीज, नॉर्थ इंडियन आपकी फेवरेट्स जो भी खाने की चीज़ें हैं, स्मोकी तंदूरी कबाब से लेके वेलवेटी करीज, साथ ही साथ गर्मा गर्म फ्रेश हॉट नान, तो भाई आपको जाना है तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट, विच इज लोकेटेड इन गार्लैंड.

You're listening to 104.9 FM Fun Asia Radio, bringing the community together. मैं हूँ मधुलिका, लेकर आई हूँ जस्ट चिल, जहाँ करते हैं हम, as the name suggests, just chill. Saturday और Sunday 10 to 12 होता है मेरा और आपका साथ. स्टूडियो का नंबर रखें याद, 972-235-5555. Saturday होता है ट्रैवल सेगमेंट और आज मैं बातें कर रही हूँ आपके साथ फ्रांस की. तो फ्रांस का जो ये लियोन शहर है ना, इट्स द फूड कैपिटल ऑफ फ्रांस. पता है, अगर आप लियोन जाएं तो डेफिनेटली ट्राई द ऑथेंटिक फ्रेंच क्विजीन. यू कैन वॉन्डर थ्रू रेनेसांस स्ट्रीट्स एंड एक्सप्लोर सम हिडन पैसेजवेज कॉल्ड त्राबूल. आपको पता है कि बहुत से जो फ्रेंच शेफ्स हैं, दे कंसिडर लियोन एंड नॉट पैरिस द ट्रू कल्नरी कैपिटल. सो येस, डेफिनेटली अगर आपको खाने पीने का शौक है, देन लियोन इज अ प्लेस टू गो.

0: फ्रांस की बात कर ही रहे हैं तो आपको स्ट्रासबर्ग के बारे में बताऊंगी, एज इट्स ऑल्सो नोन एज फेरी टेल फ्रांस. यू नो, यू मस्ट विजिट द स्टनिंग कैथेड्रल ओवर देयर एंड टेक लॉट्स ऑफ पिक्चर्स फ्रॉम आउटसाइड. बहुत खूबसूरत पिक्चर्स आती हैं. देन यू कैन टेक कनाल बोट टूर्स, वो भी बड़े मज़ेदार होते हैं. एंड यू कैन एक्सप्लोर द स्टोरी बुक डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड पेटिट फ्रांस. आपको पता है कि द सिटी ब्लेंड्स फ्रेंच एंड जर्मन कल्चर बिकॉज ऑफ इट्स बॉर्डर लोकेशन. So yeah, Strasbourg is another place that you must visit when you go to France.
1: Listen close what I gotta say. Cause you know there ain't no other way. Love is the message, eh? Y'all ready? Let's go. Yeah.

0: taken from the movie Tiger जिंदा है, that was a swag से स्वागत. एंड यस, मैं आपको बताऊं कि जब हम पेरिस गए थे, हम लंदन से गए थे, राइट? मैं वहीं रहती थी एंड तब हम वो यूरो टनल से गए थे. एंड दैट्स अनदर इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस टू हैव, यू नो हाउ यू कैन पार्क योर ओन कार इन साइड द ट्रेन एंड देन ट्रैवल ऑल द वे वाइल सिटिंग इन साइड योर कार. इट वॉज अ यूनिक एक्सपीरियंस एंड उसमें भी मज़ा आता है. सो या, अगर आप यूरोप गए हैं, लंदन में हैं, देन यू कैन गो फ्रॉम लंदन टू पेरिस यूजिंग दैट यूरो टनल की जो ट्रेन है. एंड दैट्स अनदर एक्सपीरियंस दैट यू कैन एन्जॉय.
1: What they're saying, life is like a roller coaster ride. What do you say? Par tum to yahan ho hi nahi, kis se poochun?

वेल फ्रांस जाएं तो ऑफ कोर्स फ्रेंच क्विजीन जरूर ट्राई करें, लेकिन होता यह है कि देसियों को भाई समोसे जलेबी की याद तो आ ही जाती है, राइट? तो अगर आप आईफिल टावर जाएंगे ना, जब पेरिस में, तो वहाँ पे जो रेलवे स्टेशन है आईफिल टावर के पास, उसके पास आपको एक हलवाई मिलेगा, जी हाँ, जो गर्मा गर्म जलेबियाँ और समोसे बनाता है. एंड ऑफ कोर्स यू नो दैट व्यू एंड द समोसा एंड जलेबी, मतलब यू कैन नॉट गो रॉन्ग. सो डेफिनेटली ट्राई दोज एज वेल.

भाई वाह, दैट वाज अफगान जलेबी टेकन फ्रॉम द मूवी फैंटम। एंड फ्रांस की बात कर रहे हैं तो आपने बोर्डो वाइन तो सुना ही होगा, राइट? तो आई रिकमेंड कि यू विजिट द वाटर मिरर। यू नो इट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिफ्लेक्टिंग पूल, इट्स इन बोर्डो। ऑफ कोर्स यू कैन टेस्ट वर्ल्ड फेमस वाइन्स ओवर देयर एंड यू कैन टूर द विनियर्ड्स। सो दैट्स अनदर प्लेस दैट यू मस्ट गो एंड विजिट।

0: शुभ दिन आ पहुंचा है। एक ऐसा अवसर जहां 60 वर्षों की परंपरा, बेमिसाल कारीगरी और पीढ़ियों के विश्वास का संगम आ रहा है आपके शहर फ्रिस्को में। PMJ Jewels.
1: Be a part of this grand opening celebration from 20th June Saturday onwards and get exclusive offers, exciting celebrations and opportunities to win beautiful jewelry pieces. PMJ Jewels. Tradition crafted, style defined.
2: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
3: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
4: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
5: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
6: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
7: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
6: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
8: बेटा, 95% आए?
9: हाँ मम्मी।
8: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
10: मेरा?
8: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
10: वो
11: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। AG Fintechs helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintechs.com. Call 972-618-8555. AG Fintechs, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. The Texas Super Kings are here and the action is absolutely heating up. Don't miss a single thrilling moment. Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium. We have got electrifying matches on Thursday, June 18th, Saturday, June 20th, Sunday, June 21st. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.
12: Papa, Father's Day पे क्या गिफ्ट चाहिए?
13: बेटा है तू मेरा, तुम लोग साथ बैठ जाओ, यही काफी है।
14: और वही तो सबसे बड़ा गिफ्ट है। All that your father needs is good food, great company, and unforgettable moments. This Father's Day weekend from June 19th to 21st, take your dad to the Flavor Lounge Frisco. Indulge in refined flavors, elegant dining, and moments that truly matter. Plus, every father gets one free cocktail or mocktail. The Flavor Lounge on Preston Road near Malabar Golden Diamond Complex. Call 469-712-3591 and reserve your table today.
15: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.

दिस इज KZMP 104.9 FM फन एशिया रेडियो पे आप है मेरे यानी नीलम के साथ और एक बार फिर से आप सबकी खिदमत में नीलम का प्यार भरा नमस्कार आदाब एंड वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जी हाँ, इस सितार की धुन के साथ स्वागत है आपका, प्यार भरा म्यूजिकल स्वागत कर रही हूँ मैं नीलम आपका साथ। हमारा साथ होता है म्यूजिकल साथ एवरी सैटरडेज 12 से 3 के बीच में एंड ऑन संडेज 12 से 2 के बीच में। 2 बजे तक आप अक्सर सुनते हैं अमूमन हमारे साथ कुछ बॉलीवुड के थीम बेस्ड गाने, कुछ विषय पर बातें होती है फिल्मों की, गानों की, ऐसी बहुत सारी कहानियां आपके लिए, अलग अलग सेगमेंट, अलग अलग विषय एवरी सैटरडे टिल 2 PM एंड आफ्टर दैट वी ऑल्सो हैव अ कम्युनिटी की बातें। जी हाँ, जिसे हम कहते हैं कम्युनिटी राउंड अप विथ मी योर होस्ट वंस अगेन नीलम। आज का विषय कौन सा है, आज के गाने कौन से हैं, बिल्कुल मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले बिल्कुल शुक्रिया अदा करना चाहूंगी मधुलिका को जिनको आपने सुना। 2:12 बजे तक रहूंगी मैं आपके साथ 3 बजे तक। तो चलिए पहले सुनते हैं ये गीत और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आज के हमारे ज़्यादातर गाने किस विषय पर होंगे, क्या सुनेंगे आप और क्या बातें होगी। अक्सर हम साथ मिलकर कुछ बातें भी करते हैं, हम साथ मिलकर अच्छे गाने भी सुनते हैं, आज भी कुछ ऐसी ही बात होगी, लेकिन क्या बात होगी उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार ऑन 104.9 FM।

सो अगर आप सोच रहे हैं कि आज कौन से विषय पर बातें होने वाली है, कौन से फिल्मों की बातें होने वाली है, कौन से कलाकार की बातें होने वाली है, सो हम संगीत की बातें करने वाले हैं आज। जी बिल्कुल, कल है वैसे तो वर्ल्ड म्यूजिक डे, और हम कल भी आपके लिए खास सेगमेंट लेकर आएंगे जहां पर मैं आपके लिए एक्चुअली वेडिंग सॉन्ग्स लेकर आने वाली हूं एज पार्ट ऑफ अवर रेफर विनर। लेकिन आज चूंकि हमारे पास 2 घंटे होते हैं, मैंने सोचा कि इस सेगमेंट में हम बातें करेंगे संगीत की और उस इंस्ट्रूमेंट्स की कि जो हमारे वेद और पुराण में भी जिसका नाम लिया गया, जिसका जिक्र किया गया है। अगर हम सोचें कि संगीत की शुरुआत कहाँ से हुई, तो संगीत की शुरुआत ऐसी कोई घटना नहीं है कि संगीत किसी ने आविष्कार नहीं किया होगा। संगीत प्रकृति से मिलता है। आप कहीं भी जाइए, नदी पर बैठिए, किसी समंदर किनारे पर बैठे, आपको लगेगा कि आप संगीत सुन रहे हैं। हर जगह पे जैसे कि संगीत है। तो बस ऐसे बारिश की बूंदों की टप टप की बातें हो, हवा की सरसराहट की बातें हो, या समुंदर के लहरों की आवाज़, ये सारी बातें होती है संगीत, है ना। तो इस संगीत की और ख़ास करके जो हमारे एंशियंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे कि सितार, तबला या बांसुरी, उस पर ज़्यादा जहाँ पर आपने गानों में उस संगीत को सुना, उसका इस्तेमाल सुना, वो गाने हम आपके लिए ज़्यादा लाए हैं। कुछ बातें होगी आपके साथ, कुछ सवाल हो गए, कुछ आपकी जानकारी, कुछ हमारी जानकारी रहेगी, ये सारी बातें आपके साथ टिल 2 PM ऑन 104.9 FM फनेशिया रेडियो।

आज आप ज़्यादातर गाने ऐसे सुनेंगे जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तबले की धुन होगी या बांसुरी की या सितार की, और ऐसे बहुत सारे गाने हैं। हम अक्सर मानते हैं कि 50s और 60s के गाने बिल्कुल बिल्कुल अद्भुत गाने, इनफैक्ट वो बहुत सारी मैं बातें करने वाली हूँ कि हमारे सलीलदा हो या ऐसे बहुत सारे ऐसे हमारे संगीतकार हैं जो खुद सितार भी बजाया करते थे, वो भी बातें होती रहेंगी। लेकिन कुछ ऐसे गाने जो नई फिल्मों में भी है, लेकिन नई फिल्म हम अक्सर मानते हैं कि नई फिल्मों में संगीत नहीं, वो संगीत अच्छा संगीत विथ अ वेरी ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट यूजेज, ये सारी बातें हमारे नई फिल्मों में भी होती है। तो चलिए एक और गीत हो जाए ऑन 104.9 FM।

ढाई शाम रोक लई रोक लई रोक लई ढाई शाम रोक लई और चक मुख चूम लई मुख चूम लई मुख चूम लई सर से मोरी चुनरी गई गई गई सर से मोरी चुनरी गई सरक सरक सरक सरक सरक सरक सरक सरक सरक, सरक, सरक, सरक।

दधकी भरी मटकी दधकी भरी मटकी लई जात रही डगर बीच। आहट सुन जियरा गयो धड़क धड़क धड़क।

0: संगीत की ना तो कोई भाषा है, संगीत का ना तो कोई धर्म है, संगीत की ना तो कोई सरहद है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं कर रही हूँ आप सभी के साथ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की करेंगे हम बातें। और संगीत की बातें तो अक्सर आप सोचते हो कि अमूमन हमारे कार्यक्रम में होती ही है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा होने वाली है। और जो गाने भी होंगे आपके लिए, वो ऐसे होंगे गाने जहाँ कहीं ना कहीं आपने सितार की धुन सुनी, बांसुरी की धुन सुनी, या बहुत ही अच्छी तरह से तबले के साथ जुगलबंदी सुनी। और ये सारी बातें करते रहेंगे हम आपके साथ 2 बजे तक। लेकिन उससे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी उमर ख्वाजा जी का, क्योंकि ये कार्यक्रम के वो है प्रायोजक, इस सेगमेंट के है प्रायोजक। और उनका नंबर है 4693504061, अगेन दैट इज 4693005046। और यू कैन विजिट attorneyomar.com। कभी कभी ये बातें हो जाती है कि हम छोटे मोटे एक्सीडेंट्स में जब फंस जाते हैं, तब हमारा ध्यान अटर्नी से ज़्यादा हमारा ध्यान अपनी सेहत पे होना चाहिए, राइट? वी डोंट वांट टू डील विद द इंश्योरेंस कंपनी, वी डोंट वांट टू डील विद सो मेनी अदर लीगल फॉर्मेलिटीज, ये वो। लेकिन तब हमारे लिए अगर कोई ऐसी हो पाती जो हमारे लिए लड़ सके, इंश्योरेंस कंपनी के साथ बात कर सके, एंड दैट इज वंस अगेन मिस्टर उमर ख्वाजा। You don't pay until you win. कितनी अच्छी बात है। तो बस आज ही उनको कॉल कीजिएगा, एंड दैट इज वंस अगेन 4693005046। मैं हूँ नीलम, आपके साथ रहूंगी। कुछ बहुत ही बेहतरीन सवाल है। आप सोचेंगे सवाल में क्या बेहतरीन है, ऐसे सवाल जो बॉलीवुड से कुछ मिले जुले भी नहीं है, बहुत दूर की बातें हैं, संगीत की बातें। तो वो संगीत की बातें आपसे मैं पूछने वाली हूँ, लेकिन उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ 104.9 FM फन एशिया रेडियो। ये सेगमेंट जारी रहेगा आपके लिए टिल 2 PM। तो सुनते रहिए, ऐसे बहुत खूबसूरत गाने हैं आप सभी की खिदमत में, जहां बातें हैं सितार की, बांसुरी की और तबले की धुनों के साथ, कुछ सवाल भी है संगीत के लिए। और मनो 4 पॉइंट
1: शुभ दिन आ पहुंचा है, एक ऐसा अवसर जहां 60 वर्षों की परंपरा, बेमिसाल कारीगरी और पीढ़ियों के विश्वास का संगम आ रहा है आपके शहर फ्रिस्को में। PMJ Jewels.
2: Be a part of this grand opening celebration from 20th June Saturday onwards and get exclusive offers, exciting celebrations and opportunities to win beautiful jewelry pieces. PMJ Jewels. Tradition crafted, style defined.
3: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
4: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
5: ये तेरा घर, ये मेरा घर।
6: बाइंग और सेलिंग अ होम इजंट जस्ट अ ट्रांजैक्शन, इट्स वन ऑफ लाइफ्स बिगेस्ट डिसीजंस एंड इट डिजर्व्स द राइट गाइडेंस।
7: आई एम नवनीता, योर ट्रस्टेड रियल्टर विद केलर विलियम्स रियल्टी।
8: I believe every home journey should feel exciting, stress-free and truly special. Whether you're buying your first home, upgrading, relocating or preparing to sell, I'm with you every step of the way. Kyunki har ghar ki ek kahani hoti hai. Let's create yours.
9: Call Navneeta Khemka today at 347-449-4242.
1: Is shahar ko hua kya? Kahin pe anvishwas ka kala saaya? कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में, कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
10: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
4: विजिट psychicramnath.com, कॉल 4693474401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
11: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ऑन रिजल्ट्स में वेरी।
12: यार बिजनेस चलाना दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, हर तरफ बस एक्सपेंसेस ही एक्सपेंसेस।
13: बिल्कुल, लेकिन तुझे पता है अब वही एक्सपेंसेस तुझे इनकम भी दे सकते हैं।
12: सच में एक्सपेंसेस से इनकम, कैसे?
13: कनेक्टिंग अमेरिका के थ्रू। उनके पास एक यूनिक इंश्योरेंस सोल्यूशन है जो बिजनेस ओनर्स को अपने खर्चों को एक इनकम स्ट्रीम में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है।
12: वाह, मतलब पैसे सिर्फ जाएंगे नहीं, वापस भी आएंगे।
13: एग्जैक्टली, अगर तू अपनी बॉटम लाइन बूस्ट करना चाहता है तो जेम्स को आज ही कॉल कर।
12: नंबर बोल जल्दी।
13: कॉल जेम्स एट 321-888-7345 और विजिट connectingamericafinancials.com।
4: कनेक्टिंग अमेरिका, जहां स्मार्ट बिजनेस ओनर्स टर्न कॉस्ट्स इनटू कैश।
14: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
15: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
16: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
15: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
16: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
15: सच में सब संभालेंगे?
16: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
12: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.

तुझे याद कर लिया है आयत की तरह, और इस बहुत ही खूबसूरत गाने के साथ एक बार फिर से प्यार भरा म्यूजिकल स्वागत इस कार्यक्रम में जो मैं नीलम आपके लिए प्रस्तुत कर रही हूँ 104.9 एफएम वन एशिया रेडियो। और आज हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की करेंगे बातें, कुछ संगीत के इतिहास की करेंगे बातें। देखिए, हर इतिहास में कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं एम्पायर्स के लिए, ये राजा हुए, वो बादशाह हुए, लेकिन संगीत के भी कुछ होती है बातें, संगीत के इंस्ट्रूमेंट्स की भी कुछ कहानियाँ होती है। वो सारी कहानियाँ की करेंगे हम बातें, मिलकर करेंगे और ये गाने भी मिलकर सुनेंगे टिल 2 PM। शुक्रिया अदा करना चाहूँगी माई टाइम इक्विटी का, जी हाँ, सीपीएस सुधीर पाई, जिनकी वजह से हम इस सेगमेंट आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। और उनका नंबर जो है वो है 4697021272, आज ही उनको कॉल कीजिएगा। एंड वंस अगेन, दैट इज मिस्टर सीपीएस सुधीर पाई, दे कैन ऑफर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एज वेल एज रियल एस्टेट एंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, मिस्टर सुधीर पाई। सितार की खूबसूरत धुन सुनकर लगता है कि दुनिया में कहीं अलग ही दुनिया में पहुंच गए हैं ना, तो बस ऐसी अलग ही दुनिया हम आपके लिए लाते हैं हर शनिवार की दोपहर 3 बजे तक एंड ऑन संडेज 2 बजे तक। ये बातें होती रहती है आप ही के साथ ऑन 104.9 FM फनेशा रेडियो। चलिए ये गीत सुन लेते हैं, उसके बाद मैं पूछूंगी पहला सवाल आपके साथ। मैंने वैसे कहा था कि कुछ सवाल भी हो गए, तो पहला सवाल होगा इस गाने के बाद ऑन 104.9 FM।

0: कैसा सा है कोई एक तारा। और कहा जाता है कि भारत की अगर मैं बात करूँ तो संगीत की जो परंपरा है वो हजारों हजारों सालों पुरानी है। हमारे वेद की बात कर ले, पुराणों की बात कर ले, तो साम वेद जो है, जैसे कि चार वेद में से साम वेद में संगीत का आधार माना जाता है। साम वेद में बहुत सारी बातें लिखी गई है संगीत के लिए, संगीत के उद्भव के लिए। कहा जाता है कि जो हमारे ऋषि मुनि थे, जब वो मंत्र का उच्चारण करते थे और सुर और लय के साथ करते थे, वहीं से जो क्लासिकल म्यूजिक की जो नींव पड़ी है वो तब से पड़ी है। तो चलिए, अब होता है मेरा पहला सवाल आप सभी के लिए ऑन 104.9 FM फनेशिया रेडियो। जैसे कि मैंने कहा कि देखिए, संगीत अगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको रेडियो पे या आप गाते हैं गुनगुनाते वहीं से मिलता है, संगीत हर जगह है। प्रकृति के हर हर कोने में संगीत है, नदी में, समुंदर में, पंखियों की जो भी बातें, वो सारी सारी संगीत की बातें। लेकिन फिर भी हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार मैं आपको सवाल एक पूछना चाहती हूँ। अगर आप जानते हैं कि सृष्टि में, ये जो ब्रह्मांड में सबसे शुरुआत में कौन सी ऐसी ध्वनि थी जो पहली संगीत की ध्वनि मानी जाती है? फिर से मेरा सवाल दोहराती हूँ, अगर आपको पता है, आपने कहीं पढ़ा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग अ क्वेश्चन कि अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू पौराणिक अनुसार, सृष्टि की जब शुरुआत हुई थी, ये पूरा ब्रह्मांड एंड यूनिवर्स इट वॉज क्रिएटेड, वॉट वॉज द वेरी फर्स्ट साउंड जो संगीत की ध्वनि मानी जाती है? 104.9 FM फनेशा रेडियो पे मैं हूँ नीलम आपके साथ, और पूछना चाहूँगी आपको कि सबसे पहले इस ब्रह्मांड में कौन सी ध्वनि थी जो संगीत की ध्वनि मानी जाती है। लूँगी कुछ कॉल्स ऑन एयर, आपके रेडियो की आवाज़ बिल्कुल कम, एंड फनेशा यू आर लाइव ऑन एयर।
1: हाय, इज इट ओम?
0: इट इज ओम। और आपका नाम क्या है?
1: सेजल।
0: आपको अच्छा लगता है संगीत? आप गाती हो, गुनगुनाती हो या सुनती हो?
1: नहीं, मैं गाऊंगी तो सब भाग जाएंगे। मैं नाचती हूँ।
0: अरे देखिए, वो भी एक संगीत का ही प्रकार है, राइट? जहाँ जहाँ लय है, ताल है, सुर है, तो बिल्कुल आप कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। बिल्कुल 104.9 आप है ऑन एयर, बताइए।
1: मुझे लगता है ओम।
0: बिल्कुल, इट इज ओम। और आप कितना संगीत को जानती है और मानती हो?
1: ओ, जैसे कहते हैं ना, रग रग में है।
0: हाय हाय, क्या बात है, संगीत तो रग रग में होना ही चाहिए क्योंकि उसकी शुरुआत सृष्टि के आरंभ से हुई है। थैंक यू सो मच मैम, एंड लास्ट कॉलर एट, आई हैव ऑल माय लाइंस आर बिजी, लेकिन मैं सारे कॉल्स नहीं लूंगी। आपका जवाब बताइए, क्या है आपका जवाब?
2: मेरा जवाब है ओम।
0: जी सर, बिल्कुल इट इज ओम। और आप कितने करीब है संगीत से?
2: क्वाइट क्लोज।
0: क्वाइट क्लोज। आप गाते हैं, गुनगुनाते हैं, सुनते हैं, क्या है
2: सब आप? कुछ
0: सब कुछ। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच।

दोनों तुझ पे कुर्बान है। कुछ ऐसे बहुत ही खूबसूरत गाने आपके लिए मैं लाई हूँ, जहाँ पर आप बहुत ही खूबसूरती से कहीं ना कहीं सितार की धुन सुनेंगे, बांसुरी की या तबले की। क्यों मैं इस तीन पर ही जुड़ी हुई हूँ आज क्योंकि ये सबसे हमारे प्राचीन जो इंस्ट्रूमेंट है वो ये तीन है। बाद में बहुत सारे और भी इंस्ट्रूमेंट आए। आज तो आप कोई भी गाना उठा कर सुन लीजिए, आपको लगेगा कि एटलीस्ट देर आर मोर देन 50 इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। लेकिन अगर हमारे धर्म की बात कर ले, हम हिंदुइज्म की बात कर ले, तो इस तीन का हमेशा कहीं ना कहीं जिक्र किया गया है। और ऑन दैट थॉट आई हैव वन मोर क्वेश्चन। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अभी भी मेरे कॉल जारी है जो आप मुझे बता रहे हैं पहले ही सवाल के लिए, तो वो कॉल्स मैं बिल्कुल लेती रहूँगी ऑफ एयर। आपसे बहुत सारी बातें हो रही है, तो चलिए कुछ गाने और भी सुन ले। और उसके बाद एक और मेरे जहन में ख्याल आया है, कभी कभी मेरे दिल में भी ख्याल आते हैं, बहुत आते हैं, तो चलिए एक और सवाल आया है, लेकिन ये गीत सुन लेते हैं, उसके बाद मैं पूछूंगी दूसरा सवाल।

0: का उच्चारण, ये है संगीत की बातें। जी हाँ, अगर दुनिया का सबसे पहला, ब्रह्मांड का सबसे पहला नाद, एंड दैट इज ओम। और इसीलिए अगर आप संगीत जानते हैं, संगीत सीखे हुए होंगे, आपको पता होगा कि नाद ब्रह्म, ये अक्सर आपने ये लफ्ज़ सुना होगा, अल्फाज सुना होगा कि नाद ब्रह्म कहा जाता है, क्यों नाद ब्रह्म है, वहीं से संगीत की शुरुआत हुई। ऐसी बहुत सारी बातें, एंड इनफैक्ट यू नो व्हेन आई थिंक अबाउट इट, इवन 2 आवर्स आर नॉट रियली इनफ। हमारे अगर हम ब्रह्मांड के साथ साथ जो हमारी नींव रखी गई थी, जो इतिहास की बात है, संगीत की बात है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार देख लीजिए, या इवन क्लासिकल म्यूजिक राइट अब बिफोर 4000 ईयर्स अगो जो भी हमारे राग रागिनी बने थे, इफ़ आई रियली स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दोज थिंग्स, आई डोंट थिंक इवन 2 आवर्स वुड बी इनफ। और इसीलिए आज मैं ज़्यादातर जो बातें लाई हूँ, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स की बातें लाई हूँ, चाहे वो सितार की बात है, बांसुरी की बात है, या फिर हम तबले की भी बातें करेंगे। और जैसे कि मैंने कहा, मेरे जहन में एक सवाल आया है, कमर्शियल ब्रेक में सिर्फ 6 मिनट बाकी है, तो चलिए जब हम पुराणिक कथाओं की बातें कर रहे हैं, तो आपसे मैं सवाल पूछना चाहूँगी कि अकॉर्डिंग टू ऑल अवर स्क्रिप्चर, जहाँ जहाँ हमारे जितने भी महाभारत की बातें, भागवत की बातें, रामायण की बातें, ऐसे बहुत बहुत सारे ग्रंथ हैं जो देवी देवताओं की बातें हैं, राइट, कहीं ना कहीं किसी ना किसी देवी देवता के साथ कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट जुड़ा हुआ है। तो इट्स अ वेरी ब्रॉडर कैटेगरी में आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि आपको कोई भी ऐसे देवी या देवता याद है जिनके हाथों में आपने कहीं पर भी मंदिर में या कहीं पर भी उनकी मूर्ति देखी हो, तो कोई आपने कहीं ना कहीं कोई इंस्ट्रूमेंट देखा हो। तो मैं ये सवाल पूछना चाहूँगी कि जो भी आपको याद है हमारे पौराणिक ग्रंथों के अनुसार, जहाँ जहाँ भी आपने ये मूर्तियाँ देखी थी, टीवी की बात है, मंदिर की बात है, या ग्रंथों में अगर आपने पढ़ी हो, तो बिल्कुल मुझे बताइएगा। 972-235-5555 एंड फनेश जी बताइए, क्या है आपका जवाब? जी सर,
1: देखिए, सरस्वती माँ के हाथ में सितार होता है हमेशा,
0: बिल्कुल जी, वीणा होती है जी, बिल्कुल सितार,
1: वीणा वादक,
0: वीणा वादक,
1: और किशन जी के पास बांसुरी होती है,
0: बिल्कुल,
1: हमारे शिव जी के पास डमरू होता है,
0: जी,
1: हर एक के पास संगीत तो उनसे जुड़ा ही हुआ है।
0: जी जी, वही मैं कहना चाहती थी कि संगीत आजकल की बातें नहीं है, हमारे पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मांड के साथ ही संगीत की शुरुआत हुई। वेरी नाइस सर, आपका नाम क्या है?
1: मेरा नाम अंशुमान है।
0: अंशुमान जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एंड फनेश, योर लाइव ऑन एयर।
2: माँ सरस्वती के हाथ में वीणा,
0: जी जी,
2: तो ये तो खैर बड़ा ही सिंबॉलिक है, बिकॉज संगीत तो वहीं से स्टार्ट हुआ है।
0: जी जी, बिल्कुल। और आपका नाम क्या है मैम?
2: मेरा नाम रितु है।
0: रितु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत दिनों के बाद आपने हमें कॉल किया, आई रिमेम्बर योर नेम।
2: नहीं, मैं आपका, मैं सुनती हूँ प्रोग्राम सैटरडे को,
0: जी जी,
2: और बाकियों का भी सुनती हूँ, बट मुझे आज तो आपकी सिलेक्शन हैज बीन इनक्रेडिबल।
0: ओह थैंक यू मैम, आई रियली अप्रिशिएट योर काइंड वर्ड्स, थैंक यू सो मच।

अक्सर ये मानते हैं कि सरगम की धुन जो होती है, शास्त्रीय संगीत की बातें होती है, वो सिर्फ इट्स वेरी वेरी बोरिंग, राइट? वी डोंट प्रिफर टू गो टू दोज काइंड ऑफ कॉन्सर्ट्स. और हम मानते हैं कि जो पुराने गाने थे उसमें ही ये सारी बातें, ये बात नहीं है. और इसीलिए आज के हमारे जो नए गाने, कंपैरेटिवली नए गाने, 5 साल पुरानी फिल्म हो या 10 या 15 साल, उसके कुछ ऐसे गाने लाए हूँ जहाँ पे बहुत ही खूबसूरती से इस सारे राग रागिनी का इस्तेमाल किया गया है. बहुत ही खूबसूरती से आप कहीं ना कहीं सितार या बांसुरी या तबले की बहुत अच्छी जुगलबंदी भी सुनेंगे. ये सारी बातें रहेगी मेरे यानी कि नीलम के साथ ऑन 104.9 FM फनेशिया रेडियो. सो बने रहिए हमारे साथ इस सेगमेंट में 2 बजे तक. वीणा वादक माँ सरस्वती जी, हाँ सरस्वती जी जो है संगीत की देवी, जो है विद्या की देवी, उनके हाथ में अक्सर आपने वीणा देखी है. सृष्टि का जो सर्जन करते हैं, वो संहारी करते हैं, वो है शिव जी. और शिव जी के हाथ में अक्सर आपने डमरू देखा है. इफ़ यू रिमेंबर, नारद कैरेक्टर हर फिल्म में, हर टीवी में, जहाँ जहाँ भी नारद का कैरेक्टर आता है या इवन पौराणिक कथाओं में, उनके हाथ में भी जो तंबूरा कहते हैं, इट इज़ एक्चुअली वन फॉर्म ऑफ वीणा. तो उनके हाथ में भी यही बात दिखाई जाती है. और कृष्ण कन्हैयावाला की तो बात ही कुछ और है, जिनके हाथों में है बांसुरी. और बांसुरी की बहुत सारी हम बातें करेंगे, वीणा और सितार की भी बातें करूंगी मैं. आपको ये सवाल भी पूछूंगी कि सितार का जो जन्म हुआ है, उद्भव हुआ कहाँ से हुआ, और वीणा और सितार में क्या फ़र्क है. जी हाँ, देर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस वीणा में और सितार में. वो सारी भी बातें होगी. बांसुरी के इतिहास की बातें करेंगे और तबले की शुरुआत संगीत में कहाँ से हुई उसकी भी करूँगी मैं बातें. तो उसके लिए आपको क्या करना है, छोटा सा काम करना है. बातें मैं करूंगी, आप मुझे कॉल भी करेंगे, जवाब भी देंगे. छोटा सा काम यह है कि आपको हमें सुनते रहना है. जी हाँ, 2 बजे तक ये सेगमेंट आपकी सेवा में मैं प्रस्तुत करती रहूंगी यहाँ पे ऑन 104.9 FM फनेशिया रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर.

104.9 FM फनी शरीरों पे इस बहुत ही खूबसूरत गाने, इस सुरीले गाने के साथ एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का। और 104.9 FM फनी शरीरो, मैं हूँ नीलम आपके साथ। सुरीले लम्हे, यह होता है मेरा कार्यक्रम का नाम। जी हाँ, चाहे सैटरडे हो संडे, बिल्कुल कोशिश होती है कि आपके जितने भी लम्हे हैं, वीकेंड के जो पल हैं आपके, बहुत ही सुरीले गुजरे हमारे साथ और फनेश रेडियो के साथ। और आज का सफ़र ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा, कुछ मार्जिनल ज़्यादा सुरीला आपको इसलिए लग रहा होगा क्योंकि जो गाने हैं मैं ऐसे लाई हूँ कि नए होने के बावजूद उसमें बहुत ही खूबसूरती से सितार का या कहीं ना कहीं बांसुरी का या तबले की जुगलबंदी के साथ उसका इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि आज मैं बातें कर रही हूँ संगीत की, नाद ब्रह्म की। ओम नाथ से जहाँ पर सृष्टि की शुरुआत हुई थी, वहीं चाहे शंख की ध्वनि हो, बारिश की बूंद की बातें हो या हवा की बातें हो, हर जगह पे अगर आपको संगीत से प्यार है तो यू नो यू डोंट हैव टू रियली ट्यून इन टू एनीथिंग, राइट? आप हर कोने में संगीत ढूंढ ही लेंगे। तो वही संगीत की बातें चल रही है और उसी के साथ इंस्ट्रूमेंट्स की मैं बातें करूँगी आपसे। चलिए पहला गीत सुन लेते हैं, इस दूसरा गीत इस सेगमेंट का, और उसके बाद मैं आपके लिए पहला सवाल नहीं, इस सेगमेंट का लाऊंगी। अब तक हमने दो सवाल तो आपको कर लिए, तो ये एक और सवाल होगा सितार के लिए। कौन सा सवाल होगा उसके लिए थोड़ा सा इंतजार और 104.9 FM फन एशिया रेडियो। बहुत ही खूबसूरती से सितार की या बांसुरी की धुन सुनेंगे आप आज हर एक गाने में।

चलिए अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हमने जब सरस्वती देवी, सरस्वती माँ जो विद्या की साक्षात देवी है, उसकी उसके हाथों में आपने अक्सर जो देखा है वो वीणा है। जी हाँ, दैट इज वीणा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि वीणा और सितार में क्या फर्क है, आप मुझे बताएंगे। अगर आपने ये नाम सुना है कि वीणा और सितार भी सुना, जो भी आपने सुना है, जो भी आपकी राय है, मुझे बिल्कुल बता दीजिएगा। 9722355555 एंड दैट इज डेफिनेटली ह्यूज डिफरेंस। चलिए ह्यूज नहीं कहूंगी, लेकिन इट इज स्टिल अ डिफरेंट। ये दोनों जो सितार है, जो वीणा है, दे आर स्टिल नॉट द सेम इंस्ट्रूमेंट। हालांकि एक की उत्पत्ति दूसरे से ही हुई है, लेकिन फिर भी दे आर लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस। सो मुझे आप बताएंगे कि क्या है वो फ़र्क। 9722355555 और हमारी बॉलीवुड की इंडस्ट्री में आई मे नॉट रिमेम्बर ऑल ऑफ द कंपोजर्स, लेकिन एक है कंपोजर जो शायद मेरे जन्म के बहुत बहुत साल पहले थे, सलील दा की मैं कर रही हूँ बातें। ही यूज़ टू बी अ ग्रेट ग्रेट कंपोजर और उनकी इतनी अच्छी उनकी जो कला थी, यूज़ टू प्ले सितार अ लॉट। वो खुद सितार बजाते भी थे, इतनी अच्छी तरह से बजाते थे, और यही वजह थी कि जहाँ जहाँ उनकी फिल्मों में, जहाँ जहाँ उनका संगीत रहता था, सितार वॉज अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट इंस्ट्रूमेंट। हम पुराने गाने तो आपके लिए नहीं लाते, लेकिन इसी गाने को एक फिल्म है परख, जो सलीलदा के संगीत में सजी हुई थी, हरिहरन साहब ने वर्ल्ड म्यूजिकल डे के लिए इतनी अच्छी तरह से वो गाना गाया है, जो मुझे आपको सुनाना ही पड़ेगा व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सितार। लेकिन उसके साथ मैं आपके कॉल्स भी ले रही हूँ कि अगर आप सितार के लिए, चलिए इफ़ यू डोंट नो द डिफरेंस दैट इज़ फाइन, आप जो भी जानते हैं मुझे बताइए। सितार के लिए आप जो भी जानते हैं मुझे बताइए, वीणा के लिए आप जो भी जानते हैं मुझे बताइएगा। 9722355555 मैं हूँ नीलम, आपके साथ रहती हूँ एवरी वीकेंड, और आज कुछ ज़्यादा संगीत की बातें हो रही है टिल 2 PM। तो आप मुझे बताएंगे कि सितार की बातें या वीणा, जो भी आप जानते हैं।

सलील दा का बहुत ही खूबसूरत संगीत, और जैसे कि उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ सलील दा होते थे सितार होना बनता ही था। ही वॉज वंडरफुल वंडरफुल सितार प्लेयर। सो सितार का जो जन्म हुआ है वो प्राचीन वीणा से ही प्रेरित हुआ है। वीणा और सितार वैसे देखा जाए तो एक दूसरे के बहुत बहुत करीब है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा फ़र्क है। तो मैं कुछ ऑफ एयर कॉल्स अभी भी ले रही हूँ, अगर आप ये फ़र्क जानते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, वरना मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी राइट आफ्टर दिस सॉन्ग, जिसमें एक बार फिर से आप बहुत ही खूबसूरत सितार की धुन सुनेंगे ऑन 104.9 FM विथ मी योर होस्ट नीलम।

0: उस्ताद शाहिद परवेज़ ख़ान साहब थे सितार पे, और जो बहुत ही खूबसूरत गहरी आवाज़ सुनी आपने वो थी हरिहरन साहब की। मैं हूँ नीलम, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ आप सभी के इतने सारे कॉल्स के लिए। जी हाँ, हालांकि कल हम बातें और भी करेंगे वर्ल्ड म्यूज़िक डे की, लेकिन आज चूंकि मैंने सोचा कि 2 घंटे हैं तो क्यों ना बातें हो संगीत की शुरुआत की, संगीत के सारे वाद्य यंत्र यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स की, और सितार और वीणा की मैं कर रही हूँ बातें। तो मैं देख रही हूँ घड़ी के सामने कि कमर्शियल ब्रेक में सिर्फ 2 मिनट की देरी है, तो क्यों ना हम कमर्शियल ब्रेक से वापस आकर कुछ बातें करें। अभी भी आपके कॉल्स ले रही हूँ, अगर आप कुछ भी कहना चाहते हैं सितार और वीणा के फ़र्क के बारे में। जी हाँ, मैं फ़र्क के बारे में पूछ रही हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस। वीणा जो है वो बहुत ही प्राचीन वाद्य यंत्र है, सरस्वती जी के हाथ में अक्सर आप देखते हैं सरस्वती माता की मूर्ति के साथ, वो है वीणा, इट इज़ नॉट सितार। उनके हाथ में जो है वो है वीणा वादक। तो ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सितार की शुरुआत कब से हुई थी, और कुछ ऐसी बातें मैं करूँगी आपके साथ आफ्टर द कमर्शियल ब्रेक। तो आपको कहीं नहीं जाना है, टेक्सास प्राइमरी केयर की चलिए आप कुछ कुछ ज़्यादा जानकारी मैं दे दूँ। जी हाँ, पिछले 13 साल से आप ही की सेवा में, हमारी पूरी कम्युनिटी की सेवा में थे टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक। नाउ दे आर हैविंग अ न्यू नेम एंड दैट इज़ अ सेकेंड लोकेशन इन फ्रिस्को जिसका नाम है लिनक्सी मेडिकल क्लिनिक। और सबसे अच्छी बात पता है उसमें क्या है, दे आर ओपन 7 डेज़ अ वीक, यानी कि आप कभी भी जा सकते हैं। वीकेंड में अगर आपको नहीं वक्त मिलता तो वीकडेज में चले जाइए, वीकडेज में अगर आपकी नौकरी है जॉब है आप नहीं जा सकते तो वीकेंड में चले जाइए। 8 AM till 8 PM, जी हाँ इतना ही नहीं, रात के शाम के 8 बजे तक, रात नहीं कह सकते राइट, इवन शाम के 8 बजे तक हमारी जो गर्मी है वो चालू रहती है। तो वेल इट इज़ शाम के 8 बजे तक, दैट इज़ 8 AM till 8 PM, यू कैन वॉक इन एनी टाइम एंड दैट इज़ वंस अगेन इन फ्रिस्को 7 डेज़ अ वीक, टेक्सास प्राइमरी केयर। और मैं हूँ नीलम, आपके साथ 7 डेज़ अ वीक नहीं रहती, जी हाँ सिर्फ वीकेंड में रहती हूँ, सैटरडेज़ 3 बजे तक एंड संडेज़ 2 बजे तक। तो आज हमारा और आपका ये म्यूजिकल साथ होगा इस सेगमेंट के जरिए 2 बजे तक, जहाँ पर हम और भी कुछ बातें करेंगे सितार की और बांसुरी की। 2 बजे के बाद मैं आपके लिए प्रस्तुत करूँगी कम्युनिटी राउंड अप, जहाँ पर हमारे शहर में होने वाले बहुत सारे नॉन प्रॉफिट इवेंट्स एक्टिविटीज़ की जानकारी लाती हूँ। और कल जो मुलाकात होती है 12 से 2 के बीच में, जिसमें 1 घंटा होते ही हमारी बातें रीजनल कार्यक्रम में 12 से 1 के बीच में और 1 से 2 के बीच में कार्यक्रम प्रस्तुत करती हूँ गैर फिल्मी गानों की। ये सारी बातें, ये सारे पल लम्हे जो होते हैं बहुत ही सुरीले बनाने की छोटी सी कोशिश।
1: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। With over 400 years of family tradition through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
2: Beta, 95% aaye?
3: Haan mummy.
2: Good. अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
4: मेरा?
2: हाँ। प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
4: वो
5: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड CFO सर्विसेज। विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी।
6: सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी। टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डैलस, बिकॉज फन पिज्जा किचन जस्ट ड्रॉप्ड अ बोल्ड न्यू मेक्सिकन इंस्पायर्ड मेन्यू। And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
7: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
8: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
3: Hi, I'm Abhishek Bachchan, and you're listening to Funasia Radio. Thank you, all the listeners, for always being there, watching our films. Thank you, Funasia Radio, for spreading the word.

और स्वागत है आपका एक बार फिर से इस कार्यक्रम में जो हूँ मैं लाती हूँ आपके लिए यहाँ पर हर शनिवार की दोपहर 12 से 3 के बीच में 104.9 एफएम फनेशिया रेडियो। चलिए सुनते हैं ये गीत और उसके बाद कुछ बातें होगी सितार की और वीणा की। क्या बातें हैं बिल्कुल बताते रहूंगी और कुछ और भी बातें आपसे होती रहेगी, लेकिन साथ में मिलकर गुजारते हैं कुछ ये पल जो बहुत ही होते हैं सुरीले। एवरी वीकेंड विथ मी योर होस्ट नीलम ऑन 104.9 एफएम।

सितार और वीणा में फर्क बहुत सारे हैं, तीन या चार, लेकिन द मेन डिफरेंस जो है वो तार की संख्या होती है, जो तार होते हैं, राइट। सो वीणा जो है उसमें सात, सिर्फ सात तार होते हैं, और जिसमें से जो चार होते हैं वो बजाने वाले होते हैं और तीन जो होते हैं वो थाट या लय के लिए होते हैं। नाउ सितार हैज़ मैनी मोर देन वीणा, यानी कि वीणा की कंपेरिजन में सितार के जो तार होते हैं वो आमतौर से 18 से लेके 21, यानी कि 18 से लेके 21 तक हो सकते हैं, जो 6 या 7 उसके ऊपर होते हैं और उसके नीचे 11 या 13 रहते हैं। सो इफ़ यू आर प्लेइंग सितार, और अगर आपने देखी होगी बात, तो आप नज़दीक से सितार के इंस्ट्रूमेंट को, तो ये बात आपको पता होगी कि सितार इज़ यूजुअली लिटिल बिट बिकर ऑफ द तार, क्योंकि तार की संख्या जो होती है वीणा से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो ये तो हो गया उसका फ़र्क। लेकिन जो सितार है वो 13वीं सदी में जो एक फारसी इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था जिसका नाम था सितार, नॉट सितार, सितार, और उससे जो मुगल एम्पायर में ये भारत में उसकी एंट्री हुई थी जिसका नाम रखा गया था सितार। सो इन अ वे इट इज़ मोर लाइक ऑफकोर्स वीणा की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। और जो सितार का नाम मैंने जैसे कहा, इट केम फ्रॉम द फारसी वर्ड, एक फारसी शब्द है जिससे आया था ये नाम। तो चलिए, ये तो कुछ हो गई जानकारी, कुछ बातें बांसुरी की भी तो कर ले, है ना, 104.9 FM पे।

0: सो सितार और वीणा की बातें तो हो गई, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी एक और सवाल, और वो सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगी कि बांसुरी का नाम बांसुरी क्यों है? अब आप सोचेंगे कि भाई हमें बांसुरी का नाम बांसुरी होता है, एंड यू नो मैं मानती हूँ कि बंसरी की आवाज़ या बंसरी की धुन जो होती है मधुर, उससे ज़्यादा मधुरता ऑफकोर्स सारे संगीत में कहीं ना कहीं सारी संगीत में मधुरता है ही, लेकिन बांसुरी की जो मधुरता की बात है वो कुछ अलग ही है। तो आप मुझे बताएंगे कि बांसुरी का नाम बांसुरी क्यों है? जी हाँ, ये आप मुझे बताएंगे। जैसे कि देखिए, मैंने आपको कहा कि सितार जो है वो सेतार नाम से आया था, क्योंकि वो फारसी वर्ड है, एंड अराउंड 13th century इट केम इनटू इंडिया, जिसका सितार सेतार से सितार बन गया, और उसमें कुछ ज़्यादा तार होते हैं वीणा से। सो वीणा सितार दोनों वैसे देखा जाए तो इट्स वेरी क्लोज, लेकिन बांसुरी का नाम बांसुरी क्यों है ये बताएंगे मुझे आप। 9722355555 देखा जाए तो बहुत ही आसान है। देखिए, किसी भी नाम के लिए अगर आपको कुछ तोड़ना मरोड़ना पड़े तो मरोड़ भी दीजिए, लेकिन मुझे बताइए कि बांसुरी का नाम बांसुरी कैसे हुआ। एंड फनीशा, यू आर लाइव ऑन एयर। हेलो,
1: हाय, अंशु सिंह। बांसुरी को बांसुरी मेरे ख्याल से इसलिए बोलते हैं क्योंकि बांस मतलब बैम्बू, लकड़ी की बनी होती है।
0: जी जी, क्या बात है। और आपका नाम क्या कहा आपने? मैं
1: अंशु।
0: अंशु जी, आप संगीत कितना पसंद करती है, कितनी करीब हो संगीत से आप?
1: भाई, हम क्लासिकल संगीत तो कुछ नहीं करते हैं, ना जानते हैं ज्यादा, बट हम अप्रिशिएट बहुत करते हैं जो आप बोल रहे हैं, जैसे अलबेला सजन और भूपेन हजारिका, सब जो हमने सुने हैं बॉलीवुड में वो हमें बड़े पसंद है। और मेरे जो बच्चे हैं, मेरी डॉटर जो है वो बैंड में थी, तो वो बांसुरी प्ले करती थी, मेरे बच्चे बैंड में रहे।
0: Very nice, very nice. I am sure you are very proud of her for that.
1: Yes, absolutely.
0: संगीत एक बहुत ही आसान तरीका है किसी भी इबादत को करने के लिए. So very, very nice, Anshu ji. Thank you so much for your call. So, आप कुछ बांसुरी के लिए बताना चाहे तो बिल्कुल 9722355555. आज ज़्यादा म्यूजिकल हो रही है बातें, हमारी सफ़र में वैसे भी सुरीली बातें होती है हर शनिवार के दोपहर रविवार, आज थोड़ा सा ज़्यादा आपको ले चल रही हूँ मैं संगीत की दुनिया में, बांसुरी की बात, सितार की बात कर रही हूँ आप सभी से मैं नीलम, क्योंकि बांसुरी का नाम बांसुरी क्यों पड़ा वो बताते हैं मुझे आप। एंड फनीशा, यू आर लाइव ऑन एयर। हेलो,
2: this is Deepak here. This is what at least I know, bansuri, because it's made from bans, bamboo. That's it called bansuri.
0: जी जी, very good. और दीपक जी, आप संगीत से कितना करीब है, आप कितना मानते हैं और जानते हैं संगीत को?
2: बस सुनता हूँ, अच्छा लगता है क्लासिकल भी। सितार इज माई फेवरेट इंस्ट्रूमेंट,
0: एब्सोल्युटली,
2: और वीणा भी अच्छी लगती है, सेकंड फेवरेट इज बांसुरी।
0: जी, और हमारे इंडस्ट्री में आई डोंट नो हाउ लॉन्ग यू हैव बीन लिसनिंग टू दिस शो, लेकिन मैं बात कर रही थी सलील दा की, कि हमारी अगर बॉलीवुड की अगर बात कर ले तो सलील दा से अच्छा संगीत या सितार किसी ने नहीं दिया किसी भी फिल्म में। सो ही इज वन ऑफ द बेस्ट।
2: आई एग्री, आई मीन ही इज ग्रेट म्यूजिशियन, एंड द वे सलील, नौशाद, आई थिंक दे वर द बैकबोन फॉर क्लासिक।
0: यस, दे वर, बट थैंक यू सर। एंड दैट्स आई एम प्लेइंग लिटिल बिट न्यूअर सॉन्ग्स, सेइंग कि ये जो हमारे पुराने थे वो तो जेम्स थे ही, लेकिन नए गानों में भी कहीं ना कहीं बहुत ही खूबसूरती से संगीत का इस्तेमाल किया गया है। बट थैंक यू सो मच फॉर
2: योर कॉल। थैंक यू, थैंक्स फॉर प्लेइंग दिस।

जो सीधे बांस के जंगलों से बनी उसे कहते हैं बांसुरी। जी हाँ, बांसुरी का नाम इसीलिए है क्योंकि वो बांस की लकड़ी से बनी है। और अगर आप जानते ही होंगे कि हमारे कृष्ण कन्हैया जो पुराने वाद्य यंत्र की अगर हम बात कर रहे हैं, हमारे पौराणिक ग्रंथों की बात कर रहे हैं, तो कृष्ण कन्हैया का जो प्यार था, कृष्ण भगवान जी का प्यार था बांसुरी के लिए, भक्ति का एक मैं मानती हूँ प्रतीक है वो, भक्ति और प्रेम का, एंड दैट इज़ बांसुरी। ऐसे बहुत सारी बातें आज हमने आप सभी से की। जी हाँ, उन्होंने 4.9 FM फनेशिया रेडियो संगीत के लिए जितना भी कहा जाए वो कम है, लेकिन आज हमने बात की नाद ब्रह्म की भी, जिससे ओम से, जी हाँ, ओम की ध्वनि से सृष्टि का आरंभ हुआ था, ओम की ध्वनि से संगीत का आरंभ हुआ था। वही संगीत जो हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी कहीं ना कहीं हमने पाया, हमारे देवी देवताओं के हाथों में हमने वाद्य यंत्र देखा, और वही संगीत आज तक। और मैं मानती हूँ कि जिस संगीत से सृष्टि का आरंभ हुआ, तो वो संगीत जहाँ पर सृष्टि है तब तक रहेगा ही, है ना। और वही संगीत, अच्छा संगीत हम आपके लिए लाते हैं एवरी वीकेंड।

मेरी आवाज़ ही पहचान है घर याद रहे। जी हाँ, संगीत ही पहचान है घर याद रहे। और मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि संगीत सिर्फ सुरों का मेल नहीं है, ईश्वर या अल्लाह के लिए जो अगर हमारी इबादत है, वो सबसे आसान अगर इबादत है, सबसे आसान तरीका है, तो वो है संगीत। कई बार ये होता है कि हमारे साथ दुनिया का इतने सारे शोर होते हैं, इतनी सारी परेशानियाँ होती है हमारे रोज़मर्रे की ज़िंदगी में, और भीतर का सुकून जैसे कि कहीं ना कहीं चला जाता है ना। आपको भी लगता होगा कि पता नहीं क्या होता है ज़िंदगी में कि हर रोज़ हम दौड़ते ही रहते। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि कभी किसी कोने में बैठकर एक शांत धुन अगर हम सुन लें, तो जैसे कि हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, हमारी रूह को ज़िंदा रखने के लिए संगीत की ज़रूरत है। और वो मैं बहुत बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, महसूस करती हूँ, एंड आई एम श्योर आप भी महसूस करते होंगे कि संगीत वो एक ऐसा धागा है जो पूरी कायनात को, जब ब्रह्मांड की मैंने बात की कि नाद ब्रह्म की बात की, तो पूरी कायनात में हर जर्रे में संगीत है। जैसे कि संगीत बारिश की बूंदों में भी है, संगीत समुंदर की लहरों में भी है, संगीत हर जगह है। और हमेशा मैं ये मानती हूँ, जानती हूँ, और आप भी मानते होंगे, जानते होंगे कि अगर इबादत या सजदा करना है अल्लाह का या ईश्वर का, सबसे आसान तरीका है वो है संगीत। तो आप सभी के ज़िंदगी की बहुत सुरीली बातें हो, आपकी सभी की ज़िंदगी में बहुत सारे सुर रहे, लय रहे, ताल रहे, इसी बात के साथ मैं हूँ नीलम ऑन 104.9 FM फनेशिया रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर।

0: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
3: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, दस दिन, अगले ट्यूसडे।
4: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
5: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर। आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर। आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर। प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
3: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
6: प्लानिंग अ ग्रेजुएशन पार्टी, बर्थडे सेलिब्रेशन, फैमिली गैदरिंग और प्राइवेट इवेंट? मेक योर स्पेशल मोमेंट्स इवन मोर मेमोरेबल एट फन पिज्जा किचन कॉलोनी। रेंट प्राइवेट पार्टी स्पेस फॉर 3 आवर्स एट जस्ट $200 विद कस्टमाइज्ड मेन्यू ऑप्शंस टू सूट योर प्रेफरेंसेस। सेलिब्रेट विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, क्रिएट लास्टिंग मेमोरीज एंड एंजॉय योर special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
5: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply.
7: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
8: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
9: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज गाइडेंस लो।
10: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
11: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
12: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
11: Kya matlab?
12: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
11: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
12: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
11: Ab to karna hi padega, madam.
13: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
5: The Texas Super Kings are here and the action is absolutely heating up. Don't miss a single thrilling moment. Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium. We have got electrifying matches on Thursday, June 18th, Saturday, June 20th, Sunday, June 21st. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.
14: This is Uday Chopra and you are listening to Fun Asia Radio.

दिस इज KZMP 4.9 FM Fun Asia रेडियो पे आप है मेरी अनिक नीलम के साथ और एक बार फिर से आप सबकी खिदमत में कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका नाम है कम्युनिटी राउंड अप। जी हाँ, जहाँ पर हमारी कम्युनिटी में होने वाले बहुत सारे इवेंट्स एक्टिविटीज की जानकारी मैं आपको देती रहूंगी टिल 3 PM और उसी के साथ हमारे साथ जुड़ते हैं धार्मिक या सामाजिक संस्था के प्रतिनिधि। कार्यक्रम के दौरान बहुत सारे जो गाने होते हैं वो आप ही की पसंद के कुछ मोटिवेशनल गाने होते हैं, स्पिरिचुअल गाने होते हैं, कुछ पेट्रोटिक गाने भी होते हैं क्योंकि ये है आपका कार्यक्रम। हमारे मिट्टी की खुशबू के साथ लाती हूँ मैं नीलम हर शनिवार की दोपहर एंड ब्रॉट यू बाय अवर CEO वैशाली ठक्कर। जी हाँ, अवर CEO वैशाली ठक्कर एक हमारा छोटा सा प्रयास आप सभी के लिए, हमारी पूरी कम्युनिटी का जो एक प्रयास है प्रमोट करने के लिए आपके जो भी इवेंट्स है, नॉन प्रॉफिट एक्टिविटीज है, वो सारी ड्यूरिंग दिस आवर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ चार्ज ऑन 4.9 FM Fun Asia रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर एवरी सैटरडे।

श्रेया घोषाल की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत। जी हाँ, उन्होंने 4.9 FM फनेशा रेडियो, ये है आपका कार्यक्रम जहाँ आप ही से बनता है ये कार्यक्रम, आपके इवेंट से बनता है ये कार्यक्रम, आप ही के लिए ऑन 104.9 FM फनेशा रेडियो एवरी सैटरडे 2 to 3 PM। कुछ बिल्कुल आपको इवेंट्स की और कार्यक्रम की मैं जानकारी देना चाहूंगी। विस्डम ऑफ शत दर्शन एंड दिस इज एडवांस योगा प्रैक्टिसेस, जहां पर आप जा सकते हैं भारतीय निवास में। वेल, इट स्टार्टेड ऑन जून 16th टिल जून 19th, जो आज भी कल भी था, साइटिंग डे आर ऑलरेडी ओवर, बट वी वुड लाइक टू टॉक टू हिम, और आप हमसे कल लाइव उनकी बातचीत सुनेंगे ऑन 104.9 FM। डालस योगा फेस्ट 2026, और ये आपके लिए है टिल टुमारो। जी हाँ, जून 19 जिसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इट इज टिल टुमारो गोइंग ऑन एट राधा कृष्णा टेम्पल ऑफ डालस, एंड दैट इज डालस योगा फेस्ट 2026। हिंदू टेम्पल ऑफ ग्रेटर फोर्ट वर्थ आपको इनवाइट करते हैं देयर टेम्पल एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। जी हाँ, फोर्ट वर्थ में एक बहुत ही भव्य मंदिर है जिसका नाम है हिंदू टेम्पल ऑफ ग्रेटर फोर्ट वर्थ, एंड दे आर हैविंग अ सेलिब्रेशन फ्राइडे, दैट इज जून 26 टिल संडे जून 28, दैट इज नेक्स्ट फ्राइडे जून 26 टिल जून 28, एंड दैट इज हैपनिंग एट हिंदू टेम्पल ऑफ ग्रेटर फोर्ट वर्थ। DFW हिंदू टेम्पल आपको इनवाइट करना चाहते हैं श्रीमद् भगवत कथा सप्ताह में, जिसकी शुरुआत होगी अगले रविवार, जी हाँ, 28th ऑफ जून, गोइंग ऑल द वे टिल 4th ऑफ जुलाई। बाय शास्त्री जी श्री मृदुल कुमार जी, जी हाँ, जहाँ पर आप उनके भव्य वाणी से, अद्भुत मधुर वाणी से कथा अमृत का आनंद ले सकते हैं, हैपनिंग एट DFW हिंदू टेम्पल स्टार्टिंग ऑन जून 28। ऐसे बहुत सारे और भी कम्युनिटी के इवेंट्स, कार्यक्रम की जानकारी मैं नीलम आपको देती रहूंगी इस कार्यक्रम के दौरान, जो आपके लिए, आप ही की सेवा में हम लाते हैं हर शनिवार ऑन 104.9 FM।

कुछ हमारे वतन की बातें, कुछ वतन के गाने और उसी के साथ कुछ आपकी पसंद के गाने भी हम बिल्कुल सुनवाते हैं, क्योंकि ये है आपका कार्यक्रम, हमारी पूरी कम्युनिटी का कार्यक्रम, और हमारी कम्युनिटी बनती है आप ही से, राइट? चाहे आप इंडिया से, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका, जहाँ पर से भी है, एंड इवन इफ़ यू आर नॉट वन ऑफ दोज कंट्रीज रेसिडेंट, अगर आप यहाँ से नहीं आए, लेकिन फिर भी आप हैं हमारे साथ डैलस में, फोर्ट वर्थ में, तो बन गए हमारी कम्युनिटी के। तो बस हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत सारे ऐसे गाने और आप ही के पसंद की कुछ बातें हम लाते हैं यहाँ पर ऑन 104.9 FM फन एशिया रेडियो, अलॉन्ग विद सम कम्युनिटी इवेंट्स। मैं आपके लिए बहुत सारे कम्युनिटी इवेंट्स भी लाती हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ टिल 3 PM ऑन 104.9 FM फन एशिया रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर एवरी सैटरडे विथ मी योर होस्ट नीलम दवे।

0: कुछ आपके पसंद के मोटिवेशनल गाने जी बिल्कुल ऑन 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो, क्योंकि ये है आपका कार्यक्रम। जी हाँ, आपका कार्यक्रम, आप ही से बनता है ये कार्यक्रम जिसे हम प्रस्तुत करते हैं हर शनिवार की दोपहर। महाबोधि इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सेंटर ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी, और ये आप सभी को, हमारी पूरी कम्युनिटी को इनवाइट करना चाहते हैं, सैटरडे जुलाई 4th 9 AM टिल 5:30 PM एंड इट्स हैपनिंग इन 5525 मायर्स ड्राइव, गार्लैंड, टेक्सास। वंस अगेन, दिस इज द ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी ऑफ महाबोधि इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सेंटर ओपनिंग इन गार्लैंड ऑन जुलाई 4th 9 AM टिल 5:30 PM। वैष्णव संघ ऑफ डैलस प्रस्तुत करते हैं बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट एंड दिस इज हैपनिंग इन जुलाई 11th, जी हाँ 11th ऑफ जुलाई, एंड द वेन्यू इज लुइसविल, टेक्सास, 22 yards डैलस, दैट इज बाय वैष्णव संघ ऑफ डैलस। हिंदू रिश्ते मैच एंड मिंगल एंड इट्स अ गुजराती मैट्रिमोनियल इवेंट, जी इट्स नॉट एक्चुअली गुजराती, इट इज बाय TFW गुजराती समाज, एंड ऑल्सो यू कैन कॉल मिस्टर विज्ञान गोटेवाल एंड हिज नंबर इज 2145662171। August 8th हैपनिंग एट 1 PM एंड द वेन्यू इज स्प्रिंगविल हिल स्वीट्स बाय मैरियट एंड हैपनिंग वंस अगेन इन August 8th, दैट इज रिश्ते नाते, हिंदू रिश्ते नाते। श्री यमुना जी गुणगान महोत्सव, और ये होने जा रहा है बाय वैष्णव संघ ऑफ डैलस, वंस अगेन उनकी ही है ये प्रस्तुति, श्री यमुना जी गुणगान महोत्सव, एंड इट इज हैपनिंग इन August 27, 28, and 29 इन फेयरव्यू, टेक्सास। वंस अगेन, दिस इज बाय वैष्णव संघ ऑफ डैलस, दैट इज श्री यमुना जी गुणगान महोत्सव। एकल विद्यालय की एनुअल फंड रेजिंग इवेंट एंड दैट इज हैपनिंग इन ऑगस्ट एंड द वेन्यू इज गार्लैंड, टेक्सास, जी हाँ, एंड दिस इज ऑगस्ट, आप जा सकते हैं वहाँ पे, टिकट ले सकते हैं, कथक ऑन द सिल्वर स्क्रीन एंड द डेट इज August 28th फ्राइडे, ग्रैनविल आर्ट सेंटर इन गार्लैंड। वंस अगेन, दैट इज कथक ऑन द सिल्वर स्क्रीन एंड दिस इज बाय एकल विद्यालय एंड दिस इज अ फंड रेजिंग इवेंट, एनुअल फंड रेजिंग इवेंट हैपनिंग ऑन August 28th फ्राइडे, ग्रैनविल आर्ट सेंटर इन गार्लैंड। गंगा दशहरा सेलिब्रेशन हैपनिंग एट श्रीनाथ धाम हवेली इन कॉपल, टेक्सास, एंड दिस इज हैपनिंग नेक्स्ट संडे 28th of June 4 PM ऑनवर्ड। वंस अगेन, दैट इज श्री गंगा दशहरा सेलिब्रेशन एट कॉपल श्रीनाथ धाम हवेली। श्री गुरु भागवत हैपनिंग एंड दिस इज हैपनिंग ऑन August 8th एंड लोकेशन इज यूनिटी ऑफ डैलस एंड द फाउंडेशन इज साई डिवाइन फाउंडेशन।
1: शुभ दिन आ पहुंचा है, एक ऐसा अवसर जहां 60 वर्षों की परंपरा, बेमिसाल कारीगरी और पीढ़ियों के विश्वास का संगम आ रहा है आपके शहर फ्रिस्को में। PMJ Jewels,
2: बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रैंड ओपनिंग सेलिब्रेशन फ्रॉम 20th June सैटरडे ऑनवर्ड्स एंड गेट एक्सक्लूसिव ऑफर्स, एक्साइटिंग सेलिब्रेशंस एंड अपॉर्चुनिटीज टू विन ब्यूटिफुल ज्वेलरी पीसेस। PMJ Jewels, ट्रेडिशन क्राफ्टेड, स्टाइल डिफाइंड।
3: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
4: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
5: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
6: वेट, इतना सब और प्राइस?
5: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन, समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
7: मैं।
8: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
5: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड PGBT। तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
9: Did you know LASIK is just one of 6 ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
7: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
9: Visionary Eye. See clearly. Live boldly.
10: Aji sunte ho, soch rahi thi bete ki shaadi India mein kare?
11: India mein? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
10: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
11: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
10: सच में सब संभालेंगे?
11: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
5: Call Hari Basera on 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.

हे भगवान, मुझको तो जिंदगी दोबारा दे। वेल, मैं ये मानती हूँ जिंदगी दोबारा नहीं मिलती, राइट? आप भी मानते हैं ना कि जो हमें जिंदगी मिली है वही ये है एक हमारे पास। इस जिंदगी का सबसे अच्छा इस्तेमाल हम कैसे करें? कभी कभी जिंदगी में ये बातें बन जाती है कि हमको लगता है कि वॉट इज़ द पर्पस। एंड आई थिंक, यू नो, एटलीस्ट आई बिलीव इन दैट कि वेन यू हैव अ पर्पस, वेन यू हैव अ विजन, वेन यू हैव समथिंग टू डू फॉर अदर्स, देन इट बिकम्स मोर वर्थफाइल। तो मुझे पता नहीं आपकी क्या राय है, लेकिन मेरी तो यही राय है कि अगर आप जिंदगी दूसरों के लिए जीते हैं तो जिंदगी में और भी मजे आ जाते हैं। दूसरों के लिए अगर आप जिए ना जिए, लेकिन आपके परिवार के लिए जिए तो भी जिंदगी में मजे है। 104.9 FM वनेशा रेडियो पे आप है मेरे यानी कि नीलम के साथ एवरी वीकेंड। 9722355555 कुछ ऐसे गाने इंस्पिरेशनल एंड पेट्रियोटिक आप ही की सेवा में।

कुछ इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल बातें आप सभी की खिदमत में, आप सभी की सेवा में मैं प्रस्तुत करती हूं नीलम दवे ऑन 104.9 एफएम फनेशा रेडियो, ब्रॉट यू बाय अवर सीईओ वैशाली ठक्कर एंड इट्स फ्री प्लेटफॉर्म फॉर एंटायर कम्युनिटी। जी हाँ, आपने सही सुना, अगर आप किसी मंदिर से, मस्जिद से, गुरुद्वारा, चर्च, किसी भी धार्मिक संस्था से जुड़े हुए हैं एंड देन दिस इज योर चांस, दिस इज योर प्लेटफॉर्म, क्योंकि पूरे हफ्ते में एक ही हम बिल्कुल घंटा डेडिकेट करते हैं हमारी पूरी कम्युनिटी को। यह है प्रयास, हमारा एक नम्र प्रयास आप सभी की मदद करने के लिए। सो प्लीज डू रीच आउट टू अस neelam@phoneasia.net। कल है योगा डे और बहुत सारे मंदिर में, बहुत सारे धार्मिक या सामाजिक संस्था में बहुत सारी एक्टिविटीज, गतिविधियां हैं, जैसे कि AWGP ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार में भी कल है 21 जून 7:30 AM टिल 8:30 AM योगा सेलिब्रेशन एंड इट इज हैपनिंग एट नॉर्थ ईस्ट कम्युनिटी पार्क इन फ्रिस्को। Once again, that is North East Community Park in Frisco by AWGP, that is All World Gayatri Parivar. उसी के साथ बिल्कुल बहुत सारे और भी मंदिर में, जैसे कि मैंने कहा कि दिस सेलिब्रेशन इज गोइंग ऑन, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। एंड एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, भगवत गीता परीक्षा कंपटीशन, दिस इज हैपनिंग एट DFW हिंदू टेंपल सोसाइटी अलॉन्ग विथ हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका की ये प्रयास में है भगवत गीता परीक्षा एंड इट्स अ वेरी यूनिक कंसेप्ट, इट्स अ कंपटीशन अबाउट भगवत गीता।

यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका के ये प्रयास में है भगवद गीता परीक्षा एंड इट्स अ वेरी यूनिक कंसेप्ट. इट्स अ कंपटीशन अबाउट भगवद गीता. Happening on July 26th, 10 a.m. till 4 p.m. in DFW Hindu Temple. Once again, happening July 26th, 10 a.m. till 4 p.m. Shri Guru Bhagwat Ji, bilkul Shri Guru Bhagwat, and this is happening by Shri Divine, Sai Divine Foundation. And ye ho rahi hai baat, is celebrating 25 years of Shri Guru Bhagwat. August 8th, Unity of Dallas. Once again, that is Shri Guru Bhagwat, August 8th, Unity of Dallas. कपिल गंगा, बहुत ही अच्छी बात हो रही है कपिल केशवनाथ धाम हवेली में, एंड दैट इज गंगा दशहरा सेलिब्रेशन हैपनिंग ऑन 28th ऑफ जून. एकल विद्यालय फाउंडेशन एनुअल इवेंट, दैट इज एनुअल फंडरेजिंग इवेंट, कथक ऑन द सिल्वर स्क्रीन एंड हैपनिंग ऑन ऑगस्ट 28th, ग्रैनविल सेंटर गार्लैंड में, एंड वंस अगेन दिस इज बाय एकल विद्यालय फाउंडेशन अ फंडरेजिंग इवेंट. Matrimonial event by DFW Gujarati Samaj, and of course this is happening in August as well, August 8th, and it is Spring Hill Banquet. ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम की जानकारी आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको देते रहेंगे on 104.9 FM Fun Asia Radio.

कम्युनिटी राउंड अप, जी हाँ, यह है इस कार्यक्रम का नाम, जहाँ पर हम कम्युनिटी की बहुत सारी बातें करते हैं। एंड एज आई सेड, इट्स अ वेरी वेरी हम्बल अटेम्प्ट, बहुत एक नम्र प्रयास है आप सभी की मदद करने के लिए, जितने भी हमारी धार्मिक संस्था है, सामाजिक संस्था है, टू प्रोवाइड अ फ्री प्लेटफॉर्म फॉर एंटायर कम्युनिटी, चाहे आप जहाँ पर से भी है, साउथ एशियन कम्युनिटी है या इवन अ मेन स्ट्रीम कम्युनिटी, क्योंकि ये है आपका कार्यक्रम, आप ही से बनता है ये कार्यक्रम। टुमारो इज़ ऑफकोर्स द इंटरनेशनल योगा डे, एज वेल एज फादर्स डे, वर्ल्ड म्यूजिक डे, तो बहुत सारी आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ हो फादर्स डे की। योगा डे की भी हम कुछ बातें करेंगे ड्यूरिंग माई टुमारो शो, एज वेल एज फादर्स डे की भी मैं करूँगी बातें, लेकिन चूंकि आज की ये जो बातें होती है, प्रस्तुति होती है कम्युनिटी राउंड अप की, दैट इज़ ओनली ऑन सैटरडेज, तो एक बार हमारी पूरी कम्युनिटी को मैं बिल्कुल बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहूँगी एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी फादर्स डे, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि हमारी कम्युनिटी चाहे छोटी हो या बड़ी, बहुत सारी ऐसी बातें होती है जहाँ हम सब साथ में मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, एंड दैट इज़ द स्पिरिट ऑफ ट्रू कम्युनिटी। ऐसी बहुत सारी बातों के साथ मैं हूँ नीलम, आपके लिए कार्यक्रम प्रस्तुत करती हूँ, और एक बार फिर से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आप सभी का, क्योंकि आप ही से बनता है ये कार्यक्रम जिसका नाम है कम्युनिटी राउंड अप विद मी और होस्ट नीलम दवे। तो बस सुनते रहिए आपका और हमारा फनेशिया रेडियो।

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
4: कौन सा?
3: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
4: अरे सारे तो सेम है।
3: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
4: ओ हाँ, ये तो अलग है।
5: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
6: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां मां सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी। और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेम्पल इन फ्रिस्को।
7: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
6: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग। ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो। श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी।
8: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
9: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
10: सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी। टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डॉलर्स, बिकॉज फन पिज्जा किचन जस्ट ड्रॉप्ड अ बोल्ड न्यू मेक्सिकन इंस्पायर्ड मेन्यू। And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
11: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
12: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
11: नहीं।
12: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
11: नहीं।
12: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
11: वो भी नहीं।
12: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
5: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG FinTax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG FinTax लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी।

उबुंटू चाले तेलुगु गाने से आज के सेगमेंट का हमने किया आगाज. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर. खास तौर पर ऑन सैटरडे आफ्टरनून्स बिटवीन 3:30 एंड 5 जब हम आपके लिए लेकर आते हैं बोली प्यार की. लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात. आई विल बी विद यू टिल 6 PM. इट इज 37 minutes past 3 on this 20th of June 2026. It's a smashing Saturday afternoon. I hope you guys are doing well wherever it is that you are. 86 degrees Fahrenheit is the current temperature and it is cloudy. Today's high 87, yani ki bahut zyada garmi to nahi hogi, lekin kuch naram garam sa rahega aaj ka mausam. Today's low was 72 and yes, it did rain quite a bit yesterday, but you know what? Nothing to worry about today. Our phone lines are open for your request and dedication for regional language songs. Kyunki is segment mein hum Urdu, Hindi ya English ke gaane nahi, balki South Asian regional languages ke gaane kar rahe hain play. So call us and we'll play your song. Pehla gaana Telugu aur ab Arabic.

0: मैं जाने क्यों मुझे लग रहा है कि शायद ये वो ओरिजिनल गाना है जहां से इंस्पायर होके हसन जहांगीर ने अपना गाना बनाया था और बाद में वही गाना फिल्म मुबारका में रीमेक किया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। फनीशा रेडियो, यू आर ऑन द एयर। आपका नाम?
1: हेलो।
0: हेलो जी, आप ऑन एयर हैं। आपका नाम?
1: रुचिका।
0: जी रुचिका, बोलिए।
1: मारवाड़ी सॉन्ग।
0: खम्मा गनी। All right, I'm gonna find that for you. अच्छा ये बताइए कहाँ से कॉल कर रही हैं आप?
1: अर्विंग
0: से। ओके, सो देर आर टू खम्मा गनी करके दो गाने हैं, एक कुछ मॉडर्न रैप है और एक ट्रेडिशनल है, आंचल भट्ट का गाया हुआ ट्रेडिशनल वन, राइट? ओके, सो खम्मा गनी इट्स लाइक टू, इट्स एज ओरिजिनल, बट आई एम अस्यूमिंग ये वाला चाहिए आपको। कहाँ से कॉल कर रही हैं आप हमें रुचिका?
1: अर्विंग।
0: ओके, थैंक यू फॉर योर कॉल। ये रहा आपका गाना।

0: रुचिक्चा जी की फरमाइश पर सुन रहे थे आंचल भट्ट की आवाज में हम ये मारवाड़ी / राजस्थानी सॉन्ग। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू बोली प्यार की। ये हमारा वीकली सेगमेंट है जिसमें कि हम आपको सुनवाते हैं नॉन उर्दू हिंदी इंग्लिश गाने, यानी कि साउथ एशियन रीजनल सॉन्ग्स प्ले किए जाते हैं By request. All you have to do is call us 972-235-5555. Phanisha Radio par aap on air hai, aapka naam? Hello? Hello? Ji, aap on air hai, aapka naam?
1: Neeta.
0: Ji, Neeta, boliye. Kaun si language ka gana request karengi?
1: Gujarati.
0: All right, kya naam hai aapke gane ka?
1: Gotilo.
0: गोतीलो, ऑलराइट, सभी का फेवरेट, हम जरूर प्ले करेंगे। कहाँ से कॉल कर रही हैं आप हमें?
1: लुकस टेक्सस से।
0: लुकस टेक्सस, ऑलराइट, वेल थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू दिल से एंड ऑफ कोर्स एंजॉयिंग बोली प्यार की। हियर इज योर सॉन्ग, एंजॉय।

0: गोतीलो सुन रहे थे कोक स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ हुआ ये गाना खलासी आल्सो नोन एज गोतीलो रिक्वेस्टेड बाय मीता जी. इट्स 49 मिनट्स पास्ट 3. लेट्स सी हमारे नेक्स्ट कॉलर को सुनना है कौन सा गाना. फनीशा रेडियो आप ऑन एयर है. आपका नाम?
1: मेरा नाम जिया. मैं बंगाली लैंग्वेज से एक गाना सुनता
0: हूं. ओके कौन सा गाना?
1: गाना होगा इट इज बाय नजरुल इस्लाम कवि कारारोई लोहो कपट बाय नोबल.
0: ओके सो द नेम ऑफ द सिंगर इज नोबल.
1: नोबल या
0: ओके एंड गाने का नाम फिर से बताइए. कार क्या था?
1: नहीं कारारोई लोहो कपट.
0: कारारोई
1: लोहो कपट.
0: ओके लेट मी सी
1: दिस फेमस सॉन्ग. दिस This was against the Gorahana English ka against the English.
0: Okay. Got it. Ami pechi apnar gaan.
1: We got liberty to sing from.
0: Ami apnar gaan ta pechi aur lagachi. Thank you for your call.
1: Of course, very good. I like your show.
0: Thank you so much.

राइट, सुन रहे थे हम ये बांग्ला सॉन्ग. आई एम श्योर यू गाइस एंजॉयड इट. दिस इज बोली प्यार की, जिसमें हम आपको सुनवाते हैं आपकी रिक्वेस्ट फॉर रीजनल लैंग्वेजेस का कोई भी गाना, अब वो चाहे तेलुगु हो, मलयालम हो, मराठी हो या हो भोजपुरी, सिंधी हो, बांग्ला हो या हो नेपाली. वी'd बी हैप्पी टू प्ले इट फॉर यू. एंड दिस पार्ट ऑफ बोली प्यार की इज ब्रॉट टू यू बाय अटर्नी उमर ख्वाजा. वैसे तो हम नहीं चाहेंगे कि आपके साथ कोई भी हादसा हो, but God forbid something happens like an accident or a slip and fall, well, you need to make sure that you have attorney Umar Khwaja's number handy and you call him right away, because he knows how to deal with all of these insurance companies and he will make sure that you get the compensation you deserve. 469-300-5046 hai unka number. You can always visit attorneyumar.com and don't worry about the fees. They're not going to charge you anything until you win, and that's when they

0: get paid. So remember that. That is attorney Omar Khwaja. Funisha Radio, आप on air है. आपका नाम?
1: My name Aisha.
0: जी आयशा बोलिए, कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगी?
1: पंजाबी का.
0: पंजाबी गाना, क्या नाम है आपके गाने का?
1: गाना तो याद नहीं आ रहा, मैं बाहर से आई हूँ गर्मी में.
0: अच्छा, तो कोई भी अच्छा सा पंजाबी गाना प्ले कर दूं मैं?
1: हाँ, वो पीछे पीछे अंदर मेरी चाल दिंदाई मेरा लोंगवा चा एंड.
0: अच्छा, ओके, श्योर, नो प्रॉब्लम. सो वो ओरिजिनल जो मुसर्रत नजीर ने गाया था, वो वाला?
1: वो वाला या कोई और प्यारा सा अच्छा सा?
0: अच्छा ठीक है. नहीं
1: अभी बाहर से आई, बहुत गर्मी थी.
0: ओके ओके ठीक है. तो आपको वैसे, मुझे पर्सनली तो सतेंद्र सरताज पसंद है, लेकिन आपको लॉन्ग गवाचा चाहिए तो हम फिर वही प्ले करेंगे. ठीक है,
1: वो प्ले कर दें, ऐसे जो भी आपको अच्छा सा मिल जाए.
0: थैंक यू फॉर योर कॉल आयशा जी. हियर इज योर सॉन्ग. एंड वाकई इसमें तो कोई शक नहीं, बड़ी गर्मी है.

सुकून मिल गया, सिंधी गाना सुनवाया हमने आपको, पार्ट ऑफ द सेगमेंट बोली प्यार की। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इनटू 104.9 FM। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात। वो बी टुगेदर टिल 6 PM। फिलवक्त स्टूडियो की घड़ी में 4:07 हुए हैं और आप सुन रहे हैं दिल से प्रोग्राम का स्पेशल सैटरडे वाला सेगमेंट बोली प्यार की, जिसमें हम आपको उर्दू, इंग्लिश और हिंदी के गाने नहीं बल्कि तमाम रीजनल लैंग्वेजेस के गाने सुनवाते हैं, वो भी आपकी रिक्वेस्ट पर। ऑल यू हैव टू डू इज कॉल अस एट 972-235-5555। बस एक बात का ख्याल रखना है कि हर लैंग्वेज के हम सिर्फ दो ही गाने प्ले कर पाते हैं, बिकॉज वी वॉन्ट मेक श्योर दैट एवरीबडी गेट्स टू हियर अ सॉन्ग इन देयर नेटिव लैंग्वेज। सो फार हमने आपको सुनवाया गाना तेलुगु में, अरबिक का गाना भी सुना, फारसी का गाना भी, मारवाड़ी, बांग्ला, गुजराती, पंजाबी और ये था सिंधी। और अब मैं एक अपना फेवरेट मराठी गाना आपको सुनवाना चाहूँगी। मीनवाइल अगर आपके मन में भी कोई गाना आता है जो आप सुनना चाहते हैं, विच इज़ इन योर रीजनल लैंग्वेज, feel free to call us 972-235-5555.

0: वाज अप्सरा आली। सुन रहे थे नतरंग, फिल्म से लिया गया ये मराठी सॉन्ग। होप यू गाइस एंजॉयड इट। वेल आई नो इट्स पास्ट लंच टाइम, बट यू नो देयर इज स्टिल टाइम फॉर डिनर, सो हेड टू पेज 3 ईटरी। यू आर गोना फाइंड समथिंग वेरी यूनिक एट दिस रेस्टोरेंट। आपको मिलेगा बोल्ड इंडियन स्ट्रीट फूड, लेकिन एक मॉडर्न ट्विस्ट की साथ। अब चाहे वो कबाब हो, चाट हो, फ्यूजन बाइट्स हो या हो मॉकटेल्स, यू आर बाउंड टू एंजॉय द एक्सपीरियंस। सो फैमिली के साथ जाना चाहते हैं, डेट पे जाना चाहते हैं, हाउएवर वे यू वांट टू एंजॉय योर इवनिंग, हेड टू पेज 3 ईटरी। यू कैन विजिट page3eatery.com। जस्ट सो यू नो, इट्स राइट हियर क्लोज टू लाइक बिटवीन एलन एंड मिकिनी एट हब 121. All right, let's move on to our next caller. Phanisha Radio, please radio ka volume kam kar dijiye so I can hear you. Hello.
1: Hello.
0: Thank you so much for turning down the radio. Kya naam hai aapka?
1: Mera naam hai Rudro.
0: Ji Rudro, boliye kaun si language ka gana request karenge?
1: Aapke koi Nepali song sar sakte hain?
0: Sure, boliye kya naam hai aapke Nepali song ka?
1: माया को डोली चढ़ाई।
0: माया को क्या?
1: डोली चढ़ाई।
0: माया को डोली। ऑलराइट, लेट्स सी इफ आई कैन फाइंड दैट सॉन्ग फॉर यू। और आपका नाम आपने क्या बताया?
1: रुद्रो।
0: रुद्रो, और रुद्रो कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप?
1: हम लोग अमरीलो जा रहे हैं, हम अभी डलस में हैं।
0: ओह हाउ नाइस, वेल आई होप यू गाइस हैव अ ग्रेट ट्रिप। ओके, ड्राइव सेफली एंड हियर इज योर नेपाली सॉन्ग, एंजॉय।

माया को डोली चढ़ाई सुन रहे थे आप ये नेपाली सॉन्ग ऑन 104.9 FM. आई एम योर होस्ट अमरीन हसनात एंड टिल 5 PM वी बी प्लेइंग योर रिक्वेस्ट फॉर रीजनल सॉन्ग्स. 9722355555 है हमारे स्टूडियो का नंबर. अब हो जाए एक तमिल सॉन्ग.

आई एम श्योर सभी हिंदी बोलने वाले इस गाने को पहचान गए होंगे. दिस इज जिया जली जान जले फ्रॉम द फिल्म दिल से, एंड ऑफ कोर्स दिस इज द तमिल वर्जन ऑफ द सेम सॉन्ग. होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड एंजॉयिंग आवर म्यूजिक सिलेक्शन टुडे. जैसे कि हमने बताया, इस सेगमेंट में हम उर्दू, हिंदी और इंग्लिश के गाने नहीं प्ले करते, लेकिन इसके अलावा आप किसी भी रीजनल गाने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं. 9722355555. What I enjoy about this segment is कि मुझे ना तरह तरह के गाने सुनने को मिलते हैं. Songs that I may have never played or would have heard unless I was hosting बोली प्यार की. जैसे कि ये गाना, इसके बारे में मुझे नहीं पता था, पर किसी ने एक बार इस हरियाणवी गाने की फरमाइश की तो सुनने को मिला और बड़ा मजा आया सुनकर. तो क्यों ना हम दोबारा सुने ये गाना. Enjoy.

0: मुंगारू मलिए सुन रहे थे आप ये कनाडा सॉन्ग ऑन दिल से। पेश किया जा रहा है आपके लिए सेगमेंट बोली प्यार की, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं रीजनल सॉन्ग्स बाय रिक्वेस्ट। बस ख्याल रखिए कि इस सेगमेंट में तकरीबन 5 से 10 मिनट का होल टाइम होता है। फनीशा रेडियो आप ऑन एयर हैं, आपका नाम? हेलो,
1: हाउ आर यू?
0: आई एम गुड, हु इज दिस?
1: This is Rahul.
0: Yes, Rahul. Which language song did you want to request today?
1: Tamil.
0: Tamil song. All right. This is going to be the second Tamil song today. Go ahead. What's the name of the song?
1: Asa Kuda.
0: Asha?
1: Asa Kuda.
0: Asa Kuda. Okay. And, okay. Let me find it and play it for
1: Think,
0: you.
1: It's from Think Indie.
0: All right. And where are you calling us from?
1: Mesquite.
0: All right. Thank you so much. Here is your song. Enjoy. I hope I'm playing the right song. Wo kehne ki meri Tamil itni achhi nahi hai.

0: All right, that was a Tamil song titled Asa Kura. I hope you guys enjoyed it. Well, हमारी enjoyment, हमारी entertainment continue रखेंगे हम commercial break के बाद. So don't go anywhere. We have another 30 minutes of बोली प्यार की और उसके बाद हम खेलेंगे रेडियो अंताक्षरी जिसमें हम गानों को connect करते हैं words के साथ.
1: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial plan, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
2: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
3: शुभ दिन आ पहुंचा है, एक ऐसा अवसर जहां 60 वर्षों की परंपरा, बेमिसाल कारीगरी और पीढ़ियों के विश्वास का संगम आ रहा है आपके शहर फ्रिस्को में. PMJ Jewels.
4: Be a part of this grand opening celebration from 20th June Saturday onwards and get exclusive offers, exciting celebrations and opportunities to win beautiful jewelry pieces. PMJ Jewels. Tradition crafted, style defined.
5: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balvihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
6: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
7: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
6: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन. द फ्लेवर लाउंज.
7: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट.
8: बेटा 95% आए?
9: हाँ मम्मी.
8: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
10: मेरा?
8: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
10: वो
11: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. एजी फिनटैक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड CFO सर्विसेज. विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. एजी फिनटैक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी.
12: अपनी रूट्स भी और टेक्सास का स्वैग भी, दोनों एक साथ एक ही जगह HEB में. रॉयल सोना मसूरी राइस हो, नानक पनीर हो या पार्ले जी बिस्किट्स, वही देसी टेस्ट जो दिल को घर जैसा फील दे. और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो सिर्फ यही मिलते हैं. एक ही ट्रिप, एक ही स्टोर और सारा सामान डन. तो आज ही जाइए अपने नियरेस्ट HEB पर और ले जाइए अपने ट्रेडिशनल और टेक्सन फेवरेट्स एक साथ. HEB, हियर एवरीथिंग्स बेटर.
13: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान. myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338. 4697343338. myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
14: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand up, play an instrument, or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at desigottalentus.com. Grand finale in Dallas. fearless because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.
0: खुश आमदीद कहती हूँ एक बार फिर तमाम सुनने वालों को. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फनीशा रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर. मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात. आपका हमारा साथ रहेगा शाम के 6 बजे तक. फिलबैक स्टूडियो की घड़ी में इट इज 4:34. टुडे इज द 20th of June 2026 एंड आई एम सो ग्लैड दैट यू आर स्पेंडिंग योर सैटरडे विथ मी. आज दिल से प्रोग्राम में सेगमेंट पेश किया जा रहा है बोली प्यार की, जिसमें हम उर्दू, इंग्लिश, हिंदी के गाने नहीं प्ले करते, बल्कि प्ले करते हैं आपके फेवरेट रीजनल लैंग्वेज के गाने. ऑल यू हैव टू डू इज कॉल अस विथ योर रिक्वेस्ट 9722355555. रीकैप करती चलूं कि सो फार आज के सेगमेंट में हमने 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस के गाने प्ले किए हैं, बिलीव इट और नॉट. तेलुगु, अरेबिक, फारसी, मारवाड़ी, बांग्ला, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, मराठी, नेपाली, हरियाणवी एंड कनाडा एंड द 13th लैंग्वेज तमिल. इसके एक्चुअली हम 2 गाने प्ले कर चुके हैं. व्हाट दैट, आप ऑन एयर हैं. थैंक यू फॉर होल्डिंग. क्या नाम है आपका?
9: माय नेम इज पला एंड अमरीन, गुड टू हियर यू बैक अगेन.
0: थैंक यू सो मच. थैंक यू. एंड व्हिच लैंग्वेज सॉन्ग डिड यू वांट टू रिक्वेस्ट?
9: It's from Assam, Assamese song.
0: Okay.
9: And it's Zubin Garg's song. It's called Tumi Tua Jetia.
0: Tumi? Did you start with a T?
9: Yes, T-U-M-I, Tumi.
0: Uh-huh.
9: Tua Jetia, S-U-W-A.
0: Okay.
9: And Jetia is J-E-T-I-Y-A.
0: Got it. Found it. Thank you so much for your call. And aap hame kahan se call kar rahi hain?
9: Plano
0: se. All right. Thank you so much. Here is your Assamese song. Enjoy.

0: सुआ जेथिया, सुन रहे थे आप ये असमीज सॉन्ग. होप यू गाइस एंजॉयड इट. आइए चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ. अगेन आई वांट टू मेंशन देयर इज अ 5 to 10 minute होल्ड टाइम ड्यूरिंग दिस सेगमेंट, जो कि 5 बजे खत्म हो जाएगा. लेट्स सी हुज आवर नेक्स्ट कॉलर. फनीशा रेडियो, आप ऑन एयर है, आपका नाम? हेलो फनीशा रेडियो जी, आप ऑन एयर है, आपका नाम? हेलो प्लीज स्पीक अप. हेलो, आप ऑन एयर हैं, आपका नाम? जी आपका नाम?
1: माय नेम इज आसिफ.
0: जी आसिफ, बोलिए कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगे?
1: बंगाली.
0: ऑलराइट, क्या नाम है आपके गाने का?
1: नेम ऑफ द सॉन्ग इज चिलते रोदे, इसे कोक स्टूडियो बांग्ला फ्यूजन.
0: ओके, लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड इट. व्हाट वाज द फर्स्ट वर्ड?
1: चिलते रोदे.
0: Chilte Rode. Okay.
1: Yeah.
0: Let's see if I can find that for you. Aur aap hame kahan se call kar rahe hain?
1: From Plano.
0: From Plano. All right. Thank you so much for your call. I think I found your song. Here is your Bangla request. And this is our second Bangla song today. So that's it, I guess. No more requests in Bangla.

0: सुन रहे थे आप ये सेकेंड बांग्ला सॉन्ग टाइटल्ड चलती रोड। सो हर लैंग्वेज का जैसे कि हमने बताया सिर्फ दो ही गाने प्ले कर पा रहे हैं। लेट्स सी हमारा नेक्स्ट गाना कौन सी लैंग्वेज में होगा। फनीशा रेडियो आप ऑन एयर है। देयर इज अ लॉट ऑफ आउटसाइड नॉइज। यस प्लीज टेक मी ऑफ ब्लूटूथ। आप ऑन एयर है, आपका नाम? हेलो
1: हेलो
0: जी, आप ऑन एयर हैं, आपका नाम?
1: यूसुफ।
0: यूसुफ कौन सी लैंग्वेज का गाना सुनना है?
1: पंजाबी।
0: पंजाबी, व्हाट्स द नेम ऑफ योर सॉन्ग?
1: बोर्न टू शाइन।
0: Born to Shine. Okay, now that sounds English to me, but I know which song you're talking about. So we'll go ahead and play that for you, Yusuf. And where are you calling us from?
1: Plano.
0: All right, thank you for your call. And here is your Punjabi song. Now, this happens to be our second Punjabi song today.

0: was Diljit Dosanjh with Born to Shine. It's 46 minutes past 4. Yani ke hamare is boli pyar ki segment ko khatm hone mein sirf 14 minute baki rehte hain. But all of my lines are on hold right now. So we're not taking any more calls or any more requests. If you're already on hold, ya to aapko music ki awaaz aa rahi hogi ya meri awaaz aa rahi hogi ya gaana sunai de raha hoga. Either way, if you're in queue, आपकी बारी आने के चांसेस ज्यादा हैं. सो स्टे ऑन द लाइन. फनीशा रेडियो, आप ऑन एयर हैं. आपका नाम?
1: हेलो
0: जी, आप ऑन एयर हैं. आपका नाम?
1: मेरा नाम अनामिका है.
0: जी अनामिका, बोलिए कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगी?
1: नेपाली सॉन्ग रेशम पीरीरी.
0: ओके, नेपाली सॉन्ग का क्या नाम बताया आपने?
1: रेशम पीरीरी.
0: रेशम फिरीरी. ओके, इसका क्या मतलब होता है?
1: इट्स समथिंग टू डू विद द नेचर एंड म्यूजिक.
0: ओके ठीक है. ऑलराइट, आई विल प्ले दैट फॉर यू. दिस इज आवर सेकंड नेपाली सॉन्ग टुडे. एंजॉय.

0: अनामिका जी की फरमाइश पर सुन रहे थे हम ये सेकंड नेपाली सॉन्ग रेशम फिरेरी। मैं काउंट और फ्रीक्वेंसी इसलिए बताती हूँ बिकॉज वी कैन ओनली प्ले टू सॉन्ग्स पर लैंग्वेज। सो मैं पहले से ही बता दूं कि कौन सी लैंग्वेजेस की लिमिट हो चुकी है। नो मोर तमिल, नेपाली, पंजाबी और बांग्ला सॉन्ग्स, बिकॉज इन चारों लैंग्वेजेस के गाने हम दो दो बार प्ले कर चुके हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट कॉलर, फनीशा रेडियो, आप ऑन एयर हैं, आपका नाम?
1: हेलो।
0: हेलो, थैंक यू फॉर होल्डिंग। आप ऑन एयर हैं, आपका नाम?
1: हाय, माय नेम इज बिस्वा।
0: हाय बिस्वा,
1: आई वांट टू रिक्वेस्ट ओडिया सॉन्ग।
0: ओडिया सॉन्ग, ऑलराइट। क्या नाम है आपके गाने का?
1: इट्स To Megha Heja, it's T-U.
0: Okay, I got it.
1: And then,
0: yes, I got it. Okay. I found your song, so I will play it for you. Kahan se call kar rahe hain sir aap hame?
1: Colony.
0: Colony, all right. Thank you so much. It's nice

0: found your song, so I will play it for you. कहाँ से कॉल कर रहे हैं सर आप
1: ग्रेट
0: हमें?
1: कॉलोनी
0: कॉलोनी. ऑल राइट, थैंक यू सो मच. इट्स नाइस टू यू नो कि हमें कहाँ कहाँ लोग सुन रहे हैं. और इस वक्त इट सीम्स मोस्ट पीपल आर इन प्लेनो, एटलीस्ट ज्यादा कॉल्स तो वहीं से आई. ऑल राइट, चलते हैं अब इस उड़िया सॉन्ग की तरफ.

0: पूड़ियाँ मुझे समझ में तो नहीं आती, लेकिन जो समझ आता है वो है सुर और सुरीली आवाज जो इस गाने में सिंगर्स की थी, स्पेशली द फीमेल वोकलिस्ट, अमेजिंग वॉइस. थैंक यू सो मच फॉर रिक्वेस्टिंग दिस सॉन्ग. आइए अब चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ. फनीशा रेडियो, आप ऑन एयर हैं, जल्दी से बताइए आपका नाम. हेलो, जल्दी से बताइए आपका नाम.
1: हेलो
0: जी, आप ऑन एयर हैं. यस आई कैन, आपका नाम बताइए सर.
1: गुड आफ्टरनून मैम, माय नेम इज गणेश.
0: ओके, आपको कौन सी लैंग्वेज का गाना सुनना है?
1: ओडिया लैंग्वेज मैम.
0: उड़िया लैंग्वेज का क्या नाम है गाने का?
1: ओडिशा मोडिशा. कैन यू फाइंड दैट वन?
0: फर्स्ट वर्ड क्या था गाने का?
1: ओडिशा, ओडिशा मो ओडिशा.
0: ओडिशा यानी कि वही जो जगह का नाम है, राइट?
1: या ओडिशा इज माय लैंग्वेज नेम. या
0: राइट, ओके.
1: ओडिशा मो ओडिशा.
0: ओके, let me see if I can find that for you. So that will be our second Oriya song, and here it is. Thank you so much for your call. Kahan se call kar rahe hain aap hame?
1: Main Mehkini se.
0: All right, thank you.

मैनू इश्क दा लग्या है रोग, मेरे बचने दी नहीं ओ उम्मीद। फिल्म दिल है के मानता से लिया गया था ये गाना, जो सुन रहे थे आप, ये पूजा भट्ट और आमिर खान पर पिक्चराइज किया गया था। रेडियो अंताक्षरी में हमारा पहला गाना ताल फिल्म से था, जिसमें सबसे मीठा इश्क इश्क वर्ड को हमने लिया और इस गाने की तरफ लेकर गए। एंड यू माइट हैव नोटिस्ड कि जो पहला गाना था वो ज़रा स्लो था और हमारा ये गाना मीडियम बीट पे था, और अब हम बीट को थोड़ा सा तेज करने वाले हैं।

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
1: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे,
2: तारीख पर तारीख।
3: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
1: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
4: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
5: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
4: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
5: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
6: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame, and clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens, and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings, and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
7: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली। कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
8: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
7: कहाँ?
9: फूडिस्तान इन ऑबरी। फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइब, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
8: फूडिस्तान इन ऑबरी, एवरीथिंग देसी, वन प्लेस, वन वाइब।
10: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
11: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
12: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
13: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
12: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
14: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहाँ माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं प्रेम और सेवा परोसती थी। और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेंपल इन फ्रिस्को।
15: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
14: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग। ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो। श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी।
16: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
17: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
16: नहीं।
17: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
16: नहीं।
17: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
16: वो भी नहीं।
17: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
18: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए, बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG FinTax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी।
3: AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.

What a beautiful song. अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में सुन रहे थे आप ये गाना फ्रॉम द फिल्म दिल दे चुके सनम. खुशामदीद कहती हूँ, वेलकम कहती हूँ तमाम सुनने वालों को. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फनीशा रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर. मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात. इट्स 37 मिनट्स पास्ट 5, यानी कि मेरे जाने में अब बस 20 मिनट ही बाकी रह गए हैं. और इस वक्त आप सुन रहे हैं सेगमेंट रेडियो अंताक्षरी, जिसमें हर गाना दूसरे गाने के साथ कनेक्ट होता है, यूजुअली विद द वर्ड इज वेल एज टेम्पो. अब टेम्पो से मुराद मेरी ये है कि स्पीड ऑफ द सॉन्ग, जैसे अगर एक गाना स्लो है तो अगला गाना या उतना ही स्लो होगा या उससे थोड़ा स्लो या उससे थोड़ा फास्ट. सो इट विल नॉट बी गोइंग फ्रॉम सुपर स्लो टू सुपर फास्ट और फ्रॉम सुपर फास्ट टू सुपर स्लो, यानी कि आपस में उनका रिदम बीट्स मैच करती हैं. जो गाना इससे पहले हमने प्ले किया था दैट वाज दिल तू ही बता, सो वहाँ से हमने पकड़ लिया वर्ड. आई थिंक देर वाज समथिंग टू डू विद छुपा, राइट? दिल कहाँ है छुपा, राइट? सो छुपा वर्ड लेकर हमने चांद छुपा बादल में गाना आपको सुनवाया. एंड नाउ वी आर कनेक्टिंग इट टू दिस नेक्स्ट ट्रैक.

सिफारिश में आखिरी जो कोरस का वर्ड था सुभान अल्लाह, वी कनेक्टेड इट टू दिस ट्रैक फ्रॉम द फिल्म ये जवानी है दीवानी, और पहली दफा हुआ. सो लेकर चलते हैं इस अगले गाने की तरफ, सिमिलर टेम्पो.

आतिफ असलम की आवाज में सुन रहे थे आप ये गाना टेकन फ्रॉम द फिल्म रेस. यू नो आई एंजॉय रेडियो अंताक्षरी बिकॉज देयर इज सच अ वंडरफुल वैरायटी ऑफ सॉन्ग्स दैट यू गेट टू हियर. और मेरी कोशिश होती है कि सारे गाने हिट सॉन्ग्स हों ताकि आपको सुनकर मजा, बेशक थोड़े पुराने हो, बट दैट्स स्टिल ओके. 47 मिनट्स पास्ट 5, यू आर लिसनिंग टू दिल से ऑन 104.9 FM और सुन रहे हैं आप रेडियो अंताक्षरी, जिसमें हम हर गाने को अगले गाने के साथ कर रहे हैं कनेक्ट. इससे पहले कि अगले गाने की तरफ बढ़े, जस्ट वांटेड टू गिव यू एन अपडेट ऑन वेदर. मकिनी में जोरदार बारिश हो रही है, हाई ऑफ 87. वेल दैट्स अ करंट टेम्परेचर राइट नाउ. टुडेज हाई वाज 89 एंड आई एम अस्यूमिंग दैट दिस रेन इज गोना ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर्स टू 70s आई गेस, बट यू नो व्हाट, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट ईदर. पहली नजर, अब क्या ख्याल है, नजर की तरफ बढ़े.

उदित नारायण और अलका, आई थिंक सपना मुखर्जी की आवाज में सुन रहे थे आप ये गाना, टेकन फ्रॉम द फिल्म फिदा. आई होप यू एंजॉयड इट. 51 minutes past 5. बिफोर आई गो ऑन, आई वांटेड टू लेट यू नो दैट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इज करंटली ग्रोइंग, सो दे आर हायरिंग एंड दे आर लुकिंग फॉर एक्सपीरियंस्ड प्राइमरी केयर डॉक्टर्स, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियंस एंड साइकियाट्रिस्ट फॉर फुल एंड पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज. नाउ इफ यू passionate about patient care, this is the right place for you. Send your resume to passionhealthphysicians@gmail.com. You can also visit the website, which is passionhealthphysicians.com. There's also a number you can call to get more information, 214-666-6259. They say, I'm sure you know about Passion Health Primary Care, right? Well, this is that one healthcare clinic where it's all about you. Sirf 5 minute mein aapki appointment ko nahi nimtate, balki baqaida aapse baith kar baat karte hain aur aapki situation ko samajhne ki koshish karte hain. Every appointment at Passion Health Primary Care is at least 30 minutes because उनके लिए आप सिर्फ एक पेशेंट नहीं बल्कि फैमिली हैं. दैट्स द मोटो ऑफ पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर.

बज चुका है। सो जाते जाते रेडियो अंताक्षरी का आखिरी गाना आपको सुनवाने जाते हैं एंड आई होप कि ये गाना आपको पसंद आएगा। लाइक आई सेड, इस सेगमेंट की बेहतरीन बात ये है कि यू गेट टू हियर अ वैरायटी ऑफ सॉन्ग्स, आर ऑल डिफरेंट डिफरेंट जॉनरस, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, बट देयर इज ऑलवेज अ कनेक्शन between each song. So aaiye ab chalte hain aakhri gaane ki taraf. This one's taken from the film Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya. Usi ke saath chahungi aapse ijazat. This is Amreen Hasnat signing off for yet another edition of Dil Se. Hogi aapse kal phir mulaqat, same place same time, yani ki right here on 104.9 FM between 3 and 6 p.m.

ढूंढे अखियां जबरिया जोड़ी फिल्म से लिया गया ये गाना सिद्धार्थ मल्होत्रा और परिणीति चोपड़ा पर पिक्चराइज किया गया था। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे जाने का टाइम

वेलकम वेलकम वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन. जी हाँ, आप पास आ जिले जरा. वेल वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर होस्ट आरजे सौमिला. रहूंगा आपके साथ मैं शाम के रात के 9 बजे तक, और करूंगा आपका मनोरंजन राइट हियर ऑन जिले जरा. आपने ट्यून इन किया है ऑन द सिग्नेचर शो कॉल्ड जिले जरा. एवरी सैटरडे नाइट लेके आता हूँ मैं आपके लिए जिले जरा, क्योंकि यार रोज़मर्रा की जिंदगी में धुएं धोखे धक्के तो मिलते हैं आपको और हमको, और इसी में आपकी और हमारी जिंदगी कट भी जाती है. पर अगर आपको काटनी नहीं है जिंदगी, एंड अगर आपको काटनी नहीं है जिंदगी, आपको अगर जीनी है जिंदगी, तो सही स्टेशन पे सही टाइम पे ट्यून इन हुए हो. इसीलिए हमने शो का नाम रखा है जीरे जरा सा. क्यों ना आप और हम इस खूबसूरत सी जिंदगी से दो पल चुरा ले, क्यों ना आप और हम इस शाम को और थोड़ा रंगीन बना ले, क्यों ना आप और हम जीले जरा, राइट right?

चलिए शुरू करते हैं आज का शो. एंड वांटेड टू थैंक अमरीन फॉर दैट ब्यूटीफुल अंताक्षरी शो दैट शी ब्रिंग्स, इंट्रिकेटली वीविंग वन सॉन्ग विद अनदर, कनेक्टिंग वन लिरिक टू द नेक्स्ट वन. एंड बहुत ही बारीकी का काम होता है और बहुत अच्छी तरह से निभाती है अमरीन. वेल थैंक यू लव फॉर दैट लवली शो अमरीन. एंड लाइक आई ऑलवेज से, यू नो व्हाट अमरीन, आई डोंट नो इफ यू नो दिस नॉट, बट आई यूज्ड टू बी रोमिंग अराउंड इन द highways and byways of Frisco listening to you. You used to do an afternoon hour and used to call in a couple of times. I used to wait in line for hours. I mean, you had such long lines. I used to wait in line for hours to for you to take my call. And sometimes we talked on air, sometimes we talked off air. But to life has gone a full circle, I guess. To think about the fact that I'm doing a show right after Amreen is a huge responsibility and बहुत ही उम्दा शो करती है, बहुत मज़ा आता है. सो चलिए आज के शो की शुरुआत दिल लगाने से करते हैं थोड़ी बहुत.

ऋतिक रोशन, ऐश्वर्या राय, वन ऑफ द बेस्ट धूम्स इफ यू आस्क मी. ऑफ कोर्स ओरिजिनल धूम जो आई थी जॉन इब्राहिम के साथ, एंड देन ऑफ कोर्स धूम 3 वाज आमिर खान. धूम 4 की बात बहुत बार छिड़ी है बट फ्लोर पे नहीं पहुंची. स्क्रिप्ट शायद नहीं मिली होगी इनको, बट जी हाँ, धूम. वेल, अभी बात कर रहे थे हम धूम की और दिल की, तो लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन. डू यू बिलीव इन लव? And do you believe in life after love? क्योंकि life without love, उसमें तो believe करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं.

हाँ, बदतमीज दिल तो मानता नहीं है. इनफैक्ट वन ऑफ द टाइम्स इट वाज अगेन दिस वाज अगेन दिस वाज आई वाज ड्राइविंग ऑन द रोड्स ऑफ DFW एंड आई वाज लिसनिंग टू नवनीता एंड शी वाज आस्किंग फॉर ऑडियंस पार्टिसिपेशन अबाउट बदतमीज दिल दिल है कि मानता नहीं. वी हैड लवली टाइम ऑन दैट सेगमेंट. सो चलिए, दिल बदतमीज दिल तो मानेगा कैसे, बट चलिए लेके चलता हूँ आपको अगले गाने की ओर. और उससे पहले बताता हूँ मैं आपको, अगर आपको फाइनेंशियल गाइडेंस की ज़रूरत है, बिकॉज इन टर्बुलेंट टाइम्स, इनफैक्ट वी जस्ट फ्रेशली मिंटेड द फर्स्ट ट्रिलियनेयर लास्ट वीक. कैन यू बिलीव दैट, फर्स्ट ट्रिलियनेयर. एंड इफ द मार्केट्स रिगर्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स इज गॉटन योर स्टमक इन नॉट्स, वेल डोंट वरी, माई टाइम एक्विटी विच इज लेड बाय CPS सुधीर पाई, विच हु ऑफर्स पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल एस्टेट एंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स. Do visit their website, which is mytimeequity.com, to get more information, or you can call their office during office hours, 469-702-1272, 469-702-1272. It's important to get the right guidance, and if you are not trained in the world of finance, and of course, who is in the world of finance right now, what was right last year is not as right now, and what will be right tomorrow, we don't know where it's going to go. But if you need some expert guidance, My Time Equity is here, which is led by CPA Sudhir Pai. और ये मैं दावा नहीं कर रहा कि कोई ताजमहल है मेरा, बस नाम की कोई चंद दीवारें हैं, बस इन्हीं को मैं घर कहता रहा. और मेरे इस घर को सजाने के लिए बस यही है एक धुन. वर्ल्ड म्यूजिक डे इज कमिंग अप, बात करेंगे वर्ल्ड म्यूजिक डे के बारे में. और वर्ल्ड म्यूजिक डे धुन तो बनता ही है यार, बनता है ना, धूम बजा लिया, अभी धुन बजाते हैं.

जी हाँ, है यही एक धुन टेकन फ्रॉम द मूवी सैयारा, ऑफ कोर्स 2025 की ब्लॉकबस्टर हिट केम मेड हियर एंड क्लीन द क्लॉक बिफोर धुरंधर टुक ओवर फ्रॉम देयर. उससे पहले आई थी छावा. सो दीज वर द थ्री टॉप हिट मूवीज ऑफ 2026 एंड ब्यूटिफुल म्यूजिक दैट सैयारा हैज़ लेफ्ट अस विद. एंड आई लव द सॉन्ग धुन. इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स फ्रॉम द मूवी सैयारा. बता रहा था मैं आपको वर्ल्ड म्यूजिक डे के बारे में. वर्ल्ड म्यूजिक ऐसी चीज़ है जो राइट म्यूजिक होती है ना, वो इट क्रॉसेज अ गुड म्यूजिक ट्रांसेंड्स ऑल कल्चर्स, बाउंड्रीज, कंट्रीज, ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स. एंड नो मैटर, यू माइट नॉट अंडरस्टैंड द वर्ड्स, बट यू विल गेट द स्पिरिट ऑफ व्हाट द म्यूजिक इज डिलीवरिंग. एंड ऐसे ही एक एवरग्रीन सॉन्ग की तरफ लेके चलता हूँ, जो आई थी ऑलमोस्ट तकरीबन, आई रिमेंबर आई सॉ दिस मूवी व्हेन आई वाज इन ग्रेजुएट स्कूल. आई वेंट टू ग्रेजुएट स्कूल इन ब्रिस्बेन और माधुरी वॉज टॉप रेनिंग क्वीन दैट टाइम. एंड अनिल कपूर वॉज तेजाब के बाद अनिल कपूर और माधुरी की जोड़ी, क्या बात है, राइट. देन संजय कपूर वॉज अबाउट टू लॉन्च एंड मूवी आई थी राजा. राजा में बहुत अच्छे गाने थे. वेल, बॉलीवुड में इनकी ज़्यादा बनी नहीं रहे संजय कपूर की, बट राजा जो मूवी थी, वी वेंट एंड वॉच दैट मूवी ऑन फर्स्ट वीक. आई थिंक फर्स्ट डे तो शायद नहीं हो सकता था, प्रॉब्ली कॉलेज क्लासेस वगैरह जो भी होते हैं, बट क्या सॉन्ग्स थे मूवी में. लेकिन चलता हूँ आपको अगले गाने की ओर. और दिस इज़ अनदर ब्यूटिफुल एवरग्रीन सॉन्ग दैट डजेंट बिलोंग टू एनी एज. इट इज़ एज फ्रेश राइट नाउ एज इट वॉज देन.

0: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
1: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
2: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
3: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
2: Renew?
3: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
2: What better way to celebrate than with something timeless?
3: Visit Tanishq, Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
4: Papa, Father's Day pe kya gift chahiye?
5: Beta hai tu mera. Tum log saath baith jao. Yahi kaafi hai.
6: Aur wahi to sabse bada gift hai. All that your father needs is good food, great company and unforgettable moments. This Father's Day weekend from June 19th to 21st, take your dad to the Flavor Lounge Frisco. Indulge in refined flavors, elegant dining, and moments that truly matter. Plus, every father gets one free cocktail or mocktail. The Flavor Lounge on Preston Road near Malabar Golden Diamond Complex. Call 469-712-3591 and reserve your table today.
7: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications ab aa chuka hai digital media platform par. Kai million followers ke saath, both in English and Urdu. Led by the famous and fearless journalist Raja Zahid Akhtar Khan Zada, jinhone apni kalam se social injustice aur corrupt practices ke khilaaf bharpoor awaaz uthai. Dallas aur duniya bhar ki taaza tareen khabron ke liye The Jago Times available hai ek click par, thejagotimes.com. For more details and advertisement, contact Raja Zahid Akhtar Khan Zada 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
8: अपनी रूट्स भी और टेक्सास का स्वैग भी दोनों एक साथ एक ही जगह HEB में. रॉयल सोना मसूरी राइस हो, नानक पनीर हो या पार्ले जी बिस्किट्स, वही देसी टेस्ट जो दिल को घर जैसा फील दे. और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो सिर्फ यही मिलते हैं. एक ही ट्रिप, एक ही स्टोर और सारा सामान डन. तो आज ही जाइए अपने नियरेस्ट HEB पर और ले जाइए अपने ट्रेडिशनल और टेक्सन फेवरेट्स एक साथ. HEB, हियर एवरीथिंग्स बेटर.
9: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं. क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का.
10: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
11: विजिट psychicramnath.com. कॉल 469-347-4401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध.
12: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली एंड रिसर्च में वेरी.
13: ड्यूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं.
14: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है.
13: कैसे?
14: पेज 3 ईटरी?
13: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन.
14: ड्यूड, इट्स पेज 3. स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट.
13: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं.
11: पेज 3 ईटरी. ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट.
15: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दूं.
16: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
11: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
16: इतना सब और प्राइस?
11: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
17: मैं हीरो.
6: Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at desigottalentus.com. Grand finale in Dallas! this because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.

रखा लेडीज एंड जेंटलमैन। जी हाँ, कहता है दिल झीले जरा। चलिए, दिल की बात छिड़ ही चुकी है पिछले सेगमेंट में, तो मैं आपको लेके चलता हूँ अगले गाने की ओर। और मैं बताता हूँ आपको कि जो यार हर दिल जो प्यार करेगा। नहीं, मैं कोई ज्ञान नहीं बांट रहा, मैं सिर्फ फिल्म का नाम बता रहा हूँ। फिल्म का नाम है हर दिल जो प्यार करेगा।

जी हाँ, क्या जोड़ी होगी वो, जो जिसका नाम होगा पिया और जिया। आई मेट समबडी हुज नेम इज जिया, पर किसी का नाम अगर होगा जिया तो माय गुडनेस क्या जोड़ी होगी ना वो। वेल पिया ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट द नाउन फॉर्म नॉट द वर्ब फॉर्म। पिया के अलग मतलब, बहुत सारे मतलब होते हैं इनफैक्ट, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट वन, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। चलिए लेके चलता हूँ आपको अगले गाने की ओर और सुनाता हूँ आपको एक बहुत अच्छी सी धुन। और चलिए लेके चलता हूँ, वी टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड म्यूजिक डे, राइट।

was Labusha. The song is called Be My Lover. Of course, aapne guess to kar hi liya hoga. And if you've seen the song, she's driving a truck through France, I believe, and singing this song called Be My Lover. Truck se mujhe yaad hai, agar aapke saath koi durghatna ghati ho, car mein ya phir truck, if aap truck accident mein involve hue ho, aur चाहे आपके साथ हुआ हो स्लिप एंड फॉल इंसिडेंट, वो अटोर्नी उमर ख्वाजा को याद कीजिएगा और ये आपका केस रिप्रेजेंट करेंगे और आपका केस फाइट भी करेंगे और आपको दिलाएंगे पूरा सही कंपनसेशन दैट यू राइटफुली डिजर्व. एंड डीलिंग विद इंश्योरेंस कंपनीज कैन बी स्ट्रेसफुल, स्पेशली व्हेन यू हैव बीन थ्रू इंसिडेंट लाइक एन एक्सीडेंट और एन इंसिडेंट एंड यू डोंट वांट टू गो एट इट अलोन. यू वांट अ वेरी ट्रेन्ड एंड राइट रिप्रेजेंटेशन एंड दैट कम्स इन द फॉर्म ऑफ अटॉर्नी उमर ख्वाजा. He'll make sure that you are represented well and fairly and compensated squarely. Well, you don't pay until you win. And if you have an incident like that and if you want to find out if you qualify for him to take on your case, you can call for a free consultation. Ji haan, number deta hu main aapko attorney Umar Khwaja ka. Unka number hai 469-300-5046. Aur aap unki website bhi ja sakte ho. Website hai unki attorneyomar.com. attorneyomar.com. चलिए अभी लबुश का गाना मैंने आपको सुनाया था और उसमें आपने देखा था स्ट्रॉन्ग फ्लो ऑफ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स. म्यूजिक में होता है, आप कोई भी गाना ले लो, देर आर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंसेस इन अ सॉन्ग, चाहे हो परकशंस, चाहे ढोल या एनीथिंग विच इज़ तबला बीट, एनीथिंग दैट हैज़ गॉट परकशन. सेकेंड वन दैट इन्फ्लुएंसेस इज़ स्ट्रिंग्स, चाहे वो गिटार सितार या फिर स्पेनिश गिटार कह लो, राइट, विच वॉज प्रिवेलेंट इन लबुश. थर्ड इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ वेरी प्रिवेलेंट इन अ सॉन्ग डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सॉन्ग इज़ विंड इंस्ट्रूमेंट्स, चाहे वो हो सैक्सोफोन हो, फ्लूट हो, बांसुरी हो या फिर एनी ऑफ दोज इंस्ट्रूमेंट्स. एंड इफ यू सी मोस्ट हिट सॉन्ग्स विल हैव एटलीस्ट वन ऑफ दीज प्रिवेलेंट एंड over not overpowering but it has the right mix of one of these three mixes, be the percussion, strings or wind. Chaliye leke chalta hu aapko agle gaane ki aur, another beautiful song, a blast from the past, Raveena, absolutely missing you, mere sheher ki ladki.

0: जी हाँ, झूम के बिजली कड़की। और फट से मुझे फोन आ गया सफ़ीका और उनको सुनना है बरसो रे फ्रॉम गुरु। सो ब्रेक के बाद मैं लेके चलता हूँ सफ़ी आपको वो गाने की ओर। इन द मीन टाइम चलिए ब्रेक की ओर बढ़ते हुए लेके चलता हूँ आपको इस गाने की ओर।
1: दारा दारा दारा